0: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के ठीक है 6 बज रही है। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आगे इसे हम टीना के साथ सुनते हैं। नमस्कार आपको टीना।
2: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। बजट 2026-2027 के अनुसार जो लोग 31 दिसंबर 2026 तक बेसिक रिटायरमेंट पेंशन बीआरपी के पात्र होंगे और उसे प्राप्त कर रहे होंगे, वे नए स्टेट एज पेंशन एसएपी के तहत भी मासिक पेंशन प्राप्त करते रहेंगे। एसएपी का भुगतान सरकार द्वारा घोषित मींस टेस्ट यानी आय परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। एसएपी की राशि एक तय मानक के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जिसमें बाद में मींस टेस्ट लागू किया जाएगा। और सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान बीओपी लाभार्थियों की पेंशन 1 जनवरी 2027 से एसएपी लागू होने पर अपने आप बंद नहीं होगी। Budget 2026-2027 के बाद Confédération des travailleurs du secteur privé, CTSP, ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। CTSP का कहना है कि ये बजट आम लोगों की वास्तविक ज़रूरतों से दूर है। यूनियन ने खास तौर पर पेंशन रिफॉर्म और मीन्स टेस्टिंग पर आपत्ति जताई है। इसी क्रम में बजट 2026-2027 के बाद सरकार के सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने घोषित फैसलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अरियाना वोमारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय को भेजे गए उनके सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए हैं। डेप्यूटी प्रधानमंत्री और जेंडर इक्वालिटी मंत्री के अनुसार अब

बजट ने कई प्राथमिक मुद्दों को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है, जिनमें डोमेस्टिक अब्यूज बिल शामिल है। साथ ही अडॉप्शन से जुड़े नए प्रावधान भी जल्द ही मंत्रिमंडल के सामने रखे जाएंगे। और ऊर्जा मंत्री ने भी ऊर्जा ने कहा कि ऊर्जा भी इस बजट की एक प्रमुख प्राथमिकता है। घरों में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हर परिवार

0: पर है। घोषित प्रावधानों में स्पेशल एजुकेशन नीड्स स्कूल को और मजबूत करना शामिल है। साथ ही स्कूलों में बुलिंग के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए 10 मिलियन रुपये की राशि रखी गई है। इस बात का ऐलान शिक्षा मंत्री महेन गंगा प्रसाद ने किया। और आसिम के अध्यक्ष जयंत चेलम ने कहा कि कुछ कदमों से उपभोक्ताओं पर बोझ कम हो सकता है, हालांकि उनका मानना है कि अभी अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। विदेश में शुक्रवार 19 जून को ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खत्म करते हुए शांति समझौते पर आखिरी मुहर लग गई। इसी के साथ इसराइल और हिजबुल्ला को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई। प्राप्त खबरों के अनुसार एक वरिष्ठ अमरीकी अधिकारी ने बताया कि शाम 4 बजे इसराइल और हिजबुल्ला भी युद्ध विराम के लिए सहमत हो गई है। और अंत में मौसम का हाल। मस्करीन्स के दक्षिण पश्चिम में पाए जा रहे सक्रिय बादलों के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज सुबह देश भर में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन दोपहर बाद के समय देश के पूर्वी इलाकों और सेंट्रल बातों पर बादल घिरे रहेंगे। रह रहकर वर्षा भी होगी और अन्य जगहों पर भी बादल छाए रहेंगे। और रात के समय भी देश के दक्षिणी इलाकों और ऊंचे इलाकों पर रह रहकर वर्षा हो सकती है और कुछ जगहों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। तापमान सेंट्रल बातों पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा हल्की एवं सामान्य रहेगी और जो जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में। दूर समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी जाती है क्योंकि लहरें और भी ऊंची हो सकती है। सूर्योदय आज 6:44 पर और सूर्यास्त शाम के 5:38 पर।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قربانیاں دی ہیں جس نے راہ خدا میں وہ عظمت حسین ہے تاریخ کی گواہی میں باطل کو جھکا دیا جس کے ایک سجدے نے وہ نور مصطفیٰ ہے نواسا بطول کا امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے اس وقت ہم آپ سے مخاطب ہیں آر ایم 3 کے ذریعے اردو نشریات سوال خیر کے ساتھ آج کی اس نشریات میں آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک محترم مفتی محمد اسحاق قادری رضوی صاحب کا بیان حمد نعت و سلام موزے سامعین آج کے اس دن کو بابرکت اور پر نور بنانے کے لیے شروعات کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے آج آپ سماعت فرمائیں گے سورہ العنکبوت کا پہلا حصہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए छोड़ दिए जाएंगे और इनकी आजमाइश नहीं की जाएगी। और जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं हमने उनको भी आजमाया था और इनको भी आजमाएंगे, सो अल्लाह उनको जरूर मालूम करेगा जो अपने ईमान में सच्चे हैं और उनको भी जो झूठे हैं।

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। क्या लोग ये ख्याल किए हुए हैं

जो शख्स अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद रखता हो तो अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त जरूर आने वाला है और वो सुनने वाला है जानने वाला है। और जो शख्स मेहनत करता है तो अपने ही फायदे के लिए मेहनत करता है, बेशक अल्लाह तो सारे जहान से बेनियाज है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, हम उनके गुनाहों को उनसे दूर कर देंगे और उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे।

और हमने इंसान को उसके माँ बाप के साथ नेक सुलूक करने का हुक्म दिया है। ए मुखातब, अगर तेरे माँ बाप तुझे मजबूर करें कि तू मेरे साथ किसी को शरीक बनाए जिसकी हकीकत की तुझे वाकिफियत नहीं, तो उनका कहा न मानियो। तुम सबको मेरी तरफ लौट कराना है, फिर जो कुछ तुम करते थे मैं तुमको जता दूंगा, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको हम नेक लोगों में दाखिल करेंगे।

0: और बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, फिर जब उनको अल्लाह के रास्ते में कोई ईजा पहुंचती है तो लोगों के ईजा पहुंचाने को यूं समझते हैं जैसे अल्लाह का अजाब। और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से मदद पहुंचे तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ थे, क्या जो अहले आलम के सीनों में है अल्लाह उससे वाकिफ नहीं? और अल्लाह उनको जरूर मालूम करेगा जो सच्चे मोमिन हैं, और वो मुनाफिकों को भी मालूम करके रहेगा।
1: वो

और जो काफिर हैं वो मोमिनों से कहते हैं कि हमारे तरीके पर चलो और हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे, हालांकि वो उनके गुनाहों का कुछ भी बोझ उठाने वाले नहीं। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं और ये अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ और लोगों के बोझ भी। और जो झूठ ये लोग घड़ते रहे, कयामत के दिन उनकी इनसे जरूर पुरसिश होगी।

और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे। फिर उन लोगों को तूफान के अजाब ने आ पकड़ा और वो जालिम थे। फिर हमने नूह को और कश्ती वालों को नजात दी और कश्ती को अहले आलम के लिए निशानी बना दिया।

और इब्राहिम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो, अगर तुम समझ रखते हो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम तो अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूजते और झूठी बातें बनाते हो। जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो वो तुमको रिस्क देने का इख्तियार नहीं रखते। बस अल्लाह ही के यहां से रिस्क तलब करो और उसी की इबादत करो और उसी का शुक्र करो, उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। और अगर तुम झुटलाते हो तो तुमसे पहले भी उम्मतें अपने पैगंबरों की तकजीब कर चुकी हैं और पैगंबर के जिम्मे खोल कर सुना देने के सिवा और कुछ नहीं।

क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह किस तरह खलकत को पहली बार पैदा करता है फिर किस तरह उसको दोबारा पैदा करेगा, यह अल्लाह को आसान है। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह खलकत को पहली दफा पैदा किया है, फिर अल्लाह ही दूसरी बार भी पैदा करेगा, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो जिसे चाहे अजाब दे और जिस पर चाहे रहम करे, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे।

तो उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि इसे मार डालो या जला दो, मगर अल्लाह ने उनको आग में जलने से बचा लिया। जो लोग ईमान रखते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। और इब्राहिम ने कहा कि तुम जो अल्लाह को छोड़कर बुतों को ले बैठे हो तो दुनिया की जिंदगी में बाहम दोस्ती के लिए, मगर फिर कयामत के दिन एक दूसरे की दोस्ती से इनकार कर दोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे और तुम्हारा ठिकाना दोजख होगा और कोई तुम्हारा मददगार न होगा।

उन पर एक लूत ईमान लाए और इब्राहिम कहने लगे कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, बेशक वो गालिब है, हिकमत वाला है। और हमने उनको इसहाक और याकूब बख्शे और उन्हीं की औलाद में पैगंबरी और किताब रख दी, और उनको दुनिया में भी उनका सिला इनायत किया, और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे।

0: और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम अजब बेहयाई के मुर्तकिब होते हो, तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने ऐसा काम नहीं किया, क्या तुम मर्दों की तरफ मायल होते और राहजनी करते हो और अपनी मजलिसों में नापसंदीदा काम करते हो। तो उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। लूत ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मुझे नुसरत इनायत फरमा।
1: सदकल्लाहुल अजीम। हजरत सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़े और उसके मुताबिक अमल करे तो क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि उसकी रोशनी दुनिया के सूरज की रोशनी से बढ़कर होगी, जबकि सूरज को इतना करीब फ़र्श किया लिया जाए कि गोया तुम्हारे घरों में उतर आया है। फिर तुम समझ सकते हो कि जब माँ बाप का मर्तबा ये होगा तो उस शख्स का क्या दर्जा होगा जिसने कुरान पाक पर अमल किया। बहावाला अबू दाऊद। ए पाक परवरदिगार, हमें कुरान शरीफ पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।

0: चौधरी है और सैयदा सुबाई आपसे मुखातिब हैं। मुहर्रमुल हराम का महीना जारी है और आप इसी हवाले से अब आप समाअत फरमाएंगे जुम्मा मस्जिद के खतीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी साहब की ज़ुबानी एक बयान। आइए समाअत फरमाइए।
1: नहमदुल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल्लाह وعلى آله وصحبه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المثل الأعلى صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم حمد ثنا کے بعد सामीन मोहतरम, आज हमारा मौजू है कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत सहाबा, मोहब्बत औलिया और उलमा कैसे हासिल होगी। पहले मौजू से उसका लिंक ये है कि क़्यामत के दिन वही क़्यामत की होलनाकी से बचेंगे, क़्यामत की मुश्किल से बचेंगे जिनके दिल में अल्लाह की, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आलो असहाब की मोहब्बत होगी। सोए मेरे भाई, अगर तुम खवासे उलमाए मुरब्बीन की जमात में दाखिल होने का इरादा करो, उन उलमा की जमात में जो ख़ास हैं, जो स्पेशल हैं, जो तरबियत करने वाले हैं, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह से सवाब हासिल करने की नियत से तलब हदीस, समाए हदीस और रिवायत हदीस को अपने ऊपर लाजिम कर लो। हुज़ूर सलाम की हदीस की जस्तजू, आका की अहादीस को सुनना और फिर आगे उस हदीस को बयान करना, नरेट करना,

अपने आप पर लाजिम कर लें फ़कत सवाब के लिए, उसमें तुम्हारी नियत हो कि अपने रब अज़्ज़ा वजल के दीन और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मैं पहचानूं, नीज इस दीन पर तुम अमल करने वाले बन जाओ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात और आपके फरमाए हुए अहकाम के पाबंदी करने वाले हो जाओ और वो दुआएं पढ़ो, उन दुआओं का विर्द करो जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही साबित हैं। और फिर हर दिन उन दुआओं को पढ़ो, ज़हन को हाजिर करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद व सलाम पढ़ा करो। विर्द और दुरूद व सलाम ऐसा होना चाहिए गोया तुम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हो। उसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपके नामूस की ताज़ीम भी तुम्हारे दिल में होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो इससे मैं तुम्हारे लिए उम्मीद रखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकाते तय्यबा तुम्हारे दिलों तक पहुँच जाएगी। नीज तुम्हारे लिए इससे भी उम्मीद रखता हूँ कि तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आप की इत्तिबा की मोहब्बत अता कर दी जाएगी, क्योंकि ये इंशाअल्लाह हर खैर और हर भलाई का चिराग है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اطاعت کرو، मेरी बात मानो, और जब तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, तुम्हारे गुनाह मिटा देगा। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, बहुत ज़्यादा मेहरबान है। अल्लाह पाक ने अपनी मोहब्बत के लिए हुजूर सलाम की इत्तबा को, हुजूर को फॉलो करने को एक मेयार बनाया। अल्लाह से मोहब्बत का मेयार हुजूर सलाम की हर हर बात को मानना है, और फिर इत्तबा से, इताअत से, हुजूर सलाम को फॉलो करने से जहां अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है वहाँ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी नसीब होती है। अहले बैत की, सहाबा की, औलिया अहलुल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है। बड़ी मारूफ हदीस है, हुज़ूर सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुन अहब्ब इलैह मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमईन, कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन न हो सकेगा कामिल, यहाँ तक कि मैं उसको उसके माँ बाप से, औलाद से, यहाँ तक कि सब लोगों से ज़्यादा प्यारा और

0: महबूब न हो जाऊं। माँ बाप से, औलाद से, बच्चों से, बल्कि सब लोगों से ज़्यादा मोहब्बत और प्यार अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना चाहिए, क्योंकि हर मोहब्बत फ़कत दुनिया तक है, सिवा वो मोहब्बत जो अल्लाह के लिए हो और अल्लाह के हबीब के लिए हो, जो अल्लाह से हो, अल्लाह के हबीब से हो, या फिर उनसे हो जो अल्लाह के रसूल से जुड़े हुए हैं। उनमें सिर्फ़ फ़हरिस्त अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, अहले बैत हैं, सहाबा किराम हैं। अल्लाह जल्ल मजदहू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल हमें अपनी और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नूर अता फरमाए। आपने फरमाया, कुल उम्मती यदखुलून अल्जन्ना इल्ला मन अबा। फरमाया, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा सिवा उसके जिसने इनकार किया। क़ील मन अबा, पूछा गया, रसूलल्लाह इनकार किसने किया, मुनकिर कौन है? قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى। फरमाया, जिसने मेरी इताअत की, मेरी बात को माना, वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की, फ़कत अबा, तो उसने इनकार किया, वो जन्नत में जाने से महरूम होगा। इसलिए आला हज़रत ने फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे, क़ियामत में अगर मान गया। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग।
1: अभी आप समात फरमा रहे थे जुम्मा मस्जिद के ख़तीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ क़ादरी साहब की ज़ुबानी एक बयान। मौज़ सामीन, सैयदुश्शोहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत मुबारका मदीना मुनव्वरा में हुई। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में अज़ान दी, मुंह में लुआब दहन डाला और आपके लिए दुआ फरमाई। फिर सातवें दिन आपका नाम हुसैन रखा और अकीका किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दोनों नवासों से बे इंतहा मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने गुलदस्ते कहते थे। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, उनके होंठों को तरसता रहा प्यासा पानी।

मौजूद सामीन, एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। बहवाला तिर्मिज़ी शरीफ। ये वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि हसन और हुसैन मेरे बेटे और मेरी बेटी फ़ातिमा के बेटे हैं। अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत रख और इन दोनों से मोहब्बत करने वालों से भी मोहब्बत रख। बहवाला तिर्मिज़ी शरीफ। नज़र का नूर, दिल का चैन कहते हैं। नबी सभी अपनी इबादत का ज़ैन कहते हैं। जो अपनी जान गवा दे हिफाजत हक में, उसे तो दिल की लुगत में हुसैन कहते हैं।

इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह पाक आपको अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, आपकी हर सुबह आफियत और सलामती के साथ तुलू हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: खुद ने कदम चूमे चूमे फलक ने दूर से झुक कर
1: सेंटर 94 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2 यू आर लिसनिंग योर RM3 रेडियो रेडियो
2: தேனிசை அரங்கம்

सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज शनिवार है, रेडियो मनोरंजन पर आपका हम स्वागत करते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति में शक्ति। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग कुशल पूर्वक हैं और हमारे इस आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए एकदम सज्ज है। तो चलिए देर न करते हुए कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं।

हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है भक्ति में शक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत है आपके लिए रेडियो मनोरंजन पर। श्रोताओं, जब भी जीवन के भाग दौड़ से आपको थकान महसूस होना तो कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान कीजिए। विचलित मन तुरंत शांत हो जाता है और आप देखेंगे कि आपके मन को एक ऐसी शांति प्राप्त हो रही है जिसकी तलाश आप कर रहे थे। तो चलिए, इसी शांत स्वभाव के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को आगे ले चलेंगे। कार्यक्रम है भक्ति में शक्ति। आइए सूर्य देव को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं।

तो प्रिय श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भक्ति में शक्ति। आज शनिवार है, यानी ये दिन समर्पित है कर्म फलदाता शनिदेव को। कहते हैं कि पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ जो शनिदेव की पूजा करता है, और साथ में अगर यही भक्ति हनुमान जी के लिए दिखाता है, उनकी पूजा करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है और साथ ही साथ अच्छे कर्म करता है, तो शनिदेव के साथ साथ आपको हनुमान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है।

श्रोताओं, इस समय आप रेडियो मनोरंजन पर कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति में शक्ति। तो श्रोताओं, शनिदेव को रावण के चुंगल से छुड़ाकर हनुमान जी ने शनिदेव पर जो कृपा किया था ना, उसका असर ये हुआ कि आज के दिन अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और अगर आप राम नाम लेते हो, क्योंकि हनुमान जी तो राम नाम के साथ ही उनका जीवन चलता है, तो राम नाम उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, उनके लिए राम ही सब कुछ है। तो अगर आज के दिन आप शनि देव के साथ हनुमान को याद करते हो और इसके अलावा अगर आप राम नाम लेते हो ना, तो आपको शनि देव के साथ हनुमान जी और राम जी का आशीर्वाद भी प्राप्त

तो प्रिय श्रोताओं, आप इस समय वेदिता का साथ दे रहे हैं रेडियो मनोरंजन पर और कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति में शक्ति। श्रोताओं, एक स्त्री में बहुत शक्ति होती है। कहते हैं ना कि स्त्री जो होती है वो माँ होती है, बेटी होती है, बहन होती है, बहू होती है और अपने सारे जो उसके रिश्ते होते हैं वो सबको बाखूबी निभाती है। और कहते हैं ना स्त्री में शक्ति बड़ी होती है। सुबह उठकर घर का काम करती है, अपना काम करती है, अपने पति का काम करती है, घर को संभालती है, बच्चे संभालती है, ये तो करती है। लेकिन एक स्त्री जब माँ बनती है ना, तो यहाँ पर उसकी जो शक्ति है वो दुगनी हो जाती है। माँ वो होती है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाए, क्योंकि उनके लिए सबसे पहले आते हैं उनकी बच्चे। तो क्या हम भी अपने आज के इस कार्यक्रम में अपनी माँ को याद कर लें?

प्रिय श्रोताओं, इस समय आप कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति में शक्ति। खासतौर पर जितनी भी हमारी माताएं हमें सुन रही हैं, उनको हम कहेंगे प्रणाम, चरण स्पर्श। अब हमारे जाने का भी समय हो गया है, तो एक और कार्यक्रम के साथ वेदिता फिर प्रस्तुत होगी। अभी के लिए आज्ञा दीजिए, ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। इसी के साथ नमस्कार।

您的节目，我是今天的节目主持人金。今天我为大家准备了好多首优美动听的歌曲，下面让我们一起来欣赏第一首。

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं टीना से संक्षिप्त समाचार। टीना, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। पेंशन सुधार प्रणाली लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञ आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट पहले ही स्टीयरिंग कमेटी को सौंप दी है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम कर रहे हैं। 2026-2027

0: 2027 के बजट प्रस्तुति में सरकार प्रमुख ने घोषणा की कि पहली जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन का नाम बदलकर स्टेट एज पेंशन एसएपी रखा जाएगा। विशेषज्ञ आयोग की शुरुआती सिफारिशों के विपरीत अब नौकरी होना पात्रता की शर्त नहीं होगी। जिन लोगों की मासिक आय 14,000 से कम है उन्हें पूरा स्टेट एज पेंशन मिलेगी। इस सीमा से ऊपर आय होने पर भी लाभार्थियों को पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन उसका स्तर धीरे धीरे कम किया जाएगा। ये कटौती 50,000 तक की आय तक लागू होगी। इस सुधार पर प्रतिक्रिया देते हुए जनरल वर्कर्स फेडरेशन के प्रतिनिधि अश्विन गुदाई ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्थिति को सही किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे इस योजना के लागू होने और इसके लंबे समय के असर पर नजर रखेंगे। और बजट 2026-2027 के बाद सरकार के सदस्यों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने घोषित फैसलों पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। आर्यन वामागी ने कहा कि वित्त मंत्रालय को भेजे गए उनके सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जेंडर इक्वालिटी मंत्री के अनुसार बजट ने कई प्राथमिक मुद्दों को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है, जिनमें डोमेस्टिक अब्यूज बिल भी शामिल है। और मंत्री पात्रिक कास्यावादन ने कहा कि ऊर्जा भी इस बजट की एक प्रमुख प्राथमिकता है। घरों में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हर परिवार को अपने घर की छत पर सोलर पैनल्स लगाने के लिए 75,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। और शिक्षा मंत्री के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में इस बजट का मुख्य ध्यान समावेशन पर है। घोषित प्रावधानों में स्पेशल एजुकेशन ने स्कूल को और मजबूत करना शामिल है। साथ ही स्कूलों में बुलियंग के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए 10 मिलियन रुपये की राशि रखी गई है। जबकि बजट 2026-2027 के बाद कॉन्फेडरेशन डी ट्रैवलर्स डू सेक्टर प्राइवे सीटीएसपी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। सीटीएसपी का कहना है कि ये बजट आम लोगों की वास्तविक जरूरतों से दूर है। यूनियन ने खासतौर पर पेंशन रिफॉर्म और मीन्स टेस्ट पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इससे बुजुर्गों को पेंशन पाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति साबित करनी पड़ेगी, जो उनके अनुसार सही नहीं है। पतियाफ्रे में 63 साल की एक महिला कल शाम अपने घर में मृत पाई गई। उनकी भतीजी, जो सी आंगन में ऊपर रहती है, ने पुलिस को बताया कि घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। फुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति महिला के साथ दिखाई दिया, जो उससे बात कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में फाउल प्ले की आशंका जताई है। मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए आज पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और विदेश में कैरेबियाई देश डोमिनिकन गणराज्य के बायाहीवे में एक लग्जरी रिसोर्ट में भीषण आग लग गई, जिसमें इटली के एक पर्यटक की मौत हो गई। लगभग 1700 मेहमानों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। विश्व कप के बीते मुकाबले में कल रात मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से पराजित किया। ब्राजील ने आज हैती को 3-0 से पराजित कर मैच अपने नाम किया। और आज ही पराग्वे ने तुर्की को 1-0 से हराया। अन्य निर्धारित मैचों में नेदरलैंड्स स्वीडन आज रात 9 बजे खेला जाएगा। और आज रात 12 बजे जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: घड़ी मिलाते चलिए, दिन के 12:05 हुए हैं।
5: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम, ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। Happy Music Day from MBC Radio.
6: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
4: हमारे प्यारे प्यारे म्यूजिक लवर्स को अनीता का सादर नमन है। अभी आप लोग जो हैं अफ्रीका पसंदीदा रेडियो चैनल अर्थात रेडियो मनोरंजन से जुड़े हुए हैं, जिसके

माध्यम से आप लोग जो है पुराने गानों का आनंद ले पाएंगे और कार्यक्रम चल रहा है ऑफ कोर्स वन एंड ओनली सुहाना सफर। जी दोस्तों, शायद हमारे कॉलर्स को बेसब्री से यहाँ प्रोग्राम का इंतज़ार है क्योंकि अभी से ही फ़ोन कॉल्स आने लगे हैं। थोड़ा ठहरिए जी, हम लेंगे अभी।

टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। वेल, संगीत जो है व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। यह जो है केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम भी है। संगीत मनुष्य के मन को शांति, आनंद और सुकून प्रदान करता है। यह दुखी व्यक्ति को सांत्वना देता है तथा प्रसन्न व्यक्ति की खुशी को और भी बढ़ा देता है। सो दोस्तों, म्यूजिक डेज अराउंड, लेट्स सेलिब्रेट म्यूजिक। और चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं लता जी की सुरीली आवाज़ से।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, ऐसे पुराने गाने को सुनकर ऐसा लगता है कि वह एक ऐसा वक्त था जो सच्चे प्रेमियों की सुनहरी छाप छोड़ गया, और एक ऐसा वक्त है मतलब निकलते ही दिलों में गम का समुंदर अपने आप छोड़ गया। वेल, दोस्तों, संगीत एक ऐसी कला है जिसमें गीत, वादन अर्थात इंस्ट्रूमेंट्स और नृत्य का संगम होता है। यह मुख्य रूप से ध्वनि, स्वर, लय, तार और भाव का एक जो है व्यवस्थित संयोजन है जिसके माध्यम से मानव मन अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाता है। और वैसे तो संगीत के अनेक रूप, अनेक ज्र होते हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत आदि, और उनमें से एक है गज़ल। जी हाँ, जो गज़ल है यह प्रेम, विरह और दार्शनिक विचारों को व्यक्त करने का एक बेहतर, बेहद खूबसूरत और भावात्मक माध्यम है। तो चलिए इस कार्यक्रम को सजाते हैं एक गज़ल के साथ। फिल्म है बाजार, और फिर से हम सुनेंगे लता जी को और तलत अजीज जी को। तो चलिए यहाँ गाने को सुनते हैं।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है सुहाना सफर रेडियो मनोरंजन पर, और बेशक आप जो है हमें मैसेज भेज सकते हैं 5250-6200 पर, या फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं 4028-070 पर। और भी जो फिल्म बाजार का गाना था, व्हाट अ रोमांटिक सॉन्ग, ऑलवेज गेट गूज बम्स जब भी मैं इस गाने को सुनती हूँ। ऐसे गाने हमें बेशक कई तीज के स्वर्णिम युगों में ले जाते हैं, जहाँ दिलों में मासूमियत थी, अदाओं में सादगी थी। और यहाँ पर जयश्री जी सूरीनाम से जुड़ गई है हमारे साथ, शी इज़ द फर्स्ट कॉलर, और उनकी मामा भी साथ दे रही है ईश्वंती जी, और उनके भाई है रनराव जी जो हैं सुन रहे हैं सूरीनाम से। और आपकी फरमाइश है, आपका दूसरा गाना हमें मिल गया, वो कौन थी का फिल्म का गाना, शोक है जरा सी बिजलियाँ। और आप कहती है कि जो रेडियो है, जो संगीत है, वही आपके मनोरंजन का एक साधन है, इसी के साथ ही आप जीवन जो है व्यतीत कर रही है। और विशेषकर जब हमारे पास एक बुज़ुर्ग होते हैं, उनका जो है देखभाल हमें करना पड़ता है, तो बेशक उन बुज़ुर्गों के लिए रेडियो एक माध्यम है, जिनके माध्यम से वे अपने दिल को बहला सकते हैं। और आपको कुराज कहेंगे जयश्री जी, मामा का आप मामा की देखभाल कर रही है, तो कुराज आपको। तो चलिए, आप तीनों के नाम यहाँ प्यारा सा गाना आशा जी की आवाज़ में।

जी दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी लोग जो है फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं एंड थैंक यू आपके लव के लिए इस प्रकार आप जो बरसा रहे हैं हमारे ऊपर। कुछ ही मिनटों में और लोगों का फ़ोन कॉल्स लूँगी। बेहद यहाँ पर बहुत बहुत बहुत जो है फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, थैंक यू इसके लिए। और सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार और हम बेशक कहेंगे कि संगीत जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और प्राचीन काल से ही संगीत का एक विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति में संगीत को कला का एक सर्वोच्च रूप माना गया है। विभिन्न अवसरों, चाहे वो त्यौहार हो, धार्मिक कार्यक्रम में संगीत का एक विशेष स्थान होता है। और यहाँ पर जो है नवीन जी मोताय ब्लांश से हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपकी फरमाइश है, आप सुनना चाह रहे हैं फिल्म अली बाबा 40 चोर का गाना। और आशा जी बेशक आशा जी हमेशा जो है कबारे सॉन्ग्स गाती है एंड शी इज सो गुड इन दैट। तो चलिए हम इस गाने का भी आनंद लेते हैं और सभी लोगों को इस गाने के सभी लोगों को हम यह गाना डेडिकेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो है कबारे सॉन्ग्स उन्हें पसंद है। तो सभी लिसनर्स के नाम जिन्हें यहाँ ज पसंद है उनके नाम यहाँ गाना। और नवीन जी ये भी कहते हैं कि यह गाना जो है उनके पड़ोसन और पड़ोसी के नाम, जो सैंपिया के रहने वाले हैं।

जी दोस्तों, संगीत जो है भाषा, धर्म और संस्कृति की सीमाओं से परे लोगों को जोड़ने की क्षमता रखता है। यह प्रेम, एकता और सद्भाव का संदेश देता है। संगीत जो है जीवन को सुंदर, मधुर और आनंदमय बनाता है। यह मानव जीवन की अमूल्य धरोहर है, जिसका महत्व

सदैव बना रहेगा। और ओसना से वीना जी ने हमको फ़ोन किया और आप कहती हैं आप ज़िंदगी किराए का घर का गाना सुनना चाहती हैं और आप जा रही हैं आज जगन्नाथ की यात्रा में, तो बेशक यह गाना आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, नंदू परिवार जो ओसना के है, तो यह गाना आप लोगों के नाम

जी दोस्तों, विद्वान गण कहते हैं कि संगीत लोक की भाषा है और परलोक की सिर ही है, क्योंकि संगीत ही है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। संगीत को रोगी, भोगी और योगी सभी उत्सुकता से सुनते हैं, क्योंकि ये अंतर्मन की भाषा है। हमारे जीवन का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जो हमारे संगीत से अछूटा रहा है। ट्रियोले से कल्याणी जी साथ दे रही हैं और आपकी फरमाइश है प्रेम कहानी फिल्म का गाना, और यही गाना जो आएगा विशेष कर आपकी चार बेटियों के नाम, श्वेता, हर्षिना, श्रेष्ठा, नितिशा, पति विरेन है, छोटा सा जियांश है, डोआउ परिवार है। साथ ही साथ हम यही गाना शीला जी को डेडिकेट करना चाह रहे हैं। आप है बुनमेय से और आप कहती है कि आप आज जो है घूमने जा रही हैं अपने भाई के पास ब्रह्मस्थान, और यही गाना आप डेडिकेट करना चाहती है आपकी बहन अनीता के नाम और पूरे मकुना परिवार के नाम।

जी दोस्तों, गुडलैंड से सरिता जी साथ दे रही हैं और आप कहती है हेलो प्यारी अनीता जी, हेलो जी, हैप्पी म्यूजिक डे टू ऑल म्यूजिक लवर्स, ऑफ कोर्स थैंक यू जी, आपको भी सेम। और आप जो हैं फिल्म बदलते रिश्ते का गाना सुनना चाह रही हैं, तो चलिए ऑफ कोर्स लता जी और महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा है संगीत के बारे में कि संगीत जो है संकट मोचन है, अर्थात संकटों को हरने वाला। ऑफ कोर्स संगीत जो है हमारे सभी परेशानियों को हर लेता है और हमें जो है सुकून प्रदान करता है। और हमारे साथ मोदालविया से अनीता जी जुड़ गई हैं और आपकी फरमाइश है फिल्म अपराध का गाना और

यही गाना जो आएगा करुणा जी के लिए, अमृता, विनीता और सभी दोस्तों के नाम। और साथ ही साथ हम डेडिकेट करना चाह रहे हैं यही गाना उषा जी के नाम, जो ब्रह्मस्थान से जुड़ गई है। तो चलिए इस बहुत ही खूबसूरत गाने को सुनते हैं।

जी दोस्तों, पिछले वजह से गायत्री जी साथ दे रही हैं और आपकी फरमाइश है फिल्म जो है एक बहुत ही अच्छी फिल्म है आशा जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ गाने के बोल हैं और यही गाना जाएगा भाभी मीरा के नाम। उनकी बेटियाँ हैं गिरीशा मेधा, कठरबोर्ण की बहन अमृता, उनकी बेटियाँ नेहा, शिति, दिव्या, बेटे सुधीर, कमलेश, बहु सुधा है। और इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे 1 बजे के समाचारों की ओर।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था के साथ, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, 1 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। बजट 2026-2027 में सरकार ने पेंशन व्यवस्था में नए बदलावों की घोषणा की। कल 1 जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन का नाम बदलकर स्टेट एज पेंशन रखा जाएगा। सरकार के अनुसार 14,000 रुपए से कम मासिक आय वाले लोगों को पूरी पेंशन मिलेगी। इससे अधिक आय वालों को पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन उसकी राशि आय के अनुसार धीरे धीरे कम होगी। वर्तमान लाभार्थियों में से 90% से अधिक लोग योजना के दायरे में बने रहेंगे। बजट में प्रस्तावित पेंशन

सुधारों को लेकर सीटीएसपी ने अपनी चिंता व्यक्त की है। संगठन का मानना है कि आय के आधार पर पेंशन तय करने की व्यवस्था बुजुर्गों के लिए कठिनाई पैदा कर सकती है। सीटीएसपी ने सार्वभौमिक पेंशन व्यवस्था को बनाए रखने की मांग दोहराई है और उच्च आय वर्ग पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का सुझाव भी दिया है। बजट के बाद आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में सरकार के मंत्रियों ने विभिन्न कदमों का स्वागत किया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओयन्ना वोमाही ने कहा कि महिलाओं और परिवारों से जुड़ी कई प्राथमिकताओं को बजट में शामिल किया गया है। वहीं ऊर्जा मंत्री पैट्रिक असियावदन ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सहायता योजनाओं का उल्लेख किया। शिक्षा मंत्री महेन गंगा प्रसाद ने शिक्षा सेक्टर में समावेशन और स्कूलों में उत्पीड़न के खिलाफ कदमों पर जोर दिया। असम के अध्यक्ष जयंत चलब ने बजट के कुछ उपभोक्ता अनुकूल घोषणाओं का स्वागत किया। हालांकि उनका कहना है कि बजट का विस्तृत अध्ययन किए बिना अंतिम निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी। और जोआना बिहोशे ने बजट पर निराशा व्यक्त की है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई से जूझ रही आबादी की अपेक्षाओं के अनुरूप पर्याप्त कदम नहीं प्रदान किए गए हैं और कई घोषणाएं उम्मीद से बेहद कम हैं। बिजनेस मॉरिशस ने बजट की प्रमुख आर्थिक कदमों का किया स्वागत। संगठन का मानना है कि सार्वजनिक वित्त को सुदृढ़ करने और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रयास सकारात्मक दिशा में हैं और साथ ही उसने बजट के कदमों को प्रभावी रूप से लागू किए जाने का के महत्व पर भी जोर दिया है। बजट में महिलाओं से जुड़े नए कदमों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। विशेष रूप से मासिक धर्म अवकाश और मैटरनिटी लीव को एक वर्ष तक बढ़ाने के प्रस्ताव को महिलाओं के कल्याण और कार्यस्थल पर उनके अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जेंडर लिंक्स ने बजट में महिलाओं और लैंगिक समानता से संबंधित कदमों का स्वागत किया। संगठन का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और घरेलू हिंसा से निपटने के लिए घोषित कदम उत्साहजनक है। विदेश स्तर पर मध्य पूर्व युद्ध की समाप्ति पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। इसराइल और हिजबुल्ला ने युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।

0: शुक समाचार सुनिए पृथ्वी विजय सैंपिया बॉशेरी में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की सीता देवी सिरोज की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें कमला के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी कल सुबह के 10:30 बजे उनके भाई चंद्र स्वराज सिरोज के मकान बॉशेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोस्टांस की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM. शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: Suhana Safar. Suhana Safar.
5: जी दोस्तों, फिर से वार्म वेलकम रेडियो मनोरंजन पर. और आप सुन रहे हैं सुहाना सफ़र कार्यक्रम अनीता के साथ, और हमारा साथ रहेगा 2 बजे तक. और बेशक कल है म्यूजिक डे, और किसी ने एक बड़ा सा प्यारा सा मैसेज भेज रहा है, ऑफ कोर्स उषा जी ऑफ ब्रह्मस्थान, और आपने कहा है प्यार से पढ़ लीजिए. जी तो चलिए.

ये हम आपका जो मैसेज है पढ़ लेते हैं। आप लिखती हैं कि जो दिल से निकले वो हैं गीत, सुन के दिल पिघले वो हैं गीत, जो दिल को छू ले वो हैं गीत, सुन के दिल ना भूले वो हैं गीत। हैप्पी म्यूजिक डे जी, थैंक यू जी इसके लिए, एंड हैप्पी म्यूजिक डे टू ऑल ऑफ यू। एंड ऑफ कोर्स एक ऐसा गाना मैंने चुना अभी आप लोगों के लिए मेरी ओर से, जिसमें बहुत ही प्यार भरा एहसास है, भावनाएं हैं, एंड

इसी गाने को हम डेडिकेट करना चाहते हैं ज्योति जी के नाम, जो शातो दे बेनारे से आप सुन रही हैं, और साथ ही साथ अश्नी है, रेखा है, सुरेखा है, और पूरे माधव परिवार के नाम, और इस गाने के बाद ऑफ कोर्स योर डेडिकेशंस। प्यार भरा गीत आप लोगों के नाम, म्यूजिक लवर्स के नाम।

डायरी मैं आई हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए। और ऑफ कोर्स यहाँ पर माला जी रिविया जो हम पास से जुड़ गई हैं, और आप कहती हैं आज शिव का जन्मदिन है और ढेर सारी शुभकामनाएं कनील की ओर से, कविश की ओर से, कनिष हैं, केविन हैं, किरण हैं, सत्यम हैं, इन सभी लोगों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और साथ ही साथ हम यही गाना डेडिकेट करना चाह रहे हैं यहाँ पर मालिनी कुमार जी के नाम। कविता जी ने मैसेज भेजा है कि आज आपकी बॉस मालिनी कुमार का जन्मदिन है, जो बस कम दोस्त ज़्यादा है, तो ढेर सारी बधाइयाँ शुभकामनाएं। सुनील कुमार की ओर से पति हैं, कविता है, मोहन है, रेखा है, अंबिका, प्रेमिला और सभी और की ओर से जेसिका, बेटी जेसिका है, दामाद गुलुक है, नाती शिववंश है। Happy birthday to you, Kumari, Malini Kumar ji.

जी दोस्तों, बुआशरी की यादना जी का भी जन्मदिन है। ढेर सारी शुभकामनाएं फूफू सुनीता की ओर से, गुरुचंद फैमिली है, पौसेनु फैमिली और नन्न परिवार की ओर से। हैप्पी बर्थडे टू यू यादना।

जी दोस्तों, ग्रंथों के अनुसार कहा गया है कि सम्यक गीतम अर्थात संगीत शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा के शब्द गीत के साथ सम उपसर्ग लगाकर की गई है। सम का अर्थ होता है अच्छा और गीत का भाव गायन से है, अर्थात भली भांति गाया हुआ गीत ही संगीत है। जी दोस्तों, L'Espérance Trébuchet से मनोज सोहन जी जुड़ गए हैं हमारे साथ और आपकी फरमाइश है एक लड़का एक लड़की फिल्म का गाना, और यही गाना जाएगा आपकी प्यारी पत्नी नजीमा के नाम, पूरे सोहन परिवार के नाम, गया सिंह आश्रम के लोगों के नाम और सभी बुजुर्गों के नाम।

जी दोस्तों, संगीत का हमारे जीवन में एक अभिन्न अंग है और संगीत और प्रकृति का संबंध जो है अत्यंत गहरा और प्राचीन है। प्रकृति स्वयं एक मधुर संगीत की तरह है जिसमें पक्षियों का कलरव, बहती नदियाँ की कलकल ध्वनि, पत्तों की सरसराहट, वर्षा की रिमझिम और समुद्र की लहरों की गर्जना एक अद्भुत संगीत का निर्माण करती है। यही प्राकृतिक ध्वनियाँ संगीतकारों को प्रेरणा प्रदान करती हैं। और यहाँ पर एक प्यारा सा मैसेज आया है मुकेश मोहन जी की ओर से, और आप सुनना चाह रहे हैं फिल्म नगीना का गाना, और यही गाना जाएगा। मुकेश, आपके नाम मुकेश मोहन और दिव्यानी ऑफ अंकिता वाकवा, तो यह गाना आप दोनों के नाम

जी दोस्तों, कट्रोबोन से प्रमिला जी ने हमें फ़ोन किया और आप कहती हैं कि आप अपने पति रजेन को बहुत ही मिस कर रही हैं क्योंकि आज ही के दिन उनका देहांत हुआ था। तो हम आपको कहेंगे कुराज और उनके नाम पर आप एक गाना डेडिकेट करना चाह रही हैं। फिल्म है तीसरी कसम, तो चलिए।

दोस्तों, पंडित शारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर में कहा है कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। इसका अर्थ है कि गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों की परस्पर मेल ही संगीत है। अर्थात गायन, वादन और नृत्य एक दूसरे से अलग नहीं है, इन तीनों को मिलाकर ही संगीत बनता है। और यहाँ पर एक प्यारा सा मैसेज आया है अनीता जी की ओर से, फिकम फ्लैक से आप जुड़ गई हैं और आप कहती हैं, गुड आफ्टरनून अनीता जी, आप कैसी हैं? वेरी स्वीट सॉन्ग्स, थैंक यू जी। और आप एक प्यारा सा गाना मांग रही हैं फिल्म खानदान से, और यही गाना जाएगा फ्रेंड इंदिरा, श्यामा, मीरा, सीनंद, कविराज, साधना, मालिनी, कविता, सभी के नाम, साथ ही साथ आपके पति है राज, बेतियंती, संकुश, बहु, मनीषा, सीमा, पोती हिमेशा, आदिया, पोते अंश है, और सभी रेडियो मनोरंजन की टीम, सभी सुनने वालों के नाम यह गाना जाएगा। और यही गाना जाएगा विशेषकर राधा जी मोचिदा से जुड़ गई है, इन्होंने हमें एक बिग हार्ट भेजा है, तो थैंक यू।

जी दोस्तों, यहाँ पर अनीता जी पची वैजे से जुड़ गई हैं और आप जो हैं मुकेश जी की आवाज़ में यह प्यारा गाना सुनना चाह रही हैं और यही गाना जाएगा तीन बेटियों के नाम शीतल, काजल, दीक्षा, पति हैं बलदेव, पूरे ढरी परिवार के नाम जो पची वैजे के रहने वाले हैं और

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, यहाँ पर हमें एक प्यारा सा मैसेज आया है मधुरी जी की ओर से, और आप सुनना चाह रही हैं फिल्म त्रिशूल का गाना लता जी की आवाज़ में, और साथ दे रहे हैं किशोरदा और यशुदास जी, और यही गाना जाएगा पाइकी नंदा जी की के नाम, उनके पति है दीपक, चार लड़का बातें अविनाश, अभिषेक, अरविना, अशील, नाते गुल्लू, अरवी, गणेश और पुनीता परिवार के नाम। तो चलिए फिल्म त्रिशूल का गाना, मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है।

जी दोस्तों, यहाँ अगला गाना जाएगा अब ऑफ कोर्स अनु के नाम, हरीश जी बोबासे से उन्हें डेडिकेट करना चाह रहे हैं यह गाना, और कहते हैं कि संभल जाए नजर ना लग जाए जी।

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, हमारा कार्यक्रम समाप्ति होने चला है और अंतिम गाना जाएगा विशेषकर प्रकाशवती जी के नाम, जो अभी बेल्जियम से हमें सुन रही है और कह रही है नाइस सिलेक्शन। साथ ही साथ जिन लोगों को लाइन नहीं मिली है उनके नाम जाएगा, और पुत्रडो से पूर्णिमा जी और उनकी माता जी तीना साथ दे रही हैं, और बाबू अनंतवा जी हैं बोबासन से, संजय जी हैं पोलवी से, और जितने भी लोग साथ दे रहे हैं उन सब के नाम यहाँ अगला गाना आएगा। और अनीता की ओर से जो है आपको हैप्पी म्यूजिक डे कल के लिए, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस यहाँ पर रेडियो मनोरंजन पर। और अब हमारी मुलाकात होगी अगले सप्ताह को, अगले शनिवार को। तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय योर वीकेंड। बाय बाय।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: To PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार, 2 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। बजट 2026-2027 में सरकार ने पेंशन व्यवस्था में नए बदलावों की घोषणा की है। पहली जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन का नाम बदलकर स्टेट एज पेंशन रखा जाएगा। सरकार के अनुसार 14,000 रुपये से कम मासिक आय वाले लोगों को पूरा पेंशन मिलेगा। इससे अधिक आय वालों को भी पेंशन मिलता रहेगा, लेकिन उसकी राशि आय के अनुसार धीरे धीरे कम होगी। वर्तमान लाभार्थियों में से 90% से अधिक लोग योजना के दायरे में बने रहेंगे। पानी के सेक्टर के लिए बजट में की गई घोषणाओं का सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने किया स्वागत। सरकार ने अगले 3 वर्षों में जल के विकास के लिए 6.4 बिलियन रुपए के प्रावधान की घोषणा की है। योजना में जल भंडारण, फिल्ट्रेशन और नए बोहल्स जैसे कई प्रावधान शामिल हैं। बजट के बाद आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में सरकार के मंत्रियों ने कल विभिन्न कदमों का स्वागत किया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओयान नावामाही ने कहा कि महिलाओं और परिवारों से जुड़ी कई प्राथमिकताओं को बजट में शामिल किया गया है। वहीं ऊर्जा मंत्री पत्रिक आसियाबादन ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सहायता योजनाओं का उल्लेख किया। शिक्षा मंत्री महेन्द्र गंगा प्रसाद

0: ने शिक्षा सेक्टर में समावेशन और स्कूलों में उत्पीड़न के खिलाफ कदमों पर जोर दिया। बिजनेस मोशस ने बजट की प्रमुख आर्थिक घोषणाओं का स्वागत किया। संगठन का कहना है कि सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई किए गए प्रयास सकारात्मक साबित होंगे। बजट में महिलाओं से जुड़े कई कदमों का ऐलान किया गया है और इसे सकारात्मक बताया जा रहा है। विशेष रूप से मासिक धर्म अवकाश और मैटरनिटी लीव को एक वर्ष तक बढ़ाने के प्रस्ताव को महिलाओं के कल्याण और नौकरी स्थल पर उनके अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। एक अमरीकी अधिकारी के अनुसार यह समझौता दक्षिणी लेबनान में इसराइली हवाई हमलों और सीमा पर बढ़ते संघर्ष के बाद हुआ है। हालिया झड़पों में लेबनान में कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई है। फुटबॉल में दो मैच दो जीत और अब राउंड ऑफ 16 का टिकट पक्का। मेजबानी यूएसए ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपना शानदार अभियान जारी रखते हुए ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। इस मुकाबले में टीम यूएसए ने शुरुआत से ही तेज और आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: कुछ कुछ होता है राहुल।
3: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम, ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। Happy Music Day from NBC Radio. इतिहास के झरोखों से
4: इतिहास के झरोखों से नमस्कार श्रोताओं, मैं अलका धनपत और सुमी सरकार आपके साथ जुड़ चुके हैं। आज इतिहास के पन्नों में क्या जाएं, इतिहास हमारे सामने आकर खड़ा हुआ पड़ा है तो लगा इतिहास को पहले यहीं से पकड़ें फिर पीछे लौटेंगे। और आप भी हमारे साथ जुड़ सकेंगे 4028070 पर। श्रोताओं, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो बहुत पन्ने पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए जो इतिहास हमारे झरोके से आज झांक रहा है उसको पकड़ते हैं। तो भाई कल बड़ा ही प्यारा दिन है, तो समझ गए ना आप, कल तो एक नहीं दो दो इंटरनेशनल डे हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्या बात है, एक तरफ संगीत और एक तरफ योग, दोनों के दोनों हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। लोग सोचते हैं संगीत दिवस तो अब मनाना शुरू किया, योग दिवस तो मिस्टर मोदी के आने के बाद इंटरनेशनल योग दिवस बना। नहीं श्रोताओं, जब से मनुष्य ने बुद्धि का प्रयोग किया, खास करके हमारे वैदिक ऋषि विशेष रूप से पतंजलि ऋषि, तब से योग की प्रक्रियाएं हम सीख रहे हैं। और केवल योग में शारीरिक क्रियाएं नहीं है, योग तो मन से प्रभु से हमें जोड़ देता है। योग का मतलब ही है मिलन, ये तो साधना का रास्ता है, केवल खड़े होकर जुम्बा करने का नहीं है, इसमें तो जीवन पद्धति बदलनी पड़ती है। और संगीत उसकी तो पूछिए ही मत, सामवेद ने ही मानो संगीत के सातों स्वर दिए, माँ सरस्वती की परिकल्पना खड़ी हो गई और माँ सरस्वती के हाथ में वीणा है जो भारत का बहुत ही पुराना वाद्य यंत्र है। तो श्रोताओं, संगीत केवल मनुष्य के पास नहीं है, चिड़ियाँ भी गाती हैं। सुबह किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर तो देखिए चिड़ियाँ कितना चहचहाती हैं और फिर दिन भर के लिए उड़ जाती हैं, और ज़रा शाम को जब वे घर लौटती हैं तब उस पेड़ के नीचे खड़े होकर देखिए, अरे वाह क्या संगीत होता है सुबह भी और शाम भी। और एक हम मनुष्य हैं, अच्छे संगीत की बजाय लड़ाई के संगीत में, ईर्ष्या के गीतों में, ईर्ष्या की जिंदगी में, द्वेष की बातों में उलझे ही रहते हैं। क्यों नहीं बैठ के कुछ गीत सुन लेते, क्यों नहीं कुछ गीत गुनगुना लेते, क्यों नहीं अकेले बैठ के उस परमात्मा को अपने गीत समर्पित कर देते। कभी गीत गाते हुए रोइए, कभी हंसिए, कभी डांस भी करिए, कोई घर में नहीं है तो वाह, इसे कहते हैं संगीत का जादू। तो श्रोताओं, हम सभी कल विश्व पूरा विश्व मनाएगा अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भूलना मत, ये दोनों दिवस एक दिन के लिए नहीं होते, जो केवल एक दिन के लिए मनाते हैं कि टी शर्ट मिल गई, आज जाके हम एक

बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाकर आ गए और उसके बाद दिवस गया भाड़ में, जिंदगी चली अपनी आड़ में। तो श्रोताओं, फिर जिंदगी भी गिरने उठने लगती है, इसलिए जो संगीत और योग से जुड़े रहते हैं वे हर साल खुशियों के साथ अपने स्वास्थ्य को लेकर आगे बढ़ते हैं और बुढ़ापे को भी एंजॉय करते हैं। तो मेरे साथ सुमित जुड़ गई हैं और

0: सोच जो योग करे सुबह उठ के उसको जीवन के सारे भोग आसानी से मिले।
1: बिल्कुल, चलिए एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। और अलका जी के लिए लग रहा है ये दोनों दिन बहुत ही विशेष, आज अलका जी की आवाज
0: सचमुच
1: अलग ही चहचहाहट है जिसे कह सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर संगीत दिवस तो हम मनाएंगे ही, साथ ही हम जो है योग दिवस भी मनाएंगे। तो आप हमारे साथ देते रहिए ऐसे ही रेडियो मनोरंजन पर 4028085 पर। साथ ही जो है आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज भेजना चाहे तो मैसेज भी भेज सकते हैं। एक गाने की ओर पढ़ते हैं और फिर जो है हम
0: चलिए सुनिए जरा इस गीत को।

0: इतिहास के झरोखों से
1: श्रोताओं, सचमुच गीत और मीत दोनों ही जिंदगी में चाहिए, पर मीत केवल, कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि मीत केवल पति का ही नाम है या मीत का मतलब है आपका एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। अरे भाई, मीत तो कोई भी हो सकता है। मीत मतलब मित्र, आपकी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, या कोई आपका और दोस्त भी हो सकता है, या कोई सहेली हो सकती है। मित्रता का रिश्ता जिस हम संकीर्ण दायरे में मीत को बांधते हैं उससे बहुत ऊंचा होता है, वह बंधु होता है, अर्थात प्यार के बंधन में बांधने वाला। तो श्रोताओं, गीत और मीत कभी कभी बड़ी गलत व्याख्या हमारे जीवन में चलती है। मीत मतलब जो मित्रता रखता है, तो संगीत से मित्रता रखने वाला भगवान का मित्र बन जाता है। लेकिन श्रोताओं, संगीत भी जहां आपके फेफड़ों को इतनी ऑक्सीजन देता है, जब आप लंबी तान लेते हैं, गाते हैं, आप किसी और दुनिया में खो जाते हैं। यही तो चाहिए ना, हम सब दिन भर इसी दुनिया में उलझे रहते हैं। उसने मुझे यह कहा, उसने मुझे वह कहा, उसने मेरे लिए यह नहीं किया, मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरा शोषण किया, पता नहीं क्या क्या मन में रखते रहते हैं। लेकिन जब हम कुछ गीत गाने लगते हैं तो बस खो जाते हैं, कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, हम किसी और भाव स्थान पर या किसी और भाव में पहुँच जाते हैं। ठीक योग भी ऐसे ही है। अब योग शुरू तो हो गया 2015 से, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को बन गया, लेकिन भाई इसकी भूल मत करिएगा कि ये 2015 से नहीं है। हमारे ऋषि तो इस योग के माध्यम से 500-500 साल की भी साधना एक ही शरीर में करते रहे और प्राणों तक को उन्होंने अपने काबू में कर रखा था। यहाँ तक कि अपनी सांसों को भी वे नियंत्रण में रख सकते थे, पानी पर चल सकते थे।

0: जमीन से ऊपर चल पाते थे, यह सब योग साधना ही थी। तो यह साधना और संगीत कोई कल की पैदावार नहीं है, कल की फसल नहीं है कि आप उसे काट लेंगे और खा लेंगे। यह फसल तो इतनी पुरानी है कि उसको पढ़ते पढ़ते एक जन्म क्या, कई जन्म बीत सकते हैं। तो श्रोताओं, योग और संगीत दोनों से जुड़ना बहुत जरूरी है। और सुमिता जी की तो आवाज ही बहुत मीठी है, तो आज सुनते हैं इनसे कुछ संगीत दिवस के बारे में।
1: ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं कहाँ तक सत्य है ये अलका जी, के कहते ना जब संसार में कुछ नहीं था तो ध्वनि ही थी, है ना?
0: बिल्कुल। और ओम शब्द जो है वो आज भी हमारे, क्योंकि कुछ लोगों ने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है सूर्य के आसपास, तो एक ओम जैसी ध्वनि आज भी सुनाई देती है
1: जी। और कहीं ना कहीं अगर हम इस वर्ष के थीम की बात करें, खासकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो विमेन एम्पावरमेंट थ्रू योगा, विमेन एम्पावरमेंट की चर्चा तो आज चारों तरफ हो रही है।
0: अरे हम दोनों भी महिलाएं हैं।
1: तो चलिए यहाँ पर ये तो विमेन एम्पावरमेंट के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है।
0: बिल्कुल।
1: और कहीं ना कहीं महिला हमेशा से ही सशक्त रही है, कभी वो कमजोर थी ही नहीं।
0: असल में घरों को बनाया उसने, पुरुषों को आगे बढ़ाया उसने। जितने पुरुष आगे बढ़े, अगर समय पर रोटी ना मिली होती, उनकी सेवा ना हुई होती, तो वे भी महिला की तरह ही घर संभाल रहे होते। तो इसलिए आज पूरे संसार को महिलाओं का धन्यवाद करना ही चाहिए। और इस बार के योग दिवस के थीम में तो महिला को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की बात की गई है।
1: कहीं ना कहीं ये बहुत ही सराहनीय है कि जैसे मोदी जी ने इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का प्रयास किया,
0: भारत का एक नाम हुआ और गौरव। देखिए पता है आजकल क्या होता है, जो किसी देश की बहुत अच्छी चीजें होती हैं दूसरे देश लोग अपने लिए पेटेंट करा लेते हैं, लेकिन योग को भी दुनिया ढूंढ रही है। लेकिन उससे पहले ही भारत ने बता दिया कि योग भारत की ही धरोहर है, उसी के इतिहास के पन्नों की चीज।
1: एक समय ऐसा था जो हमें देखने को मिलता था कि योग जो है विदेशी लोग ज्यादा इससे जुड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं जुड़ रहे थे। क्योंकि कोई थोड़ा सा सीख कर जाकर उनको सिखा रहा,
0: क्योंकि वहाँ पता नहीं था।
1: और अभी के लिए जब जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मान्यता मिली है, तो एक अच्छी बात है कि सही तरीके से जो है वो सही लोगों के द्वारा लोगों तक पहुँचाया जा रहा है।
0: इसमें हमें स्वामी रामदेव जी का तो बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो जो आस्था चैनल चल रहा है और लोग उनको देख रहे हैं कि वो एक व्यक्ति इस उम्र में भी इतना सही ढंग से योग कर रहा, चार चार घंटे वे कमेंट्री के साथ योग सिखाते रहते हैं। तो मतलब पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा संदेश है कि देखिए खान पान संयमित हो, जीवन संयमित हो, और आप योग करें तो आप एकदम स्वस्थ रह सकते।
1: और अगर इस चैनल की जो आपने बात की, ये तो हमारे MBC पर भी मिलता है, बहुत से लोग इसे देखकर सवेरे सवेरे जुड़ते भी
0: हैं। सही कह रही
1: हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलिए एक और गाना हो जाए
0: जी। चलिए श्रोताओं।

0: इतिहास के झरोखों से।
1: श्रोताओं, इतिहास के झरोखों में जब झांकते हैं तो जरा म्यूजिक डे की भी और बढ़े, संगीत दिवस। अरे यह भी तो 21 जून को ही पड़ रहा है और पूरा विश्व इसको मनाएगा। अरे पूछिए क्या, इस दिन तो बड़े बड़े कलाकार भी सड़क पर उतर आते हैं और जो बड़े शोज भी किए जाते हैं कभी कभी तो वे टिकट भी नहीं लेते हैं, क्योंकि संगीत दिवस को उनका हुनर उस दिन समर्पित होता है। ओपन एयर कंसर्ट्स होते हैं सड़कों पर, स्क्वायर्स में, पार्क्स में, मतलब संगीत दिवस का मतलब आओ झूमो गाएं। और श्रोताओं, आजकल तो बहुत ही बढ़िया संगीत दिवस चल पड़ा है। आगे तो लोग डिस्कोटेक में नाचने जाते थे, गाने नाचने, लेकिन अब तो भजन के भी संगीत प्रोग्राम होने लग गए हैं, कंसर्ट हो रहे हैं
2: और अच्छी बात है।
1: सड़कों पर पूरी दुनिया ऐसे बच्चों को लेके और खुले में सब राम कृष्ण की बात कर रहे हैं, एक अलग तरह
2: जैसे
1: का
2: एक समय नगर कीर्तन होता था ना,
1: बिल्कुल
2: उसी तरह से।
1: तो जब हम YouTube पर देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि मॉरिशस में कब कोई ऐसा ग्रुप ऐसा शुरू करेगा।
2: ऐसे तो आमतौर पर देखा जाए तो मॉरिशस के नौजवान काफी एक्टिव है इन सभी चीजों में।
1: सच में
2: जब भी धार्मिक कोई भी अनुष्ठान होता है,
1: जिस समय शिव का महाशिवरात्रि
2: होती है, शिवरात्रि होती है, ऐसे में गणेश चतुर्थी होती है, कितने नौजवान जुड़ते हैं। और कहीं ना कहीं आजकल

0: हम जस्ट बिकॉज हम लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट करने के बारे में बोल रहे हैं, तो बहुत सारे कॉन्सर्ट्स भी अभी शुरू हो गए हैं जो पेड होते हैं, ताकि लोकल आर्टिस्ट को जो है प्रोत्साहन मिले, उनको भी आगे
1: उनको भी मंच पर उनके साथ खड़ा करते हैं जो एस्टेब्लिश कॉन्सर्ट्स के लिए।
0: कभी कभार ऐसा होता है कि विदेश से जो बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं, सोचो हम कितने महंगे टिकट पे करके जाते हैं उनको।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जब हमारे ही देश का कोई बच्चा या कोई नौजवान अगर अपने टैलेंट को दिखा रहे, तो ऐसे में हमारा भी जाना बनता है।
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं, सचमुच ये जो संगीत दिवस है, न केवल लोकल या फॉरेनर कलाकारों को आगे बढ़ाता है, वे स्वयं भी संगीत दिवस के दिन अपनी कला को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। और इससे बड़ा और त्योहार क्या होगा जीवन का। बाकी सब त्योहार तो हम घर में मनाते हैं, परिवार में, पड़ोसियों में या अपने आसपास के लोगों में, लेकिन संगीत दिवस तो मानो पूरी दुनिया के साथ हमको जोड़ देता है। और इस दिन जो नए गीत, नई चीज़ें, नए कलाकार और किस तरह से लोग अपनी चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, ये अपने आप में विशेष होता है। और उसका प्रभाव स्कूल कॉलेज सब में दिखता है। सभी स्कूल कॉलेजेस में देखिए संगीत दिवस मनाया जाता है, बच्चे अपनी प्रतिभा, अध्यापक अपनी प्रतिभा, और पूरा स्कूल झूम उठता है, बच्चे झूम उठते हैं और कितनी तैयारी करते हैं। तो ये संगीत दिवस कितनी खुशी दे रहा है। संगीत दिवस खुशी देता है, जीवन को उत्साह से भरता है, तो योग दिवस हमको स्वास्थ्य देता है
0: जी। और कहीं ना कहीं इन दोनों दिन का एक ही दिन मनाना, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है ना।
1: योग भी तो जीवन का संगीत है और संगीत भी जीवन का योग है। बिल्कुल।
0: तो जिसने भी इसके बारे में सोचा है, बहुत सोच समझकर इन दोनों दिनों को एक दिन मनाने के बारे में सोचा होगा।
1: तो चलिए श्रोताओं, एक गीत सुनते हैं।

0: इतिहास के झरोखों से।
1: श्रोताओं, संगीत केवल गाने की चीज नहीं है, संगीत एक थेरेपी है। जब आप उदास होते हैं तो पुराने गाने लगा के नहीं सुनते हैं और एक घंटा गाने सुन लीजिए, दिल हल्का हो जाता है। जब आप बहुत खुश होते हैं, कोई गीत लगा के नाचने को मन नहीं करता, जरा नाच लीजिए, देखिए कितना अच्छा लगता है। आपके मन में किसी बच्चे को लेकर प्यार आता है तो मन में एक लोरी अपने आप जागने लगती है, गीत जागने लग जाता है। दोस्त अच्छा मिल जाए तो मन गाने को करता है। समुद्र के किनारे मन खुश हो तो मन गुनगुनाने को करता है। तो सचमुच संगीत का हमारे शरीर से, मन से, आत्मा से संबंध है। आत्मा जब हम भजन गाते हैं और उस ईश्वर को याद करते हैं, मन जब हम अपने मन की फीलिंग्स की तरंगों में डूबते उतरते हैं, और शरीर जब हम नृत्य करके संगीत के साथ झूम उठते हैं। केवल इतना ही नहीं, पता नहीं और कितनी बीमारियां भी इसी संगीत से ठीक होती हैं। तो हम सुमिता से सुनते हैं।
2: बिल्कुल, आपने भक्ति की बात की, जहाँ पे एक समय था जब भक्ति काल था तो संत तो गा के ही ईश्वर को प्रसन्न किया करते थे।
1: और उस समय के अधिकतर संत निरक्षर थे
2: जी, सिर्फ उन्हें जो उन्होंने सुना
1: था, जो भाव उनके अंदर था, जैसे सूरदास ये तो अंधे भी थे
2: जी,
1: बस कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठ के गाया करते थे।
2: जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं फिर देखिये संगीत कितना आगे बढ़ गया। आज भी किसी बीमारी के इलाज के लिए भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जहाँ पर लोग जो है कहते हैं ऑपरेशन के दौरान संगीत चलाते हैं, ऐसे जो है पेशेंट की रिकवरी होती है, पेशेंट जो है ट्रीटमेंट को जो है अडॉप्ट कर पाता है ना?
1: और देखिए जितने बड़े बड़े स्पा हैं, वहाँ पर जब आप जाते हैं मसाज के लिए तो एक हल्का संगीत चलता रहता,
2: रहता है। बिल्कुल सही।
1: तो इसका मतलब उस मसाज के साथ जो संगीत भीतर का मसाज करता है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है।

0: संगीत जो है कहीं ना कहीं हमें ईश्वर से जोड़ता है और हमें हेल्दी रखने के लिए भी संगीत जो है बहुत ही कारगर साबित होता है। और अभी तो काफ़ी ऐसे जो है बीमारियों में जो है संगीत का अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंस ये कहा है। जैसे देखिए यहाँ पर बताया गया कि पार्किंसन डिजीज़ में भी जो है बहुत से लोगों को संगीत सुनाते हैं।
1: वैसे भी जो लोग गाते हैं क्योंकि सांस लंबी होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं, उनको जो दिमाग की बीमारियाँ वो कम होती है।
0: हाँ,
1: और स्ट्रेस तो संगीत से जाता ही जाता है। क्यों बच्चा सो जाता है माँ की गोद में लोरी सुन के?
0: हाँ।
1: तो ये बताता है कि बच्चा बिल्कुल शांत होकर गहरी नींद में चला जाता है। जब उस बचपन में वो लोरी सुन के गहरी नींद में जाता है तो अस्पताल में भी अब इस तरह के प्रयोग प्राइवेट क्लिनिक्स कर रहे हैं।
0: काफी म्यूजिक थेरेपिस्ट अब सामने आए हैं,
1: सही बात,
0: जहां पर लोग जो है दवाइयां जब उन पर काम नहीं करती है तो लोग म्यूजिक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं ताकि अपने आप को बेहतर फील करवा पाए।
1: बिल्कुल ठीक। तो चलिए हम भी गीत गाते हैं और सुनते हैं।

0: हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, गीत तो गाते हैं पहले उनका गाना सुन लेते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्ते बहन जी, मैं कतर से आशा जानू बोल रही हूँ।
0: हाँ कहिए आशा जी।
1: तो सबसे पहले मैं आपको, सुमित जी की पूरे एमबीसी टीम को और सभी संगीत प्रेमियों को संगीत दिवस एवं योग दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
0: बहुत धन्यवाद आपको भी, क्योंकि आप तो कविता सब करती हैं और खूब बढ़िया सब लिखती भी हैं।
1: तो जैसे कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए संगीत एवं योग का होना अति आवश्यक है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि संगीत हमें जीने की कला सिखाती है और योग के द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर से और बेहतर बना सकते हैं।
0: बिल्कुल ठीक,
1: और कह सकती हूँ कि जब सात सुरों का हो संगम, राग ध्वनि गुंजे मध्यम, जब ताल से ताल मिले तो संगीत सरिता में बह गए हम।
0: वाह क्या कहने हैं।
1: और ये एक बात जोड़ूंगी बहन जी, कि संगीत तो जीवन है और संगीत जीवन का सच्चा मीत भी है।
0: हाँ।
1: क्योंकि संगीत के रहते कोई नहीं कह सकता मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ।
0: बिल्कुल, सच्चा साथी है ये, सच बात है,
1: सच्चा साथी है। क्योंकि संगीत वो साथी है, अगर आप तन्हा हैं अकेले हैं कोई आपका साथ दे या ना दे।
0: देखिए हम तो कहेंगे हींग लगे ना फटकरी रंग चोखा हो जाए।
1: संगीत हम हर पल, वो खुशी हो या गम हो, संगीत हमारा साथ देता है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं।
1: खुशी के अवसर आते हैं तो झूमता हुआ ताराना हम सुन लेते हैं, और अगर गम के दिन अगर मन उदास होता है तो एक वो।
0: बिल्कुल, आपका फोन शायद कट गया है, तो तब तक हम ये गीत चलाते हैं।

0: इतिहास के झरोखों से
1: श्रोताओं, इतिहास की झरोखों की ओर जब बढ़ते हैं तो संगीत का मतलब केवल गायन ही नहीं है, संगीत में सुर, ताल और लय तीनों का समन्वय है। अरे भगवान शिव की नटराज की मूर्ति कब बन गई होगी पता नहीं, और आज तक वे ताल का स्वरूप हैं। इसी तरह से लास्य नृत्य, इसी तरह से उनका तांडव। आप सोचिए, इतिहास के कौन से पन्नों में, पुराण की कौन सी कथाओं में यह सब, अर्थात वैदिक काल से ही भारतीय ऋषियों ने

0: ये सारी चीज़ें हमारे समाज के सामने देनी शुरू कर दी थी। और केवल मन का संबंध ही नहीं है, वरन बांसुरी, सितार, तबला और इनके साथ मंत्रों की झनकार है। और बांसुरी का संबंध तो भगवान कृष्ण के साथ है। आप बताइए, त्रेता युग के कहाँ से हम प्रमाण भी जुटा के बताएंगे कि कृष्ण जिस समय गायों को चराने जाया करते थे, ऐसे ही बांस को तोड़कर उसमें छिद्र करके कितना मधुर संगीत उन्होंने निकाल लिया। आज तो बांस बजते हैं जब हवा चलती है, लेकिन कृष्ण तो बांसुरी वाले ही हो गए और यही बांसुरी आज तक बज रही है। उसके नए नए इनोवेशन्स हो रहे हैं, नए तरीके की। इसी तरह से वीणा देखिए, कितनी पुरानी चीज़ है। और एक तारा, जानते हैं एक तारा कैसे बनता था? ये जो कोणा खाते हैं ना, इसको सुखाया जाता था और इसके ऊपर तार सब बांध के जब वो अंदर से खाली होता था तो राजस्थान में वही एक तारा बनता था।
1: सितार भी तो कुछ वैसे
0: सितार भी फल है, बड़े कद्दू को लेकर बनाया जाता था। तो श्रोताओं देखिए, हमारे ऋषियों ने कोई इन बातों की इंतजार नहीं कि बहुत खूबसूरत चीजें होनी चाहिए,
1: आधुनिक तरीके से बनाए। हाँ। जो प्रकृति ने दिया, जो प्रकृति उसी ने का प्रयोग किया,
0: उसी में ही। यहाँ तक कि आप देखिए चीन में जिस समय वो बर्तन पानी के कप्स भर के रखते हैं और उसके ऊपर जो एक ध्वनिया निकालते हैं, कभी सुनकर देखिए कितनी मधुर ध्वनिया। क्योंकि चाइना के पास भी अपनी पुरानी धरोहर, अपना पुराना इतिहास बहुत ज्यादा है। और संगीत और योग जब मिल जाते हैं, श्रोताओं इसीलिए शायद सोचकर 21 जून को योग दिवस बनाया गया, क्योंकि संगीत और योग ये दोनों मन को जितना नियंत्रण करते हैं, दुनिया की और किसी चीज़ में उतनी ताकत है ही नहीं कि जो मन को नियंत्रित कर सके। बैठे बैठे आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं, आप बैठे कहीं हैं, सोच कहीं और रहे होते हैं, कभी किसी का बुरा तो कभी किसी का भला, तो कभी अपना मजा कर रहे होते हैं, लेकिन संगीत और योग आपको वापस पकड़ते हैं कि नहीं टिको यहाँ पर। ये जो मन की साधना है ना, जिसे बड़े बड़े ऋषि भी कर करके थकते हैं, उस मन की साधनाओं को योग और संगीत ही साध पाते हैं। और फिर जो हमारे तनाव के हार्मोन्स हैं उनको कम करता है योग, उनको कम करता है संगीत। अगर एक हल्का प्यारा संगीत लगा के आप सुबह आधा घंटा 40 मिनट योग कर सकें तो देखिए एक महीने बाद आप उस समय को छोड़ना नहीं चाहेंगे। आपको लगेगा अमृत वेला का वह अमृत समय था। इसी तरह से जैसे जैसे जितना हम आज के जीवन में वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, विचारों के प्रदूषण से जूझ रहे हैं, उतना उतना हमको आज शांत संगीत और योग की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। भोजन के बाद देखिए क्या कहते हैं सब, एक शवासन करिए। शवासन का मतलब जैसे एक डेड बॉडी है उसी तरह से 10 मिनट के लिए अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करके लेट जाइए और उसके साथ आपका माइंड जो है मेडिटेटिव होना चाहिए और एक हल्का संगीत चले तो देखिए कितनी जल्दी आपको लगता है कि वाह मुझे कितनी तनाव से मुक्ति मिल गई है। तो केवल शारीरिक ही नहीं, क्योंकि योग में प्राणायाम, ध्यान, आसन ये सब उसके अंग हैं। केवल आसन करने से योग नहीं होता है, प्राणों पर नियंत्रण करना, ध्यान लगा सकना, मेडिटेशन तक पहुंचना, अपने शरीर की शुद्धि से लेकर मन की शुद्धि तक पहुंचना, यह संगीत और योग हमको सिखाते हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर कल संगीत दिवस, योग दिवस मनाएं। पर जैसे खाना रोज चाहिए ना, एक दिन खाना खा के जिंदगी नहीं कटती, ठीक ऐसे ही एक दिन योग दिवस मना के स्वास्थ्य नहीं मिलता है, उसे अपने जीवन का अंग बनाना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों सुमी?
1: बिल्कुल। और अगर हम बात करें ऐसे तो संगीत दिवस के समय जो है राष्ट्रीय स्तर पर कितने सारे आयोजन होते हैं,
0: मॉरिशस में भी
1: आते आते हम देख रहे हैं कि चारों ओर जो है वो कॉन्सर्ट के लिए, जैसे कि ना म्यूजिक फेस्टिवल्स के लिए जो है टेंट बनाए हैं, आर्टिस्ट जो है परफॉर्म करेंगे। और ये भी एक अच्छा तरीका है जहाँ पर हम लोकल टैलेंट को अवसर देते हैं। और उसके अलावा अभी तो चारों ओर देश में योग को लेकर कितना
0: बजट में भी लोकल आर्टिस्ट के लिए बजट डाला गया है, ये सब इन्हीं सब चीजों को प्रमोट करने के लिए। बिल्कुल। तो श्रोताओं सचमुच इस दिन का इंतजार तो हर एक को होना चाहिए और ये दिन एक दिन ना मनाएं, रोज मनाएं, तभी कुछ बन सकता है।

0: श्रोताओं, गीत गाना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो बस फिर बीमार पड़ जाएंगे। अरे भगवत गीता को याद करिए, गीता मतलब जो गाई गई, जो 18 अध्याय के श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा गाए गए, वह है भगवत गीता, भगवान द्वारा जो गाई गई। आज उन श्लोकों को गा कर लोग बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा सामवेद सारे गा मा पा धा नी सा, ये जो 7 स्वर हैं, ये सबसे पहले भारत ने ही दुनिया को दिए। और इन्हीं 7 स्वरों के आसपास पूरी दुनिया का संगीत चलता है। जिसने ये 7 स्वर साध लिए, वह चाहे वाद्य यंत्र हो, वह चाहे गाने में हो, गायक हो, वादक हो, समझो वह संगीत के नज़दीक आ जाता है। तो श्रोताओं, जिसे भगवान ने गाया, जिसे सामवेद ने गाया, उसे हम कैसे भुला सकते हैं। नमन है भारतीय संस्कृति को, जिसने योग और संगीत जैसी ऐसी चीज़ें दी जो जीवन की इतनी महत्वपूर्ण अंग हैं कि अगर कोई अपना ले तो जीवन को अच्छे से जी सकता है।
1: बिल्कुल। और योग और संगीत की बात करें तो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से तालमेल मिलाकर बैठते हैं कि योग के बिना मानो संगीत अधूरा है और संगीत के बिना मानो योग अधूरा है
0: और इन दोनों के बिना जीवन अधूरा है।
1: तो चलिए इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं। अलका जी, जाते जाते हम हमारे श्रोताओं को संगीत दिवस एवं योग दिवस की शुभकामनाएं देंगे
0: और अभिनंदन
1: जी। तो चलिए 3 बजे जो है आप सुन पाएंगे समाचार और उसके बाद आज की चर्चा कार्यक्रम जो है जो सवेरे 9 बजे हुआ था उसका रिब्रॉडकास्ट आप सुन पाएंगे। तो हमें दीजिए अनुमति, अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, सुबह 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। बजट 2026-2027 में सरकार ने पेंशन प्रणाली में नए बदलावों का ऐलान किया है। पहली जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन का नाम बदलकर स्टेट एज पेंशन रखा जाएगा। सरकार के अनुसार 14,000 रुपए से कम मासिक आय वाले लोगों को पूरा पेंशन मिलेगा और इससे ज्यादा आय वाले लोगों को भी पेंशन मिलता रहेगा, लेकिन उसकी राशि आय के अनुसार धीरे धीरे कम होगी। वर्तमान लाभार्थियों में से 90% से अधिक लोग योजना के दायरे में बने रहेंगे। बजट के बाद आयोजित प्रेस सम्मेलन में कल कई मंत्रियों ने विभिन्न कदमों का स्वागत किया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओयन्ना वोमाही ने कहा कि महिलाओं और परिवारों से जुड़ी कई प्राथमिकताओं को बजट में शामिल किया गया है। वहीं ऊर्जा मंत्री पत्रिक अस्यावादन ने सौर्य ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सहायता योजना का उल्लेख किया। शिक्षा मंत्री महेन गंगा प्रसाद ने शिक्षा सेक्टर में समावेशन और कॉलेजों में स्कूलों में उत्पीड़न के खिलाफ कदमों पर जोर दिया। बिजनेस मर्चेंट्स ने बजट की प्रमुख घोषणाओं पर खासकर आर्थिक कदमों का स्वागत किया। संगठन का कहना है कि सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रयास सकारात्मक दिशा में अच्छे कदम है। साथ ही उसने बजट कदमों के प्रभावी रूप से लागू किए जाने के महत्व पर जोर दिया। बजट 2026-2027 में महिलाओं से जुड़े कई अहम कदमों का ऐलान किया गया है। इसे सकारात्मक बताया जा रहा है। विशेष रूप से मासिक धर्म अवकाश और मैटरनिटी लीव को 1 वर्ष तक बढ़ाने के प्रस्ताव को महिलाओं के कल्याण और कार्यस्थल पर उनके अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फुटबॉल में 2 मैच 2 जीत और अब राउंड ऑफ 16 का टिकट पक्का। मेजबान यूएसए ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपना शानदार अभियान जारी रखते हुए ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। इस मैच में टीम यूएसए ने शुरुआत से ही तेज और आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच

0: युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। ये समझौता दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों और सीमा पर बढ़ते संघर्ष के बाद हुआ है। हालिया झड़पों में लेबनान में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। टेम्पल रोड रिविया जुरान पौ में 70 साल के 70 years old के श्री कांता प्रसाद दूता की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह के 10:30 उनकी पत्नी माला दूता की मकान रिविया जुरान पौ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए उत्तरी रिविया जुरान पौ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10:30 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं और M3।
2: आज की चर्चा।
3: नमस्कार, आज की चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है हमारी जो सड़कें हैं उस पर जो नए नियम लागू किए गए हैं और फिर हमारी सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं को किस तरह से हम घटा सकते हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे मेहमान हैं सब इंस्पेक्टर मिर्जाबुदन। मिर्जाबुदन जी नमस्ते।
4: नमस्ते, आदाब।
3: आदाब, ये कार्यक्रम में आपके स्वागत बा। हमने जैसे देखा था जा ऐसा बुदन, हमने के सड़क पर दुर्घटना बढ़ ले जाता, दिन ब दिन बढ़ ले जाता, हर प्रकार के दुर्घटना हुआ था, पीतों संगे, मोटरसाइकिल संगे, गाड़ी के बीच पालू के संगे। और फिर ये सब बात के ख्याल रखते हुए हमने के जो नियम बा ड्राइविंग के नियम ओकर में कुछ सुधार आना गल बा, कुछ नवा नियम लागू कर गल बा। और आज यही सब विषय पर बात करब जा। और ये सब विषय पर बात करे खातिर आज आप अपन समय निकाल के अयला, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद MBC के भी हमने के जो लोकाशन दिलक। देखा हमने के तक काम जारी है और एक्सीडेंट जब हमने बोली ना सर तो एक्सीडेंट देखा कोई के हाथ में नहीं है, वो तो सर्कमस्टेंस पर है। तब कुछो ना कुछो नहीं चलेला सीमा में सड़क पर, तो एगो एक्सीडेंट दूसरा एक्सीडेंट से लिए करके तो अब एक्सीडेंट हो जाना। कब हो कैसे बोला, बहुत निमन से बोला कि सब प्रकार के एक्सीडेंट बा, पियतों लोग के एक्सीडेंट बा, ए साइक्लिस्ट मोटरसाइकिलिस्ट लोग के एक्सीडेंट बा, ए सोफेयर लोग मैम ऑफले पासाजे जब हमने सिर्फ देखी ना सर तो देखी ना सर कि जिन विक्टिम एक्सीडेंट के ते लोग सब लोग हवन सर। और तौतों जब देखा दे सर हमेशा कौन पाके कही ना सर, देखा कहे अभी आदमी लोग जस्ती एक्सीडेंट पर बतियालन सर, कहे अभी आदमी लोग जस्ती एक्सीडेंट पर ए कमेंट्स करे रन सर, कहे कि अभी सोशल मीडिया पर एक मजा एक्सीडेंट होल बात है देख बार लाइव बतावल गल बा या फिर जस्ती लोग के इन्फॉर्मेशन मिले ला
3: पुलिस के बतावे से अक्ते ये सब जो जानकारी बा ये सोशल मीडिया पर चला वेला
4: और लाइव टेलीकास्ट भी हो जाला, ब्रॉडकास्ट भी हो जाला, तो ये खातिर जैसे आदमी लोग एक्सीडेंट पर बतिया रन सर अच्छा बात है लोग के इन्फॉर्मेशन मिले ला और जानकारी मिले ला। तो ये मैं बोलब सकी ओकर दोनों को देह देखा देखो पॉजिटिव जब लेबा तो हम नहीं बोलना सर कि आदमी के इन्फॉर्मेशन मिला था आदमी लोग सकेला है देख के तनिक जैसी सावधानी रखें सर तो है कुछ पॉजिटिव है। मेरे को तो नेगेटिव होला कि कभी कभी देखी ना सर एक एक्सीडेंट होला तो एक्सीडेंट के बाद दूसरा एक्सीडेंट प्रोवोक होला कहे के बहुत कोई फिल्म मेकर रोकेलन सर गाड़ी के उपशिक्षण कैलन सर। देखा अभी हाल ही में इससे मैंने काम करते नहीं सर देखनी सर एगो एक्सीडेंट हो अब ओकर पीछे हम नहीं हो जब उपशिक्षण लिखा था ओकर पीछे एगो और एक्सीडेंट तो देखा कि आदमी के ओकर जो हमने के सकेला हमने इंसान ऐसे ही सा कि हमने के जो हमने के जो लेसने है कि मजा की रोजीते है कि देखेगे देखा जब ले तू रोक के अपन गाड़ी निमन से मदद करत हुआ कोई के जान बचावत हुआ या फिर कोई के सहायता जो होता जब बहुत अच्छा बात है। मैं चीज तू अपन गाड़ी रोक के उपशिक्षण करत हुआ या फिर आके अपन अपन पोता भी निकाल के फिल्म में करत हुआ या फिर फेसबुक पर डालत हुआ या हाई सब करत हुआ तो हाई देख देखबह तक मजा नहीं अच्छा बात बा कि सकेला हाउ आदमी जो ब्लेसुल बा वही नहीं चाहत कि ओकर फोटो ओकर फिल्म फेसबुक पर आए या फिर जो फामी कोई एप्लीकेबल बा कबो एगो सड़क दुर्घटना

0: जो घायल रहला या फिर कोई अपन जान गवा देला तो सके ला फैमिली नहीं खुशी रहल कि हो जो लेता में बा कि हाउ लोग आदमी लोग देखी तो है सब देखा
1: अपने उ लोग देखे
0: एग्जैक्टली मत दो गोते है पॉजिटिव और नेगेटिव भी तो इमे चाहना तन्नी कुन चाहना सावधान रह के कुछ गलत है मैं सुनमो एक्सीडेंट देखा दे सकी हां एक्सीडेंट बा हुआ था और रापोते भी हुआ था तो इसे हमने के लेसन निकाली ना सर

0: des points, mais puis ego changement en délant ça qui que c'est téléphone qui au quel point monter quand délant ça hey ça peut arriver là qui d'une l'autorité puis bah au lieu puis après nous imédiatement les délant ça au lieu puis concerné au lieu ça déjà bravo mille là qui aïssé voit aïssé voit ça c'est parce qu'ils savent que au lieu que savent que au lieu que au lieu que b au lieu que maxed ha qui accident jimier car que comme c'est comme accident ouais que comme c'est comme admis ghaïel hoy accident que zadié or jamais admis ज्यादा से आदमी लोग सड़क सुरक्षा से इस्तेमाल करिए तो हाई सब हमने के कॉमन गोल है किसे देखा हमने लोटोगी ला पुलिस है मिनिस्टर है ट्रांसपोर्ट के तो या फिर देखा कि कैसे एम्बेसी भी आज है जो प्रोग्राम कर रहा था तो ही सब हमने के कॉमन गोल है एक्सीडेंट कम करे के
1: जरूर जरूर। और अभी जब बताते हैं जा सोशल मीडिया के बारे में कैसे फिल्में हुआ था और फिर ये जो नवा कानून लागू होल बा अभी ड्राइवर लोग पर तो जे एगो एक्सीडेंट होल ये चलते चलते ये सवा कर देवत है और एगो ड्राइवर गलौची होके वो फिल्में करा था तो ओके सके कौन था वॉन्स हुई
0: देखा फिल्में करा थो गलौची होके या फिर रोक के भी तो देखा अपन मोबाइल इस्तेमाल कर
1: देखा
0: वोलों पर हुआ देखा हाई अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी चाह लेवे के हम नहीं बोलना सके एक आदमी जो एक्सीडेंट हो बात तुहर काम नहीं बहा जा जिस सहायता नहीं पहुंचाई के बा
1: तो तू अपन
0: जा हो जा बस की तुहर खातिर दूसर कोई आगे तुहर खातिर दूसर सकेला एक एक्सीडेंट उतना ग्राव नहीं बा मैं सुनवा जब एक आदमी से दू गो दस गो पंद्रह गो बीस गो गाड़ी सब ऐसे होला और खास कर जब भाई मोटरवे पर जहाँ पड़ी आदमी लोग के रफ्तार हुए देखा 37 किलोमीटर तक बगुल हुए हाउजा पर इतना गाड़ी लोग घूले होता और उमें अब शायद में देखे ना सकी एगो दुर्घटना और बा ऐसे हो बा तो इस बा प्रोवोके करे देखा हमने उतना हमने कहनी देखा कौन मौसम पर नहीं जाना सर हमने देखी ना सकी सुरक्षा आम जनता की सुरक्षा बस कि एगो एक्सीडेंट होला तो जब आदमी घायल होला ओकर जिसमें हाथ पाँव टूट गल तो जहाँ कितना ओके दुलिया होला और कितना ओके इनकन्वीनियंस होला एगो काम करे वाला आदमी रहता पर जाके लोपिटाल प्लाक डराए के एक महीना दू महीना ओकर ट्रीटमेंट ओकर हाउस स्वीवी ओकर परिवार में जे एगो घर में वही अपन लड़का के जाता लेकुल छोड़े तो हाउस सब में डिस्टर्बेंस होला इनकन्वीनियंस होला अब वो काम नहीं करेला तो ये सब में बहुत चीज होला आदमी से अकेला खाली एगो एक्सीडेंट सोचेला एगो एक्सीडेंट के पीछे बहुत एप्लीकेशन है
1: जरूर। और जब अभी शुरू करी जा अभी जो नवा नियम लागू होल बा एकरे पर और फिर देखब जा कैसे सकब जा कौन कौन सावधानी चाहिए बरते के कैसे सकब जा ये सब एक्सीडेंट घटावे और साथ ही साथ देखब जा कि कौन कौन कारण से हमने के सड़क पर ये सब दुर्घटना बढ़ ले जाता ढेर फाकते बा
0: बहुत फाकते
1: और जो अलग अलग समस्या बा हमने के समाज में उस सब पर हमने बातचीत कर ले आवत है जा और देखत है जा कि जो अलग अलग समस्या बा ओकर असर पड़ता हमने के सड़क पर भी ड्राइविंग पर भी
0: बेशक सब परेला
1: जरूर। तो सबसे आगे हमने के इन नवा कानून जो अभी लागू होल बा एकर पर थोड़ा कंफ्यूजन भी पैदा हो गल रहल एगो समय में तो हमने के थोड़ा ई नवा नियम समझावो आज भोजपुरी में ताकि सब कोई समझी।
0: देखा हम जितना एकर पर चर्चा होल बा तो आदमी लोग तो जान गल बा आदमी लोग ओकर कोते पॉजिटिव नहीं देखेलन से हमेशा नेगेटिव देखेलन से देखा है कानून जो टेलीफोन पर है पहला कानून जो है पेनाल्टी पॉइंट पेनाल्टी पॉइंट एगो एगो सिस्टम वे है ओकर मकसद जो है कि आदमी लोग के जब जर आदमी खास कर जो आदमी लोग के मजा जब एगो एगो जुर्माना मिलेला तो लिफे नहीं करे लोग पर तो वो लोग कोची नहीं करे से हाउ हाउ ओफॉन्स करे के कैसे के एगो एगो एग्जाम्पल बताए एक्सेस एक्सेस वितेस आदमी जस्ती ज़्यादा अपन गाड़ी तेज रफ्तार से चलावेला तो एगो कॉन्ट्रोवर्शन मिला था वो का कहला हाउ चिकेट आप फिक्स पेनाल्टी वहाँ अपन एगो एगो क्लिप में रख देला हमने जैसा गाड़ी आ गए थे कल ऐसा एगो आदमी के पंद्रह पंद्रह पंद्रह बीस गो फिक्स पेनाल्टी के ओकर नोटिस बा वो देखेला के मजा जब इतना हो जाला तो एक को जाके पे कर जाता देखा अदमिया लगे पैसा बा और वो एक को लेफे नहीं करेला ओकर कोचित पर तो हाई पेनाल्टी पॉइंट में जो है एक मकसद जो आदमी के ओकर ओकर ओकर बिहेवियर ओकर फासों लाहूद से भी करे के ओकर में एगो सौजमा आने खातिर जो आदमी लोग के तो हाई खातिर हाई पेनाल्टी पॉइंट इन एंथ्रोजिया रेस एंथ्रोजिया होल कि जब आदमी मैम पैसा रही मैं जब पैसा जुर्माना के साथ साथ ओकर लिसेंस भी अफेक्ट हुई यानी कि जब इतना पॉइंट जैसे एगो एकर एकर एकर बाजुए रहल कि जितना कोई के ड्राइविंग लाइसेंस है पूरी तरह तो ओकर बाज मिनिमम ओकर ओकर लिमिट रहल कैंस पॉइंट जब आए तो ओकर प्रोसीजर करब से हमनी लागू उतरे कि जहाँ पर ओके ओकर ओकर लाइसेंस डिस्क्वालीफाई हुई जो आदमी के लर्नर है ओकर बाज रहल जिस पॉइंट यानी कि ओकर प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस रहल ओकर जैसे जिस पॉइंट हो जाए।

0: dépassé car là t'as aucun provision comme ça aucun learner aucun disqualifié car les je n'ai que même permis international théo que admis avoir aucun puis par provision à 15 points mais aucun permis c'est comme ça que temporairement pour se disqualifier car les j'ai les Maurice mais pas t'as aucun puis jamais affecté oui et n'a les qui canon et n'a les provisions que les pas même mes admis que permis n'est pas habit learner n'est pas mais où et quatre offense que la penalty point que zérié or où ओकर पर भी सॉक्शन लेवल जाला कि ओकर ओके पीएमयू में मिले के आगे ओके एगो डिस्क्वालीफाई करते से इतना दिन ओके पीएमयू नहीं मिली ओकर लर्नर नहीं मिली तो देखा तो चार जरिए चार बॉस में है है पेनल्टी पॉइंट आना रहल जब आदमी लोग के सॉक्शन ले अब आदमी लोग के एगो एगो एगो सिस्टम है जो बोला 36 माह तीन बरिस तक हाउ जो पॉइंट मिलल बा तो हाउ पॉइंट ओके ओकर लाइसेंस लगे रही ओकर लाइसेंस में रही सही जाए ओकर वाली जीते ओकर ओकर जीराब ओकर जीरे हाँ मैसी ओकर जीरे से 36 माह तब अब सब में नहीं एगो ऐसा नहीं गुलालिस कर ले हों सा कि ट्रंडे ट्रंडे ऑफेंस लिस्टे होल बा जिन के जरिए आदमी के पॉइंट मिली सेटन ऑफेंस के तनी ज्यादा पॉइंट मिले ला सेटन ऑफेंस के तनी कम पॉइंट मिला सेलों हाउ ग्राविटे ऑफेंस वा तो ई में जब इंट्रोड्यूअर हल ता तो एगो 27 ऑफेंस के मजे दे पॉइंट ले मिलर हल दे एगो एगो एगो एगो बारे में हो एगो एगो ती दे आ 4 जब ला पुलिस तोरा जब एगो कंटेंशन ले फिक्स पेनल्टी के जरिए तू जाके पेये कर देला तो तुहर हाउ मिनिमम लेवल जला है कि हाउ लिमिट में दे पॉइंट है तो दे पॉइंट जाइबा तो लाकू हो जाओ ओकर ऑफिसियर तोरा दे पॉइंट ले तोर दे पॉइंट डाली तब हाउ रिकॉर्ड हम लगे बिदा कहला तो ट्रैफिक में हमने एगो रिकॉर्ड रखना सर अब जे तू हाउ ला पुलिस के जो फिक्स पेनाल्टी नहीं पे कर पा अब जाइबा लाकू तो लाकू सकी तोरा कट पॉइंट ले देवी तो ऐसे ऐसे करके तब हमने एसपी कहना सर कि जब ले रिकॉर्ड में हमने के ये 15 पॉइंट चलाए तो सब से एगो प्रोसीजर करे आदमी के
1: हमने एगो लाइसेंस होल्डर के 15 पॉइंट बा ओकर एगो जन
0: हा जन टू एगो एगो एगो लाइसेंस होल्डर हवा फुल कॉम्पिटेंट ड्राइविंग लाइसेंस हाउ टू हर किसी भी ना सर जैसे कि लाइसेंस मिल गल तो तोरा 15 पॉइंट मिलेला एगो लर्नर के ओके खाली 10 पॉइंट मिलेला अब एक पॉइंट वन नहीं मिलेला लाइसेंस वा के ओकर लिमिट है 15 पॉइंट तब एगो ऑफेंस कर ला जो 2 पॉइंट तो 2 पॉइंट तो रिकॉर्ड में चला एगो दूसरा ऑफेंस कर ला कानी 3 पॉइंट तो 3 पॉइंट आके आउट होल एगो दूसरा ऑफेंस कर ला 4 पॉइंट तो हाउ ऐसे आउट आउट होले आवेला 2-3 और 4-5 9 पॉइंट हो गल तो ऐसे एक मैच है हाई रिकॉर्ड रखला अब हाई सब जो 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट मिलल तो ए लोग के एगो जिरे हक मजे 36 माह ले रहेलन से तो लाइसेंस में जैसे 36 माह हो गल तो ऑटोमेटिकमा ओ लोग हट जालन से तो हवे बोला कि मजे जब तोरा पॉइंट मिले लगेला तो तोरा चला अपन कंपोटमेंट बदले के नहीं तो तोहर और पॉइंट मिली तो तोहर पॉइंट के जरिए सकबा अपन लाइसेंस पे जो जाए हाँ ये ओकर ओकर मेकानिज्म है ओकर मेकानिज्म कि तोरा पॉइंट मिलल अब पॉइंट वो भी पहले तो अति रहल है डीएलसी ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर पॉइंट में उ में मिल जाता है अभी नहीं अभी ऑनलाइन हो गल बा आप कोरेक्ट में तू हेल्बा तो तू जान जेबा तोहर कितना पॉइंट मिलल बा तो हाई सब भी ऐसे नवा नवा चीज इंट्रोड्यूस होल बा तो एगो आदमी के चेहरा जाने के कितना पॉइंट रहल ओकर कितना पॉइंट मिलल बा अब है के जरिए कैसे अब तोहर 15 पॉइंट जहाँ तो तोहर 15 पॉइंट लिमिट बा सिपा तोहर मैच्योरिटी तोहर जो ऑफेंस कर ले रहा है सिपा एक बड़ी सुलबा सिपा दो बड़ी सुलबा तो दमिया के चला ओब्लिगेटरी अपन बिहेवियर समझे के लेके जब मैं ओके दूसर कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट वाला नहीं मिली जब मैं ओकर ओकर जो बारे में हाँ ओकर 15 पॉइंट के नहीं दे पासे करी तो ऐसे देखा था एगो सेल्फ कंट्रोल पैसा नहीं है पैसा सकेला पोस्ट में जैसी रही मैं सुलमा जोहर पॉइंट चल जाए तो तुहर लाइसेंस के जब अफेक्ट हुई तो देखा कि मैसा लगे गए तो तुहर लाइसेंस डिस्क्वालीफाई हो जाए इतना लेता खातिर तो तब नहीं सकब गाड़ी चलाए तो हाई के जरिए एगो नवा नवा एगो स्कीम रहल तो हाई कानून बहुत पे में काम भी कर लेबा मोरिस में एंथ्रोजिया भी हो रहा तो देखा रेस एंथ्रोजिया करल सा अब जब मैं एगो डर रही आदमी के कि कितना पॉइंट होल बा हमके इसकी अब हई फोसवा में सकेला कि हमार लाइसेंस चल जाए तो हमके चेहरा सावधानी एक और एग्जांपल लेना सर सीट बेल्ट देखा बहुत लोग के सीट बेल्ट मिला था सीट बेल्ट नहीं जाना सर तो डिपो मिलेला अब है ये मैं टेलीफोन रहल अब टेलीफोन रहल तो टेलीफोन के पॉइंट मिला था देखो कि आदमी लोग टेलीफोन में ज्यादा बात करते हैं और देखा था कि जो एवरेजली मिला था ढेर कोई टेलीफोन के ऑफेंस करता तभी खाती देखो कि लोटोगीते लोग आल मंत्रालय मिनिस्टर आल एगो सुझाव से कि बोला कि पॉइंट टेलीफोन के पॉइंट मोटे कर देके पहुंच कर देके तो देखा कि अदमिया के अब डरवा जस्ती रही देखा तैसा कि आदमी तरी कम थी टेलीफोन सेवी करता बस ये कहे कि सैंक पॉइंट एक कुछ टेलीफोन मिलल सैंक पॉइंट दो कुछ टेलीफोन मिलल दिस पॉइंट ट्रॉइजेम कुछ टेलीफोन मिलल तो देखवा कि तो लाइसेंस भी चल गया तो आदमी तो रोज टेलीफोन कौन आदमी रोज टेलीफोन सेवी करता देखवा कि कहूँ देखवा सेतु जो आदमी लोग मजा जो तनी कुन मजा तनी कैसे मजा दूसर के एक मजा वो लोग जिम्मेदारी नहीं खोजन सर लेकिन दूसर के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं खोजन दूसर के सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचा खाली अपन सोचे लन सर सेल्फिश आदमी लोग तो हाई सब आदमी लोग खातिर मजा देखा हाई सब कानून देख बा कि ये लिफे करी अदमिया के परी ओब्लिगाटो म अपन कॉम्पूट मौजे करे के परी ओब्लिगाटो म अपन फासो जो गाड़ी चलावे कॉम्प सौजे करे के नहीं तो पेमी जब नहीं चल जाइए अब पेमी ही नहीं रही था कौन चीज गाड़ी चला के
1: और ये जो टेलीफोन सेवी करे के बाद बा आदमी लोग देखे रहा कहाँ ला पुलिस बा जब ला पुलिस नहीं रही तो वो लोग सकत रहन सा अपन जो बाकी गाड़ी चालक बा हमने के लौके ला कि बाकी सब कोई देखा था देखा कैसे ड्राइव करता फ़ोन पर बा लेकिन आज अब देखा थे जा कि अब हमने के जो रोड सेफ्टी कैमरा बा ओकर से भी ये देखा जाए कि आपके ड्राइविंग कैसन बा एक पर थोड़ा बतिया
0: हजा हम थोड़ा कोशिश करब
1: जरूर
0: देखा कि अभी काम हुआ था हाई पर गवर्नमेंट हमने के जो मिनिस्टर है ये पर दिजा काम करते हैं कि जो नहीं सेफ सिटी कैमरा है तो ये लोग के जरिए भी सकब सा कॉन्ट्रोवर्शन रापोते करे और ओकर में पहुँचा वो कॉन्ट्रोवर्शन दिन दल लेबा कि ऑटोमेटिकमा हा टेलीफोन या फिर सेंसर या फिर एक्सेस ये काम हुआ था और बहुत जल्दी ही एकर पर हमने सकब सा एक लागू करे सो मैं एकर पर काम हुआ था मैं कोरिशों कहाँ बताएं कि आदमी लोग ढेर आदमी नहीं जाने ला कि जो हमने के जो स्पीड कैमरा है जो है बॉट जोन है जिनसे हमने के पापिये मिलेला स्पीडिंग खातिर तो ओकर जरिए भी जो टेलीफोन सेवी करत हो तो उ लॉक जला तो जब हम तोर पापिया वेला तो ओकर में टेलीफोन भी रहेला और तोहर स्पीड के भी रहेला
1: तो मतलब अब तोहर पॉइंट दोनों खातिर कटाई
0: नहीं अरे जब ये लालवा है पोविजों का लेवा देखा उतना डोमिनिय भी नहीं करेला एक लालवा जब पोविजों का लेवा बोले बाकी जब एक ही समय एक ही दिन एक ही वक्त मजा जब एक आदमी एक ऑफेंस से ज्यादा कर रहा था जो उनके पॉइंट है जैसे कि है एग्जाम्पल सकब से लेवे स्पीडिंग के पॉइंट भी देवेला और टेलीफोन की पॉइंट ले चलेला तो हाउ ले बोलेला कि जो जो ऑफेंस के ओकर पॉइंट यानी ज्यादा है कैसे स्पीडिंग के पहले अभी दे पॉइंट रही और हजा टेलीफोन के सैंक पॉइंट करवा तब बोला हाउ सैंक पॉइंट वहाँ देवे के खाली स्पीडिंग वहाँ गिर जाला खाली एक एक ऑफेंस जो में हाँ एक ऑफेंस के पॉइंट मिलेला मैं खाली हाउ हाउ वक्त हुआ मैं लौ दे मैं या फिर से एक दूसरे प्लस में ला पुलिस तो आगे गलत रहे से दूसरा पॉइंट वो जालू रही
1: जरूर और फिर अब ये जो नवा नियम आलबा एकर में एक तो पेमी आप बा और अभी जैसे बोला था कि सेफ सिटी कैमरा भी समय के साथ एक भी लागू करा जाए और एकर में और कौन कौन बात के हमें के चाहिए अब ख्याल रखे के
0: देखा आदमी के चला हमेशा ख्याल रखे कि देखा ए, जो उफोंस होएला एक एक तो देखा गाड़ी पहला पहला है बाजिक है कि है सड़क जो है हमने अकेले नहीं सेवी केना सर देखा हमने के लाकू में भी जब हमने सेवी केना सर तो देखना सर कि जो एगो जो हमने के भाई के घर बा या फिर हमने के बहन के घर बा या फिर हमने के लड़का लोग बा जो पियतर बा हमने के लाकू में तो हेली ना सर तक गते गते हेली ना सर
1: का कहते
0: जब मैं दूसरे के देहौजे या फिर दूसरे के एगो दौजे नहीं है
1: जरूर
0: तो हाईला जब हमने के लाकू में जो कहना सर तो हवे बात सीमा में आवेला लाकू में तक सकेला हमने के एगो घर दूगो घर या फिर 10-15 आदमी से पौताजे कहना सर हमने के लाकू में जब हम सीमा में आना सर तो हमने के सीमा में प्रेस के 750,000 गाड़ी बा गाड़ी और मोटरसाइकिलेट लोग और कितना हमने के पैदल चले रहा लोग संगे रह सर तो ये लोग के साथ हमने पौताजे कहना सर सोचा कितना चाहत पूरी कुछ लोगे के तो ये बात चला जाए हमने के कपाल में डाल लो सर कि सड़क जो ना हमने के खाली अपन ने है हमने पौताजे कहना सर दूसरे लोग संगे तो है जो जो जो कायदा कानून है सड़क पर सब कोई जब रिस्पेक्ट करत तो देखो कि सब चीज़ निमन से चलत एक एग्जाम्पल लेना रोपो में मैम ला पुलिस नहीं बा तो रोपो में को कानून जो मेला गिव वे टू ट्रैफिक फ्रॉम द राइट देखो तो ला पुलिस नहीं बा मैं जो आदमी लोग तोहर दाए तरफ आवेला द्वात में आवेलन सर तो वो लोग के हमने पुयोते देना सर जब चल चलन सर तब हमने जाए ना सर तो हाई बोल जला कि रिस्पेक्ट कहना सर कानून कायदा कानून तो है ये जे है रोपवा के जो नियम सगरो रिस्पेक्ट करती सर तो सब सगरो के सीमा में बोला थोड़ा किनारे चले के सड़क के लेफ्ट हैंड साइड में गुलो के कंटिन्यूस व्हाइट लाइन रही तो ओवरटेक नहीं करे के या फिर डबल येलो लाइन में गाड़ी अपन नहीं रोके के तो है सब देखा सब सब तरह तरह के कायदा कानून बनल बा जे सब आदमी नियमन से रिस्पेक्ट करत तो बहुत कमती एक्सीडेंट होत तो है ये से चला शुरू करे के कि कानून के चला रिस्पेक्ट करे के सड़क के ओकर कायदा कानून ओकर नियम चला रिस्पेक्ट

0: रेके कुतवाजी भी चला रहे के कबो कोनो आदमी एरे कर दे रहा हां देखा एगो एगो एगो एगो एगो पैदल चलला सड़क के बीच में ट्रैवर्स होता मैं ओके मैम ओके दुआने है तो तू एक्सक्यूज जाको के ओके मोआ देबा तो हाय एगो कुतवाजी कबो कबो हो जाला तो सब तू एगो अपन पर्सनल में सब एगो एक्सीडेंट एविटे करे जहां पर मैम एगो तोर तोर प्रोसेस एगो एरिया कर लग तो तू ओके एगो सहायता देके सब तनिकुन ओके एगो एगो एक्सीडेंट एविटे करे कितना आदमी लोग करेला कितना आदमी लोग बहुत कोई जो डिफेंसिव ड्राइविंग के नियम पर चले रहन से तो बहुत दूसर के एरिया पर ये लोग एक्सीडेंट एविटे करन से मैं सुलमा किसी बोलना एक्सीडेंट कोई नहीं चाहे एक्सीडेंट हो भी मैं सुलमा कोनो सर्कमस्टेंस हो वेला जो एगो एक्सीडेंट प्रोवोक कर देवेला तो सुलमा हमने के हये है प्राइमरी बेसिक हमने के सड़क पर हम सब जहाँ ले सकब कि मजा तू अपन कायदा कानून पर अमल करब डिफेंसिव ड्राइविंग ऑब्जर्व करब और जो तुहर संगतिया लोग देखब कि मजा खास कर हमने के जो जो विल्नेरेबल ग्रुप है मोटरसाइकिल लोग है पैदल चले वाला लोग है हमने के बड़े बुजुर्ग लोग है जब देखब सड़क पर वो लोग संगे आवत हुआ पर तनिकुन ज्यादा प्रिकॉशन ले लेला तनिकुन लेता ले मैं सुलमा सकब कि एगो एक्सीडेंट एविटे कर दे कोई के जान सकब बचा दे तो एगो बहुत बड़ा बात है
1: जरूर। तो आज जैसे सुनत हवा देखत हवा हमने के संगे हवन सब इंस्पेक्टर मिर्जाबुदन और आप हमने के सड़क सुरक्षा से जुड़ल जो जानकारी चाहला हमने के जाने के खास तौर पर अभी जो नवा नियम लागू कर गल बा ड्राइविंग के लेके प्यामी आपवा के लेके और कौन कौन बात के हमने के चाहे ख्याल रखे के ताकि हमने के साथ साथ जितना भी सड़क इस्तेमाल करे होला ड्राइवर या फिर पैदल चले होला या फिर साइक्लिस्ट हवन सा सबके सुरक्षा बरकरार रही। ये विषय पर अभी हमने और आगे जाब जा थोड़ा समय बाद अभी एगो ब्रेक लवाब जा और फिर देखब जा कि अभी आप कुतवाजी के बारे में बात करला रोड रेज एगो बहुत आम बात हो गल बात देखते जाके से गुस्सा करल जाता सड़क पर कहीं से दूसर के नुकसान पहुंचावल जाता छोटा छोटा बात पर और फिर कौन कौन कारण से हमने के सड़क पर इतना दुर्घटना बढ़ ले जाता ये सब पर अभी थोड़ा घड़ी में ध्यान देवब जा फिलहाल ले जा एगो छोटा सा ब्रेक।

0: लोग के पास कोई आंकड़ा तो हो, आप लोग जब कौन था ऑस्ट्रेलिया वाला हो जाता।
1: देखा है जब है कानून बनल बात हमने के ट्रैफिक ब्रांच में एक उस सेक्शन है जो खाली है पेनल्टी पॉइंट के सीवी करेला ओकर रिकॉर्ड करेला और ओकर सिस्टम में जो कंप्यूटर है ये बनावल गल बा पस कि हमने है यूनिट वा जुडिशियरी से लोग रेलिए हो उनसे जैसे हो जा अदमिया अपन फिक्स पेनल्टी पे ये करेला या फिर मजिस्ट्रा ओके कोदाने करेला एगो पेनल्टी पॉइंट होला ऑफेंस तो वो लोग के दे सुट हैला है रेंसेमेंट मिलेला तो हमने के जब मॉनिटरिंग कहना सर तो देखा हमने के रिकॉर्ड के मुताबिक खाली हमने ट्रैफिक ब्रांच के जब बताए आपसे तो हमने जब से है कानून लागू होलवा 7300 आदमी लोग के पेनल्टी पॉइंट होला ऑफेंस दिले हैं सर। तो देखा सुबह ने कहती सर जब देखो ऑफेंस रहेला पेनल्टी पॉइंट के तो ला पुलिस वा देवेला तो हमने के ट्रैफिक लोग हमने के जो ट्रैफिक ब्रांच के ऑफिसर्स हों सर तो प्रेस्के 7300 सोफेयर लोग के पॉइंट दिला हों सर।
0: अच्छा
1: अब जब देखा थी सर कि हमने के है कंप्यूटर कुछ बताता है इसके आदमी लोग कुछ कर थोन सर रेजिस्टे हो थोन सर या फिर पे कर थोन सर तो औचे मजा ला पुलिस के जब पुलिस लोग जब दिले हों सर तो है कंप्यूटर वा जब सब रेंसेमेंट होता तो हमने के रेंसेमेंट बोलता कि ए 7400 सोफेयर लोग अपन पेनल्टी पॉइंट खोला ऑफेंस जाके पे कराउन सर और लाकू वो लोग के लिसेंस में वो लोग के पॉइंट डाले लगल बा 7400 सोफेयर लोग अफेक्टे हो सर देखे पॉइंट मिले लगल बा। अब जो ये बात और जो हम के जो स्वीवी कहना सर जो एपोत है इमें एक वो सोफेयर है खाली अभी जो जॉवियर से जब कुमांस होलबा एक वो सोफिया के नेफ पॉइंट देजा मिल गल बा यानी कि हाई सोफिया बहुत भेरी बा जो है रीत में जाता तो ये और दो महीना में देखो एक एक लिसेंस चल रहा है इतना ले ये ऑफेंस करता है कि नेफ पॉइंट मिलल बा एक वो सोफिया की देजा वीट पॉइंट मिलल बा और किसी तरह तो हम बोले नहीं तभी ए तीन गो सोफिया की सेट पॉइंट मिलल बा और जैसे तभी हम बोले नहीं कि हाई हाई हाई कानून खाली अथी लाइसेंस मोरिस के नहीं है लाइसेंस इंटरनेशनल के है तो हमने के बोला था उनसे कि एगो सोफिया बा जो एतरांजे है नहीं बोला सब कौन पेई के मैं ओके भी ओकर पॉइंट मिलल बा और ओकर लाइसेंस में ओकर पॉइंट डाल दिले सर। तो देखा कि जो किसी कानून जो मकसद से ही कानून बनल बा तो ओकर मकसद हमने ओकर जो बी बा हमने ये पूरा हुआ था कि सब कहे थे लिसेंस के सब कहे थे सोफिया के ओकर पॉइंट मिलेला और हमने के जो रिकॉर्ड बताओ था कि ये भी बहुत हाल ही में सकेला एक दो महीना में देखब सोफिया लोग अपन लिसेंस डिस्क्वालीफाई हो जाए लोग के लिसेंस पे एच ओ लगे सर। तो ये एगो बहुत ज़रूरी खबर है और एगो एगो चेतावनी एगो एगो सकब सब बोले कि आदमी लोग के चाहेला अभी सोफिया लोग के चाहेला अटेंशन करे के
0: बहुत
1: अटेंशन करे के खास कर देखा जो नेफ पॉइंट वीट पॉइंट मिल गल बा सेट पॉइंट जे एगो टेलीफोन ए लोग के मिलल था तो लोग लाली में चले जा प्रेस के रेबो चले जा सर।
0: एगो टेलीफोन के कितना बा
1: 5 पॉइंट सकी मिल जाए अभी अभी से जो नवा आती बा 5 पॉइंट और जे मायसरा लग जाए तो जस्ती मिली तो ए लोग के बोलत है। अब भाई जा एगो कानून बोला जब बोली ना सर तो हमने सोफिया वो लोग के तनी सोची ना सर कब सकेला कोई के हाउ लिसेंस एपोता हाउ वे ओकर काम है एगो सोफिया एगो डिपार्टमेंट में सोफिया काम कैला रोज काम करेला तो ओके पॉइंट मिला था तो एगो कानून एगो प्रोविजन कर ले बा एगो एगो एगो एगो सिस्टम हाँ एगो सिस्टम जो बोला रिडेम्पशन ऑफ पॉइंट रिडेम्पशन ऑफ पॉइंट बोला कि एगो आदमी सेतु जो खाली जो के लिसेंस फुल है लर्नर लोग के नहीं जैसे ओकर जिस पॉइंट डिपासे हो जिस पॉइंट हो गल और 14 पॉइंट होल बा जिस आ 14 में रही तो उससे की एगो एप्लीकेशन करे माइसरा संगे कि ओकर एगो जो दैनिक पॉइंट मिलल बा कहीं दे पॉइंट मिलल रहल बा तो पॉइंट मिलल रहल हाउ पॉइंट वाक मजा एगो ह्यूमन ग्राउंड पर एगो ह्यूमैनिटी के ह्यूमैनिटी में कि ओके हाउ पॉइंट
0: हटा
1: देगी तो ई मजिस्ट्रा देखेला ओकर सब रेंसेमेंट ले कब कितना पॉइंट मिलल बा कौन खातिर पॉइंट मिलल बा देखिए दमिया कैसन रहल तो ई मजिस्ट्रा के देसियो हो तो मजिस्ट्रा जी सैटिस्फाई होई तो सकी ओकर हो जो दैनिक पॉइंट मिलल बा ओके हटा दे तो एगो सिस्टम बनाल बा कि अदमियो पेनालिजे नहीं होई एगो सिस्टम बनाल बा हमने के बी है पॉइंट ढेर नहीं देके या फिर कॉन्ट्रोशन नहीं देके हमने के बी है कि अदमिया के ओकर मौतालिते ओकर कॉम्पोटमा सौजे करे के तो हाई जे सौजे करे लगे सर तब बहुत बड़ा बात रही

0: जब एकर देखबा एकर लिफे जब देखब सा एनालिसिस कब सा ऑक्सीजन पर तो देखबा ऑक्सीजन कमती हो आदमी लोग कम से कम घायल हो और सब कोई जैसी सुरक्षा से सड़क से अभी करियन सब।
1: और जब ये सब शिफ्ट हमने के बतावा था आंकड़ा बतावा था जो न, फिक्स पेनाल्टी पेनाल्टी पॉइंट्स पर लागू हो बा तो आपके कैसे बुझाता कि उन लोग के कोपोतमा बदला था कि नहीं बदला था।
0: देखा अभी देर तनी देर भी
1: समय और
0: समय और मैं टॉडोंस देखा सर टॉडोंस देखा एक ऑक्सीजन के कारण चला देखे कि मैं सकेला ओकर ओकर ओकर जो ऑक्सीजन हला किकर ओकर के ओतु बाहर देखा सब ऑक्सीजन में सोफे नहीं ओतु रहला
1: जरूर
0: सब ऑक्सीजन में सोफे नहीं ओतेला कभी सकेला एगो डिफो मैकेनिक रही तई ओकर ओदु को कंट्रोल जलस पा सकेला कि एगो पियटों भी एरे सकेला कर दे। देखा बहुत एक्सीडेंट होता है जहाँ पर पियटों लोग रात में वो लोग रात में चलत हो रात में सड़क पार करत हो
1: मोटोवे
0: पार करत हो देखा ना हाउ सैपिये में भी एगो एक्सीडेंट हो रहा कि रात में ए पार करत हो सड़क पार करत हो हाई सब घिसवन है तब हाई सबसे एक्सीडेंट का बोलते नहीं जैसे हो जाला तो बोलब से कि देखा हमनी जब सड़क पर रही ना सब फील्ड में रही ना सर तो जब आदमी लोग बतियाला तब बोला बोले लन सर कि देखा पैसा तो रही पोस्ट में मिसोमा जी लाइसेंस नहीं तो का कौन से छिके तो वो लोग अपन कोपोत में तनी तनी सौंसे गए मैं देखा हमनी के बीवी है कि जो हम देखा सड़क पर तक कितना आदमी लोग जब सीट सौ सैकड़ मिल गाड़ी बा तो कितना आदमी लोग बा जो जिम्मेदार हो सर नहीं तो उतना एक्सीडेंट चाहते हुए मैं वो लोग बोलब सर कि जब बहुत आदमी लोग सड़क पर जिम्मेदारी से गाड़ी चला रहा हई खातिर वो लोग के हमने तही दिल से शुक्रिया जा बोलब सर कि वो लोग के कोपूत में वो लोग के अथी अच्छा खाली हमने विजय कर दी सर जो हौ जिन जिन जिन जिन सुफिया लोग वो लोग हर कुछ तक मजा फोसा करते आवेल सर सही जा वो लोग मजा जिन वो लोग फूफा माल हो सर वो लोग के तनको एको लोग के अति लोग के दिल में रहम नहीं है
1: हाँ।
0: कि जब गाड़ी चलाओ तो एगो लौंदवा जो न अबिताब है जो यहाँ पर ही बहुत से क्लासों बा और बहुत आदमी लोग चलाता तो हम जहाँ देखब कि अपन गाड़ी की रफ्तार इतना ले चलावे हाँ। सर कि जे एगो कोनो भी एगो दुर्घटना नहीं सके बीते करे
1: चाहे जनावर रही चाहे आदमी रही चाहे ऑटोमोबाइल्स रही
0: वो लोग के एको एको कंसीडरेशन है तो हाई सब कायते सोफेवन लोग के हम देखा दे विजय कर ले भाई पेनल्टी पॉइंट जब मैं वो लोग रिकरेंटली हर हमेशा करते रहे सर तो ए लोग के लाइसेंस जब रमसला तो ए लोग के जब है दिल वो लोग के सोकवा लगी तो तब हमने के सुधार आवे लगी। देखा है पेनल्टी पॉइंट जो देश में भी एंट्रोचुआ होल बा तो ओकर में ओकर लेफे कर ले बा पॉजिटिव में आदमी लोग हब भी सकेला आदमी लोग के उतना वो लोग के नई सोचत हन सर या फिर नहीं हो सुकवा नहीं मिलता मैं हमने देखा कैसे आज हम के लोकाजो मिलल तो हमने बोलनी सर कि इतना आदमी के सित मिल कत सौ आदमी लोग के पुए मिलल बा लोग के पेमी में तो सब जब आकी मिले हुई लगी जब एगो सेटन लेता हुई आदमी अपन पेमी पे एच हुई लगी तो जब हाई कौपाई निमन से करब सर अदमिया कौपा हुई मैं सुनमा बोला था कि एक मजा जो आदमी लोग निमन से गाड़ी चला रहे सर वो लोग के हमने सालिए कहना सर वो लोग के हमने रिस्पेक्टे कहना सर मैं जो आदमी के मजा फूफामाल गैर जिम्मेदारी से अपन गाड़ी चलावेला तो वो लोग खातिर हई स्कीम वो लोग खातिर बहुत खतरनाक रही कहे के देखब कि चौदह दिन बाद एक ही बारिश में अपन पीएमई पेज हुई लगे।
1: अब जब गैर जिम्मेदाराना रवैया बतावत हुआ कि फूफा माल हवन सा लोग में रहम नहीं बा तो ऐसा ढेर फक्तिया बा जेकर कारण एगो ड्राइवर ऐसे गाड़ी चलावता कि दूसर संगे उ दुर्घटना करके दूसर के जान सकता ले लेवे तो हमें थोड़ा इस फक्तिया पर ध्यान दे जा ढेर वक्त है भाई सन अभी दो हफ्ता तक हम ये जो आज की चर्चा कार्यक्रम रहल वो ड्रग्स के समस्या पर रहल और नशा पर रहल और देखते है जा कि ये भी एगो प्रमुख फैक्टर है हमने के सड़क पर आजकल दुर्घटना के
0: बेशक बेशक है तो देखा नहीं सकब सर एक झुटलाई तो है जब नशा के हालत में गाड़ी चलाई के या फिर ड्रग के लैफलियंस पर गाड़ी चलाई के तो एक खातिर हमने के जो कंपाई है ला पुलिस ऑसिये ला पुलिस है जब हमने के कमिश्नर पुलिस बहुत स्ट्रिक है बोला एक को सांस नहीं दे के और जब ले सकब सर कि मजा मैम दिन में तेज कहना सर जब ले सकब सर कि हमने मोते कहना सर ऑपरेशन मोते कहना सर तो चाहेला है बहुत अच्छा बात बोला कि देखा एगो आदमी जब अपन लावी पर्सनल में प्रीवे में जाके पियता खाता पियता जिसको देख जाता अब इतना ले पी लेबा कि अपन कंट्रोल नहीं बा या कि अपन लिमिट दे पासे कर लेबा तो के नहीं चाहत गाड़ी चलाई के देखा हमें मना नहीं कहना सर आदमी के जाके अपन
1: खाई पिए के
0: डिस्ट्रेस हो के

0: मैं सुलमा चला एगो प्रोविजन करे के जे पियत हो ते एगो दूसर आदमी तोहर गाड़ी चलाए या फिर एगो दूसर अरेंजमेंट करबा अपन घर वापस जाए के। ते सुलमा जब तू नहीं करत हो तो हवे खत देखा ऑपरेशन होला तो हम सब बोले कि मजा है पिछले साल में एक बरिस के दौरान 3285 का पॉजिटिव लाल कुल्तिस 3300 पॉजिटिव लाल कुल्तिस जैसे कहा बहुत है। अब तो बताए कि लाल कुल्तिस के इतना ले ग्राव है ऑफेंस नशा के हालत में गाड़ी चलाएगी तो पेनाल्टी मोड में नहीं आवेला ही।
1: अच्छा
0: कहे नहीं आवेला बस कि लाल कुल्तिस तो एक ही समय में सब एक कुछ डिस्क्वालीफाई हो जाए जो मजिस्ट्रेट जो खोजी थोड़ा से सैंक्शन लेवे के तैसा कि पहले ही कुछ में थोड़ा डिस्क्वालीफाई कर दे और नहीं तो जो दे जैम कुछ लाल कुल्तिस रेस कर ला लाल कुल्तिस के जरिए कौदाने हुईला तो ओब्लीजे तोर लाइसेंस कैंसिल कर देला यानी तोर लाइसेंस सोते हो जाला तोरा प्रिजो भी सकेला बिदा कर दे और तोरा डिस्क्वालीफाई करी इतना दिन तोरा लाइसेंस नहीं चला तो देखा कितना ग्राव ऑफेंस है लालकोल और ला ड्रोग तो एक पर हम कंपाई करते भी एगो रीजन है कहे कि आदमी लालकोल और लाद्रोग भी पसके हजार 950 पसके 950 का पॉजिटिव लाद्रोग के भी हमने पकड़ ले रहे थे आदमी लोग के तो है सब बतावे रहा कि ला पुलिस अपन काम करे था ला पुलिस अपन ऑपरेशन जो है जारी रख ले पा और वो हमने एक एक कोचिंग कर अब सर जब मैं आदमी लोग देखवाजो ही सर पी के गाड़ी चला के बहुत कोई देखी ना सर देखा जब कोई चीज पॉजिटिव रहता बोई ना सर बहुत देखी ना सर कि कोई जो आदमी पीले बा तो वो आकुते बैठल बा देखवा कि ओकर ओकर ओकर लड़का लोग कोचे कहता या फिर ओकर मैडम कोचे कहता जो नहीं पीले बा या फिर ओकर दोस्त जो नहीं पीले बा बोले ना सर देखा हम नहीं पीले देख वो पीले बा ये सब अच्छा है पॉजिटिव बात है नहीं तो हम इतना ले सकते बोले कि हम गाँवे में इतना भी देख रहे हैं कि 3 बजे 4 बजे जब डिस्कोटेक बंद हुआ था तो हौजा पर एगो 20 लोए लेकर लाउन सर 60 प्लस पीले वन से हाँ और हो सोफे नहीं पीले बा सब पॉजिटिव चीज आवेला जब देखे ना सर कि हमने ला पुलिस प्रेजन रहेला हौ ले तो वो लोग है सब एविटे कर मैं सुबह जो लोग नहीं एविटे कर तो ला पुलिस हमें देखा कि फ्लिक ऑफ लाख बा गांवे बा या फिर पोट्रीस में भी जो जो लेक मजे हमने गाड़ी आगे कर हमने के स्टॉप एंड सर्च कर चेक करना सर तो एक जरिए हर वीकेंड के वो 20-25 गो आदमी पॉजिटिव पकड़ी ना सर तो हाई कोचिने करब सर बस कि तुहर बहुत तुहर सवाल जब कुमा से कर ला कि जो कारण आदमी के कोपूतमा हो जो कारण आदमी एक्सीडेंट कहला तो नशा के हालत में और ड्रग के ओकर लाइफलियंस में जब कोचे करब तो ई एगो लेफे जीरे खा कहे के तुहर फाकिलते तुहर डिसीजन लेवे के
1: तुहर बस में नहीं बा
0: तुहर बस में नहीं बा तू तू कम सोफे हम बहुत ठीक है मैं सुबह जब तुहर देर तुहर तोहर कोपोतमा तोहर फासो को जे बहुत सांस हो
1: रहा
0: और बहुत रिस्क हो जा तोरे खातिर भी और जो दूसर सड़क इस्तेमाल करे खातिर भी तो हाई खातिर हमने हाई सब पर एक कुछ सांस नहीं देना सर तन कुछ तो लेगे नहीं कहना सर और देखा कि एक भर भी बातचीत चला था और भी एक कानून जिया करे के तो ये सब जब आए तो हमने जनाब सर मैं सुबह अभी खातिर बोना सर आदमी लोग के कि देखा अपन अपन अपन फिटनेस कैसे हमने गाड़ी के फिटनेस बोना सर कौतोले करे के तो चला अपन पर्सनल फिटनेस भी देखे के कि नहीं चाहला तुहरा नशा के हालत में या फिर ड्रग के ओकर लाइफलियंस में कौन जगह या फिर कोनो आदमी बीमार रहला कोनो मेडिसिन दवाई लेवे से तो ओकर लाइफलियंस भी रहला तो आदमी फिट नहीं रहला ओके नींद लगेला या फिर ओकर कंसंट्रेशन कम रहला या फिर एगो आदमी फाचिगे एक दिन पूरा दिन काम कर ले बा रिपो तनको नहीं रहला उमे रात के निकल के रे से कौजे करता या फिर ओवर टाइम पर ओवर टाइम करता तो हाई सब बात अफेक्टे करला एगो आदमी ओकर जब सोफे फिजिकली फिट नहीं रहला ओके इम्पेयरमेंट रहला कोनो कुछ ओके ऑफिस से कहला निमन से कंसंट्रेट हो के तो सब है सब एगो कारण सकेला जीरे खोई सड़क पर एक्सीडेंट करे के नहीं तो एक अलावा देखा कैसे डिस्ट्रैक्शन बहुत एगो इम्पोर्टेंट बात है आदमी लोग जिसरे हो जान सर और डिस्ट्रैक्शन के एगो तो मुख्य कारण है जब टेलीफोन सेवी करते हो या फिर अपन राजू कस के दिला या फिर जो आदमी बैठल बा कोते ओकर संगे बात करत हो या फिर आदमी जो पीछे बैठल बा तू पीछे मुड़ के ओकर संगे बात करत हो तो है सब पर डिस्ट्रैक्शन करे गला या फिर गाड़ी चलावत हो और अमेमतो देखो तो कौन चीज एक्सपोज हो बा या फिर कौन प्रमोशन हो बा तो इस सब पर इस सब भी डिस्ट्रैक्शन करेला एगो आदमी के तो एक लिफे आवेला जब सड़क पर जब चलावत हो गाड़ी सब या फिर आदमी लोग अपन टाइम मैनेजमेंट निमन से नहीं करें सर प्लानिंग नहीं करें सर कहूँ जाए के रहेला तो देर से निकलें सर प्रोविजन नहीं करें सर देखा सब कोई जानेला कि मोगिस में वीक वीकडेज यानी कि लेंदी से सुख ले गाड़ी के ऑप्शन

0: पीछे हो रहा गाड़ी के चले में फजीर के और शाम के तो चला वो पोफियो करे के देखा हम तोरा एक बात बोलो आज हम भोपाल से निकल के आवे थे पोर्टविस हम सेतिया जब एक बीस में चढ़नी तो वितिया चले नहीं सुजोली से वितिया चले नहीं तब एम्बेसी से कपाई हुई थे मैं हाँ ये जी लास्ट सेमेन के दिन रह तब के पर सीजे एक बीस लेवे के जब मैं हम सकब
1: समय पर आए
0: तो है बोला टाइम मैनेजमेंट सब आदमी के चला प्लानिंग सोचे के कौन दिन है कहाँ पर जाता तो जे अब ओके एगो प्लस एयरपोर्ट में जाए के बाद नॉर्मल में जब एगो प्लस में ब्लॉके होल तो उस खोजी हम रिटवा का वहाँ से करेंगे तो हाइजे पर ही सबसे बड़ा एरिया कर अपन लावी में कि अपन स्पीड उगमौते करेला जब स्पीड उगमौते करेला तो कर गाड़ी ओकर कंट्रोल में नहीं रहेला लामवेन कोनो एक्सीडेंट हो तो नहीं सके विते करे तो हम देखब कि दोनों करेला या फिर दूसर गाड़ी से इतना मारेला कि जान भी चल जाला या फिर कोलो इलेक्ट्रिक से या फिर मिराई से या फिर गौछी में देरापे होके जाके मारन सर तो हैजे पर ही देखब कि
1: एकर पीछे से
0: स्पीड लिमिट के ओकर अब नहीं तो एगो दूसर एगो एगो एगो बात होला कोजिशन लाहौद के पारे नहीं रहला कबो देखब बरसात हो गल बा बरसात हो गल बा तो सड़क नोवर पाके नहीं रही कोई तनिक लाबू लेके देखो कामियो सीमा में आल बा लाबू लेके तो लाबू से की तोरा एगो एक्सीडेंट हो माकादम एगो एक्सीडेंट पोवे करते बुयो से की एगो एक्सीडेंट पोवे करे तो हाई सब कोचो क्लिमाटिक अफेक्ट केला एगो आदमी के चेहरा जाने के और सब ले पोतो हो तोहर हो आदमी के ओकर सोफा आदमी के जो कान पीस एगो आदमी जब गाड़ी पहुंचे कहला तो चाहे ओके अपन अपन अपन अपन दिमाग अपन अपन सब एगो एगो ओकर ओकर जो कोचिनाशो हो चाहे पीसफुल रहे के जमे वो भी जब गाड़ी पहुंचे करी तो लगाज में नहीं पहुंचे करी देखा एगो
1: ध्यान भी
0: सड़क पर रहे के देखा एगो आदमी देखिए ओकर जो पर्सनलिटी है जो ओकर कहते हैं वो रिफ्लेक्टे कर रहा ओकर गाड़ी फासों पहुँचे करेगी देखबा कि कस के आके फ्रें ब्रिस्क मारता तपास करता या फिर ओकर ट्रेनिंग्स करता हम सब बतावेला अदमिया के ओकर कहते हैं या फिर अपन टॉप जब होन इस्तेमाल करा देखबा एगो फासों है एगो पैप कर ला एगो आदमी के आवे छे हाँ अदमिया तो ऐसा टॉप करता कि मजा अदमिया के होता मारे के तो हाँ सब एगो आदमी के ओकर जो एग्रेसिविटी है ओकर जो लेको में ओकर दिल में बा ओकर दिमाग में बा तो क्रॉस में थोड़ा ओकर ड्राइविंग में और जब ऐसे करेला तो दूसर खातिर नॉर्मल एगो दौ से हो जाला
1: जरूर। अब हमने के ई प्रोग्राम के समाप्त होवे में सकब जा बोले एगो पाँच छः मिनट बाकी बा हम चाहत है कि ई पाँच छः मिनट में आप अब हमने के सलाह देब कैसे चाही हमने के फुदौ रह के कौन चीज़ चाही करे के पिए तो आजकल देखत है जा आप बस स्टॉप पर खड़ा हुआ तो आपसे एगो गाड़ी टकरा जाता एगो लड़का कौन दिन के खड़ा रहल एगो वान ओकर से आके टकरा गल तो ई सब जो एक्सीडेंट बा आजकल तो हर जगह कैमरा बा हर घर में कैमरा बा हर कोना में कैमरा बा और इस सब एक्सीडेंट कैसे हुआ था हमने के वो कैमरा में लौकता फेसबुक पर शेयर हो जाता हर एगो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फैल जाता तो हमने के थोड़ा अब सुरक्षा के बारे में बोला।
0: हाँ बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत है पोत हाँ देखा नहीं चेहला हम हमेशा बोलना नहीं चेहला तोरा एगो लापुलिस रहे के नहीं चेहला एगो लुटोते रहे के जब मैं एक्सीडेंट कम करब एक्सीडेंट के कम करे खातिर हमने के घर से शुरू होला हमने के जो लड़का पैसे कैसे हमने के लड़का जो छोटा लड़का बा तो ओके लेकुल अकेले नहीं जाए जाना से जाइए ओके आको पाए के ना से या फिर एगो बीस पर भी जाके ना से तो है एगो प्रिकॉशन लो थी सर तो है चला एगो गाइड डाले के कि अच्छा काम करते सर सड़क सुरक्षा में अपन कॉन्ट्रीब्यूशन देवत थी सर तो ऐसे डीजेम एता पावेला जो हम तुर लड़का अब छोटा नहीं बा पंद्रह बरिस चौदह बरिस पंद्रह बरिस हो गल बा जो मोटरसाइकिल के तौदौस देवेला हम लड़का देखब कि अभी लर्नर होल बा वो मोटरसाइकिल खुद के अथवा लेके निकले गए तो ओके कम पाहत है तोरा मना करे के और उकर पर एगो ग्रिप रखे के कि लड़का हम काम नहीं करी लड़का के अब जब ओके कैसा हो गल कहीं ओकर लर्नर मिल गल या फिर लाइसेंस मिल गल तो देखे के चाहे लड़का इसकी अपन अपन फ्लोगेसों पहना था कि नहीं इसकी खास हेलमेट पहना था कि नहीं रात के तौदे ले निकला था पांगर जाके गाली करते हुए रात के जिसको देख जाता पांगर पी के आवा था एग्जैक्टली मत देखो था इतना पैताब बताए तो तोरा चाहे कम पाहो हैला अपन जिम्मेदारी लेवे के कि तू ही नहीं चाहे ला पुलिस के कमा करे तू अपन घर ही में सकब है सब ऑफिसे करे रोके जब मैं लैकवा एगो सीधा सीमा में जाए अब तोरे अब तू अब पाहो हुआ तू कोचे करत हुआ तो तोरा चाहे नहीं चाहे ला पुलिस के देख के कैसे तबिया बोल अपन टेलीफोन रखे के तोरा चाहे बोल एग्जाम्प दे के हाउ लैकवा काल तू जब नहीं रह तो ऊ गाड़ी चलाए तो हाउ लैकवा के कौन एग्जाम्प दुआ था कि ला पुलिस के देख के टेलीफोन रखे के ला पुलिस के देख के सैचे डाले के
1: और स्पीड लिमिट का ला पुलिस के देख के तब

0: कौन लेख सौंप दो अथवा तो देखा हये हये बाजी का जे हमने अपन घर में हई सब जो छोटा छोटा बात बोलनी शुरू कर देनी सा तो हई चेक में जे हमने के हौ जो पैर बहन ऐसा ओके निमन से पलौता थे ओके निमन से पानी डालते थे काल हमने के लैका अपन लुटो लेके निकली काम करे जाता लिकुल जाता यूनिवर्सिटी जाता या फिर अपन संगतिया लगे गल बा या फिर कहूँ भी गल बा तो हमने अपन अपन अपन घर में सकप सक में जे सुख शांति से ओके स्प्रे करे तनको आप यौशो नहीं रही कहे के ओके बो फोमाशो दे लें तो हये चाहे एगो एगो बात है कि अपन जो अपन परिवार के है ओके चाहे तोरा बॉन्ड एग्जाम दे के कि एगो एगो एगो रिसेप्शन में गेला तू ही पी के नहीं टटियो गेला अब गाड़ी लेके चलाओ तो तोर लड़का ही सब देखा था
1: हां लड़का सच्ची था हम सब तो थोड़ा पी के बाप के
0: पैसे कहला तो हम कहे नहीं करब हां
1: चाहे चोरी छुपे चलावे के चल
0: हम डिजाय से आगे देख ले है पे गए बे गांवे में जो बाप बेटा दोनों संगे वंश जे सुना तू इनसे तो देख अभी कि जब हमके ए तो नहीं होगल बाप आकुते बा पीले बा ओकर बेटा पीले बा अब बता देख ना बेटा हां छोड़ दे छोड़ दे तभी तू बाप होके अपन बेटा के पिया के गाड़ी हाँ। चलाओ मना करे के हाई ये सब हाई सब मजा बोला कि मजा परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटी जे हाई सब तू अपन ले ला तो देख बत एगो नवा निमन सुफे एगो निमन ईसा से लाहू पूजा करत हुआ जब ऑडियो प्रॉब्लम नहीं
1: घर से शुरू
0: घर से शुरू अब जब ऑडियो बत सड़क बोलनी हमनी बाटी ना सर तो चला रिस्पेक्ट करे के अपन पोसें के कूतवा रहे के डिफेंसिव ड्राइविंग इस्तेमाल करे के सड़क के कायदा कानून बा ओकर पर अमल करे के खाली नहीं मजे कि ला पुलिस के देखब तो नहीं मैसेज जब आम हे देख हम एगो पुलिसे हैं हम हमने के एग्जॉप्शन है ला पुलिस के एग्जॉप्शन है सैचिया नहीं डाले के मैं सुबह हम पहला जैसे हेली ना था पहला जाफे हम सैचिया डालब क्लिके होल तो हम जाते हमारे सिक्योरिटी पर पूछो हम के कोई कौन रोशो नहीं ली मैं सुबह हम अपन सैचिया अपन सिक्योरिटी खातिर देखा हमने के टेलीफोन एग्जॉप्टे है मैं सुबह नहीं चाहना हर कुछ मजा एग्जॉप्टे था टेलीफोन सकब से हमने आगे हो के टेलीफोन लेके तब अपन काम कर ना सकता हाई सब चीज जाफे है जो आवेला जो चाहेला मजा हमने के अमल करेगी तब सड़क बाँटी ना सर सड़क में चाहेला दूसर संगे साथ में बाँटे के अब जो हमने के बड़े बुजुर्ग लड़का के तब जाए ना सर हमने के बड़े बुजुर्ग भी ढेर कोई कोत नहीं लेला मैं हमने के कागौत पूछो जो हमने के विक्सिम है सड़क पर फताल के तो हमने के बड़े बुजुर्ग हमेशा हमने बोला सर कि वो लोग के भी चाहना ध्यान दे के वो लोग के चाहना सहायता दे के वो लोग के जैसा प्रॉब्लम है अब बड़े बुजुर्ग लोग के भी देखा हमने सब से एगो चीज़ करे एगो एक्सीडेंट हो रहा गल गलबरीस अदमिया की सोफेवा के काथोवें जिस बनाने रहा काथोवें जिस बनाने के हमारे बड़े बुजुर्ग बा ओके हम कौजुआ करे दो अब तो हाइये सब आवेला मोबिलेट मोटरसाइकिलेट हा बिल आवेलन से अपन लर्नर खोजन सके रूबले करेंगे तो हाइये देखा हमने बस जितना कोई हमने के जो सुनलक आज हमने के अबासा दिया हुआ हई सब बात तू अपन परिवार में अपन दोस्त में अपन दफ्तर के साथी लोग में कोलेग में बाँट जब हमने के सड़क निमन रही एम्बेसी की भी हमने शुक्रिया अदा करते कि हमेशा हमने के प्लेटफॉर्म देवेला हमने के हमेशा आस पास करें
1: जरूर बहुत बहुत शुक्रिया ये सब इंस्पेक्टर मिर्जा बुदैन जी ये बातचीत हमने जारी रखब जा कहे कि अभी और ढेर विषय पर बात नहीं सकली करे समय हो गल बा कार्यक्रम हजे पर समाप्त हुआ था लेकिन फिर मिलब जा ई वादा के साथ हम आपसे आज्ञा चाहते हैं धन्यवाद नमस्ते
2: सेंटर 95.5 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2
3: यू आर लिसनिंग योर आरएम 3 मनोरंजन रेडियो मनोरंजन रेडियो
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम, ये रहता है साथ. संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात. Happy Music Day from MBC Radio.

हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम MBC रेडियो।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, समाचारों में स्वागत है आप सभी का। बजट 2026-2027 में सरकार ने पेंशन प्रणाली में बदलाव का ऐलान किया। पहली जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन का नाम बदल

0: मिलकर स्टेट एज पेंशन रखा जाएगा। सरकार के अनुसार 14,000 रुपए से कम मासिक आय वाले लोगों को पूरा पेंशन मिलेगा, जिससे अधिक इससे अधिक आय वाले लोगों को भी पेंशन मिलता रहेगा, लेकिन उसकी राशि आय के अनुसार धीरे धीरे कम होगी। वर्तमान लोगों में से 90% से अधिक लोग योजना के दायरे में बने रहेंगे। बजट के बाद आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में सरकार के कई मंत्रियों ने विभिन्न बजट के विभिन्न कदमों पर अपनी राय दी और घोषणाओं का उन्होंने स्वागत किया है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओया नावामाही ने कहा कि महिलाओं और परिवारों से जुड़ी कई प्राथमिकताओं को इस बजट में शामिल किया गया है। वही ऊर्जा मंत्री पात्रिक आस्यावादन ने सौर्य ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सहायता योजनाओं का उल्लेख किया। शिक्षा मंत्री महेन गंगा प्रसाद ने शिक्षा सेक्टर में समावेशन और स्कूलों में बुलिंग उत्पीड़न के खिलाफ कदमों पर जोर दिया। बिजनेस समर्शस ने भी बजट के कदमों पर अपनी राय दी है। संगठन ने प्रमुख आर्थिक घोषणाओं का स्वागत किया और कहा कि सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रयास सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। साथ ही संगठन ने बजट के कदमों के प्रभावी रूप से लागू किए जाने के महत्व पर जोर दिया। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। ये समझौता दक्षिणी लेबनान में इसराइली हवाई हमलों और सीमा पर बढ़ते संघर्ष के बाद हुआ है। हवाई झड़पों में लेबनान में कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हिजबुल्ला के हमले में 4 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इजरायली सेना ने युद्ध विराम लागू करने की पुष्टि की है, हालांकि उसने तत्काल खतरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात करी। दूसरी ओर हिजबुल्ला ने अभी औपचारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन उसके महासचिव ने दावा किया है कि संगठन को समाप्त करने की कोशिश विफल रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हम आपसे मिलेंगे ठीक 6 बजे एक पूरे समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

रेडियो मनोरंजन के सभी श्रोताओं को संजय की ओर से प्यार भर नमस्कार आदाब और स्वागत है प्रोग्राम गीत गाथा देश की में। संगीत में है ऐसी फुहार, पतझर में भी जो लाए बहार। संगीत को ना रोके दीवार, संगीत जाए सरहद के पार। संगीत में है ऐसी फुहार, पतझर में भी जो लाए बहार। संगीत को ना रोके दीवार, संगीत जाए सरहद के पार। संगीत माने न धर्म जात, संगीत से जुड़ी कायनात। संगीत की न कोई जुबान, संगीत में है गीता कुरान, संगीत में है अल्लाह और राम। देवी और सज्जनों, कल हम सब मिलकर संगीत दिवस और योग दिवस मनाने वाले हैं। इसी संदर्भ में आज का ये प्रोग्राम गीत गाथा देश की में हम समर्पित कर रहे हैं उनके चरणों में जिन्होंने हमें संगीत के रास्ते पर चलना सिखाया। हाँ, कि किससे हमने संगीत की प्रेरणा प्राप्त की, ये प्रोग्राम उन्हीं पर आधारित होगा। आप हमें फोन कर सकते हैं ऑन 4200 या तो हमें मैसेज कर सकते हैं ऑन 5250 6200। आप हमें बताएं कि किससे आपको संगीत की, गाने की प्रेरणा मिली। अब इसे लेकर गीत गाथा देश की संगीत दिवस के संदर्भ में संजय के साथ शाम के 5 बजे तक।

गीत गाथा देश की आज समर्पित हैं उन लोगों के प्रति जिनसे हमने संगीत सीखा, वो गायन भी हो या कोई वादक या कोई वादन बजाना भी हो, लेकिन किसी न किसी से हम सीखते हैं। हम अपने ही बारे में आपको बताते हैं कि जहाँ तक हमें खबर है, हमें याद है, जो पहला हमने सीखा था गाना वो थी गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के बाद हमने सीखी आरती ओम जय जगदीश हरे, और उसके बाद हमने सीखा भजन रघुपति राघव राजा राम। कोई बॉलीवुड गाने से पहले हमने ये तीन भजने और आरती और मंत्र सीखे, तब जाके बाद में हमने फिल्मी गानों को सुना, और आज तक ये लगाव, ये संबंध, ये रिश्ता संगीत से बना हुआ है। जहाँ तक सीखने का सवाल है, MGI में गुरुजी ओकिया हमारे पहले शिक्षक थे, और उनसे पहले SSS मेबर्ग में एक गुरुजी हमें सिखाते थे जिनका नाम आज हमें अफसोस है याद नहीं है, लेकिन वे विल्नोआ के रहने वाले थे और नदी के तट पर रहते थे, जो वहाँ पर लंबी पूल है वहाँ के तट पर रहते थे। सो आज हम गुरुजी ओकिया को और मेबर्ग के रहने वाले उस गुरुजी को नमन करते हैं जिनकी बदौलत शास्त्रीय संगीत में हमने शिक्षा प्राप्त की। ऐसे ही देवी और सज्जनों, आप भी अपने गुरुजनों को याद कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कहां पर आपने संगीत सीखा और किस से आपने गाना सीखा।

0: जी हाँ श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं कि कल 21 जून है और हर साल के 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस। और इसी संदर्भ में आज का ये प्रोग्राम गीत गाथा देश की आधारित है उन पर जिनसे हमने संगीत, हमने गाना, हमने बजाना सीखा। चलें हम मिलते हैं आज के हमारे पहले श्रोता से। अमिता जी नमस्कार।
1: नमस्कार संजय जी।
0: आप घोषणा की रहने वाली हैं?
1: हाँ जी।
0: अच्छा, आप बताएं कि आपने किस से और कब गाना या बजाना सीखा?
1: मैं फर्स्ट में थी 1960 में फर्स्ट में थी।
0: अच्छा,
1: तो गुरुजी सोखा जी थे प्लेन डे रोस का।
0: हाँ।
1: मेरे ख्याल से वो अब नहीं है, तो मैंने उससे सीखा था ये गीत जन गण मन,
0: भारत का राष्ट्रीय गाना,
1: रघुपति राघव राजा राम। हमने पहले गीत ये सीखा था रघुपति राघव।
0: ये आपका पहला गाना था?
1: हाँ, पहला गाना था। और राष्ट्रीय गाना वो जन गण मन रोज बोलते थे लाइन में। हाँ। लाइन में बोलते थे ये गीत।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: मुझे अभी तक याद है ये सब।
0: बहुत अच्छा। आज भी आप गाती हैं?
1: हाँ, अभी मैं भोजपुरी गीत में भाग लेती हूँ, शादी में जाती हूँ।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: प्रोग्राम में भाग लेती हूँ, अभी तक ये कला है मेरे साथ।
0: ये आपका एक अभिन्न अंग है, ये आपसे दूर नहीं हो सकता है।
1: अभी 69 इयर्स का हूँ, लेकिन मैं सभी प्रोग्राम में भाग लेती हूँ।
0: अति सुंदर, अति सुंदर। सो अमिता जी, आपके आपके गुरुजनों को हम भी नमन करते हैं।
1: हाँ।
0: और हम आशा करते हैं कि जो फन, जो कला आपने उन लोगों से सीखा, वो हमेशा आप में विकसित होता रहे।
1: हाँ, बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम के लिए। सभी को बहुत धन्यवाद और संगीत दिवस सभी को अभिनंदन।
0: अभिनंदन। जय मॉरिशियस।
1: जय मॉरिशियस।

आपसे भी निवेदन है कि आप भी हमें फोन करें और अपने बारे में बताएं कि आपने किससे संगीत सीखा और कौन सा वो पहला गाना है जो आपने सीखा था।

0: गीत गाता चल और साथ ही गुनगुनाता चल। संगीत हमने विरासत के तौर पर पाया है, ये एक धरोहर के तौर पर हमें रखना है और आने वाली पीढ़ियों को देना है। लेकिन किसने हमें ये विरासत दी है, उन्हीं के प्रति आभार प्रकट करने के लिए ये प्रोग्राम चल रहा है रेडियो मनोरंजन की लहरों पर, गीत गाथा देश के। और चले अब मिलते हैं इनसे। हेलो
1: हेलो, जय सियाराम भाई
0: जी। जय सियाराम महाराज जी, कैसी हैं?
1: सब ठीक है। आपके यहाँ?
0: ईश्वर की दया से जब तक प्रभु जी का हाथ हमारे सर पर है तो डरने की बात नहीं है। जब तक मन में राम जी बसे हुए हैं और हनुमान जी की छाया में बैठे हुए, तो क्या डरना। महाराज जी आप बताएं कि महाराज जी आप बताएं कि आपने संगीत किससे सीखा?
1: जैसे जहाँ तक मुझे पता था, तो जब मैं छोटी थी तो उस वक्त मातैनल नहीं था, वो बीलो कहते थे।
0: हाँ,
1: बस
0: हाँ।
1: के आगे तो वहाँ पर भी धुनला सा याद है कि हमने गणेश मंत्र सीखी थी। तब जाके जब फर्स्ट में आई तो हमारे गुरु जी हमें गणेश मंत्र त्वमेव माता सिखाती थी, पर हमें कुछ उस वक्त समझते नहीं थे क्या है। तब धीरे धीरे मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, तब रोज स्कूल में करते थे, तब मैं घर आई तो वही प्रार्थना हमारी नानी दादी हमें सिखाती थी। तो मुझे तब ऐसा लगा कि हाँ, हमें ये सीखना चाहिए। तब नानी ने मुझे वहाँ भागवत होती थी दुर्गा पूजा, तब वो मुझे ले जाती थी पूजा में। तब वहाँ जाकर जब वो मंत्र को बोलने के लिए जो वो पंडित थे, आचार्य थे, तो उसने सब बच्चों को आगे लाया मंच के आगे। तो उसने कहा जो स्कूल

0: से सीखे हो वो बोलो, तब उस दिन से आज तक जो तो हारमोनियम, पहले था तबला, हारमोनियम, मंजीरा था, तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिला और आज तक मैं गाती हूँ, सुनती हूँ और रेडियो के माध्यम से बहुत बहुत कुछ सीखा और जो म्यूजिक है वो हमारे जीवन का हिस्सा होता।
1: बहुत खूब महाराज जी, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा कि आज तक आपने उन यादों को संजोए रखा है और साथ ही साथ उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ रही हैं। फिर से मिलेंगे महाराज जी।
0: जी हाँ,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद भाई जी।
1: जय सियाराम।
0: जय सियाराम।

संगीत दिवस के अवसर पर एक विशेष ख्याल, एक विशेष श्रद्धांजलि उन लोगों के प्रति जिनसे हमने संगीत सीखा। अभी अभी किशोर कुमार का गाना चल रहा था और किशोर कुमार की आवाज़ में इस गाने को सुनकर हमें एक बहुत ही पुराने दोस्त की याद आ गई, जो एक बहुत ही अच्छे गायक थे और किशोर कुमार के गानों को वो बाखूबी गाते थे। लेकिन अफसोस, कुछ साल पहले वे हमें छोड़ गए। एक समय पर वे विदेश भी चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे, और अभी हम नाम

हैं श्री देवानंद हरी जी का। देवानंद हरी जी जो एक बहुत ही अच्छे गायक और इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान भी थे, और उनके जरिए हमने किशोर कुमार जी की महानता के बारे में सीखा। ऐसे ही जब हम लोकल आर्टिस्ट की बात करें तो विजय मुनसामी जो बोवालों के रहने वाले थे और जो बहुत से लोकल आर्टिस्टों को प्रेरणा दी है, बहुत से लोकल आर्टिस्ट ने उनसे सीखा है, वो गाना हो या वादन बजाना हो, इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, तो इन लोगों को सलाम करते हैं। और साथ ही साथ बहुत से जो स्थानीय गायक हैं, जिस तरह से उन्होंने स्थानीय नौजवानों को प्रेरित किया है संगीत के रास्ते पर और गायन के रास्ते पर।

संगीत और हमारे बीच का रिश्ता आज का या कल का नहीं है, ये तो जन्म जन्म का रिश्ता है। क्योंकि हमारी संस्कृति में तो माँ सरस्वती के हाथों में वीणा होती है, हमारी संस्कृति में शिव जी के त्रिशूल पर डमरू होता है, हमारी संस्कृति में कृष्ण भगवान के हाथों में बांसुरी होती है, हमारी संस्कृति में तो नारद मुनि जी तानपुरा लेकर चलते हैं, जहां भी जाते हैं नारायण नारायण करते रहते हैं, जपते रहते हैं, गाते रहते हैं। सो संगीत और हमारा रिश्ता जन्म जन्म का नहीं अपितु सदियों से है। और हम मानते हैं कि एक नौजवान के विकास में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनके व्यक्तित्व में निखार संगीत से आ सकता है, या किसी चीज के बजाने में, किसी वादन के बजाने में आ सकता है। सो सभी जो जो पेरेंट्स हैं, आप लोगों से मांग है कि आप अपने बच्चों को अवश्य संगीत की ट्रेनिंग दें, जिसमें वे अपने आप को विकसित, अपने व्यक्तित्व को विकसित कर पाए, न सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में, अभी तो इसके अलावा किसी आर्ट में, किसी कला में। और संगीत से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता, डांस से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। सो देवी और सज्जनों, आप ने बहुत ही प्यार से हमारा साथ निभाया, हमारी मंगल कामनाएं आप सबों के साथ संगीत दिवस के अवसर पर, योग दिवस के अवसर पर। अगले गुरुवार को फिर से हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे प्रोग्राम राम रस धारा के जरिए। तब तक हमें अनुमति दीजिए, हमारे बाद पूनम जी आपका साथ निभाने आएंगी। नमस्कार, संगीत दिवस की जय हो, योग दिवस की जय हो, जय मॉरिशस, जय सियाराम।

हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम MBC रेडियो।

0: पुराने नगमे।
1: नमस्ते आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। 5:05 हो चुके हैं और मैं हूँ आपके साथ पूनम। और आज हम ये 1 आवर देने जा रहे हैं उस कलाकार के नाम जिसकी मुस्कान, रोमांस और गाने आज भी दिलों में बसे हुए हैं। ये गाने चलाने के बाद तो एहसास हो ही गया होगा कि हम थोड़ी देर में किसकी बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं उस लेजेंड की जिसका नाम है ऋषि कपूर। और वो उस फैमिली से आते हैं जिसे कहते हैं बॉलीवुड की स्टार्टिंग से, जिन्होंने यहाँ पर कदम रखे और उसके बाद एक करके एक बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए उस कहते हैं ना ट्रेन के डब्बों में। और वो लोग ने जिस तरीके से प्रोग्राम्स दिए और जिस तरीके से मूवीज़ बनाई, जिस तरीके से स्क्रिप्टिंग लिखी और उसके बाद एक्टिंग की, तो फिर उसका कोई कमाल ही नहीं। मतलब उसमें तो ऐसी जान भर दी उन्होंने, तो कहते हैं कि आज भी बॉलीवुड में उनका सिक्का चलता है और वो है यस कपूर फैमिली। और हम आज बात करने जा रहे हैं ऋषि कपूर की, तो चलिए उनके यादगार गीतों के साथ और उनकी इस प्यार भरी एक्टिंग के जितने भी कमाल है आज हम सुनने वाले हैं उनकी बातों और कहानियों और यादों के साथ। तो इन्जॉय करते हैं उनका ये फेवरेट सॉन्ग।
2: RM3 Radio.

हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम MBC रेडियो।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ

0: पुराने नगमे।
1: 5:22 हो चुके हैं और हम बात कर रहे हैं ऋषि कपूर की। तो ऋषि कपूर जी का जन्म हुआ 4 सितंबर 1952 को मुंबई में, और जो कपूर फैमिली की ये तीसरी पीढ़ी के एक ऐसे बच्चे हुए जो कि बहुत ही क्यूटी पाए जैसे थे और बहुत ही सुंदर। जिनके दादा थे पृथ्वीराज कपूर, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में थिएटर में एक ऐसी अलग पहचान बनाई कि दुनिया देखती रह गई, और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे एक्टर कहाँ मिलते हैं। और बस जैसे ही पृथ्वीराज कपूर ने ये थिएटर ज्वाइन किया या मूवीज़ बनानी शुरू की, धीरे धीरे आ गए उनके पिता राज कपूर। और राज कपूर भी जो थे कि बॉलीवुड में उनका बहुत ही बड़ा नाम रहा, जबकि उन्हें कहा जाता है कि वो शोमैन कहा जाता है आज भी। मतलब अगर कोई कितनी भी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए ज़िंदगी में, वो हमेशा फिर भी मुस्कुराते हुए स्टेज पे चढ़ते और हमेशा से यही कहते कि कुछ भी हो जाए आपको अपना काम करना आना चाहिए, आप अपना काम करते रहो, ज़िंदगी में किसी भी तरीके से तकलीफ़ हो कोई बात नहीं, पर काम ज़रूरी है। इसी तरीके से ऋषि कपूर के दो भाई हुए रणधीर कपूर और राजीव कपूर। पूरा परिवार ही टोटली फिल्मों से जुड़ा है, और कहते हैं कि उन्होंने बचपन से ही एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी, जिसमें उन्होंने मूवी थी मेरा नाम जोकर में, और ऐसी प्यारी मूवी करी उन्होंने कि उनका जो क्यूट सा फेस था सारी दुनिया के दिलों में रह गया। और कहते हैं जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने की बॉबी बॉबी मूवी, और बॉबी ने तो कर दिया कमाल, सारे जितने भी रिकॉर्ड्स आज तक जो तोड़े हैं ऋषि कपूर ने, यस वो थी हमारी मूवी बॉबी।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:30 हो चुके हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं हमारे साथ यानी कि मेरे साथ पूनम के साथ पुराने नगमे। और पुराने नगमे में आज हम बात कर रहे हैं ऋषि कपूर की। तो चलिए भाई, ये गाने जब मोहम्मद रफ़ी ने गाया होगा श्रेडी वाले साईं बाबा, मुझे तो लगता है कि आमने सामने सबको पता नहीं वो उस परमात्मा के दर्शन कहते हैं ना हो जाते हैं। इतना प्यारा, इतना अच्छे तरीके से गाया, शायद रेयरली ऐसे गाने हमारे को सुनने को मिलते हैं। तो चलिए भाई बात करते हैं फिर से ऋषि कपूर पे। तो ऋषि कपूर के लिए एक रूमर्स रहा बहुत ही प्यारा सा, जो कि था डिम्पल कपाड़िया की जोड़ी को लेके। इतनी बॉबी हिट हुई, इतनी हिट हुई कि सब ने कहना शुरू कर दिया कि असल ज़िंदगी में भी शायद ये दोनों रिश्ते में है, यानी कि डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर। पर ये रूमर्स थोड़े दिन तक रहे, पर दोनों की परिस्थितियाँ अलग थी, ज़िंदगी अलग थी और घर परिवार की सिचुएशंस भी बिल्कुल अलग थी। तो आखिरकार डिम्पल कपाड़िया ने की शादी राजेश खन्ना जी से और सारे रूमर्स हो गए फ्लॉप। और उसके बाद बस ऋषि कपूर ने सोचा कि मैं तो करूँगा उस इंसान को पसंद जिनसे मैं कहते हैं कि बहुत ही प्यार करने लग गए थे। बहुत बार उन्होंने उस चेहरे को देखा, बहुत गौर से देखते रहे और उनको पसंद आई कौन? यस, नीतू सिंह। चलिए सुनते हैं ये गाना और उसके बाद करेंगे बात नीतू सिंह की।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:36 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं पूनम के साथ पुराने नगमों के प्रोग्राम में। तो चलिए बात कर रहे थे ऋषि कपूर की। तो ऋषि कपूर जो जिन्होंने देखा नीतू सिंह को एक बार चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में, उनको वो बहुत ही प्यारी लगी, बहुत ही इनोसेंट लगी, बहुत ही उनका चेहरा देखते ही बस उन्होंने कहा कि शायद यही मेरी पसंद है और इसको तो मैं बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में एक अपनी कहते हैं संगनी बना के रखूँगा। तो बस उन्होंने बात किया और नीतू सिंह बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी उनमें और उनके परिवार वाले भी हमेशा नीतू सिंह को हमेशा कवर करके रखते थे, हमेशा उनके आगे पीछे चलते थे। पर बस एक ऐसा ही हुआ कि नीतू सिंह को लेके एक शूटिंग चल रही थी ऋषि कपूर की, तो उन्होंने बोला कि डायरेक्टर ने बोला कि आपको कार में दोनों को बैठना है और ड्राइव करके वहाँ तक जाना है। बस ऐसा मौका कहाँ जाने देते ऋषि कपूर जी, उन्होंने तो बस ऐसे गाड़ी चलाई और भगाते चले गए, रोके ही नहीं और सीधा बात पहुँची शादी पर। तो शादी हुई उनकी और उन्होंने 1980 में शादी की नीतू सिंह से और हमेशा के लिए दोनों एक हो गए। उसके बाद उनके दो प्यारे से बच्चे हुए रिद्धिमा कपूर और रणबीर कपूर, जो कि रणबीर कपूर आज भी फिल्म इंडस्ट्री के कहते हैं सुपरस्टार में से एक हैं और आगे हम बात करते रहेंगे। तब तक जो उन्होंने प्यार किया, कहते हैं ऋषि कपूर जी बहुत ही बेबाक स्वभाव के थे, मतलब किसी बात में वो रुकते नहीं थे, अगर किसी ने कोई बात कह दी तो फट से जवाब दे देते थे। तो ऐसे ही होता है और उन्होंने कहा क्यों ना खुल्लम खुल्ला प्यार करें, तो बस यही प्यार उनको लेकर आया शादी तक।
2: RM3 Radio.

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ पाई?
1: हाँ तो हट जाए
0: हो जाए।

0: पुराने नगमे।
1: चलिए बात चल रही है ऋषि कपूर की, और ऋषि कपूर ने नीतू सिंह, श्रीदेवी, जया प्रदा, मीनाक्षी शेषाद्री, माधुरी दीक्षित, जूही चावला और दिव्या भारती जैसी कई शानदार अभिनेत्रियों के साथ काम किया। वहीं पर अगर आप मेल एक्टर्स की बात करें तो अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, अमरीश कपूर, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और सनी देओल जैसे कलाकारों के साथ काम भी किया और साथ में उनको मात भी दी, क्योंकि कहते हैं ना कि वो इतने सुंदर और इतने रोमांटिक थे कि सारे उनके सामने इतने कहते थे कि चार्मिंग बॉय है, इसको देखते ही पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये

0: हर डायरेक्टर्स की भी यही होती थी कि भाई हम सबसे पहले ऋषि कपूर जी से स्क्रिप्ट दिखाएंगे और उनसे बात करेंगे कि क्या वो रेडी हैं इस मूवी को करने के लिए, और हमेशा ऋषि कपूर जी कहते ठीक है मैं करने को तैयार हूँ, बट उनको डायरेक्टर्स हमेशा यही कहते थे कि आप इतने चार्मिंग हो, आपको देख के लगता है कि रोमांस आप में भरा हुआ है, तो इसीलिए उनको हमेशा पेड़ों के पीछे कहीं ना कहीं खड़े होके या थोड़ा सा मूवमेंट करते हुए, उनको कभी भी डांस के लिए नहीं ज़्यादातर बोला जाता था, और वो हमेशा कहते थे कि मैं चाहता था डांस करना, पर हमारे डायरेक्टर्स हमेशा कहते थे कि तुम जब आँखों से बात करते हो तुम्हारे डांस तभी हो जाता है। तो यही बात है कि कई सुपरस्टार्स अपनी आँखों से ही कर लेते हैं वो चीज़ जिसे कई लोग डांस करने के बाद भी नहीं कर सकते, इसीलिए आज की डेट में बहुत सारे फैन हैं ऋषि कपूर जी के।
1: RM3 Radio.

हाँ।

0: पुराने नगमे।
1: ऋषि कपूर को अपने शानदार करियर में कई बड़े सम्मान मिले और हम सोचते हैं कि इतने सम्मान इंसान को कैसे मिल पाते हैं। सिर्फ उनकी डेडिकेशन, उनकी मेहनत और उसकी अचीवमेंट तभी मिलती है जब आपने उसके ऊपर काम किया। और कहते हैं कपूर खानदान हमेशा से अपने ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी पर, अपने स्क्रिप्ट के ऊपर हमेशा काम करता रहता है। हज़ारों स्क्रिप्ट्स उनके घर में पड़ी होती हैं और कोई ना कोई एक दूसरे के स्क्रिप्ट्स को पढ़ता रहता है। आज भी इतने साल गुजर जाने के बाद कहते हैं कि 70 से 80 साल गुजर गए इस इनकी पूरी जो कहते हैं कि सारे लोग, जितने भी लोग हैं उनके परिवार के, खानदान के, कोई भी जाता है स्क्रिप्ट्स को पढ़ता है, रीड करता है और समझता है कि किस तरीके से उनके परिवार वालों ने उसके ऊपर काम किया। तो कहते हैं कि ऋषि कपूर को फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिले और सिनेमा ने, बॉलीवुड ने उनको बहुत ही सराखों पर रखा। 30 अप्रैल 2020 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन कहते हैं ना कि कलाकार कभी नहीं मरते, उनकी आवाज़, उनकी बातें, उनका काम हमेशा बोलता रहता है और ऋषि कपूर आज भी अपने गीतों, फिल्मों और मुस्कान के साथ जिंदा है। इसीलिए आज हम उनका प्रोग्राम कर पा रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं तो आपसे लूंगी इजाज़त, पर ये ज़रूर जानना चाहिए कि जितनी मेहनत उन लोगों ने की है उस मेहनत को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसी तरीके से आज ऋषि कपूर की बात हुई तो उनका एक प्यारा सा गाना जिसे कहते हैं ओम शांति ओम, जो सभी के लिए, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मैसेज भी किया है कि ये वाला गाना ज़रूर चलाइएगा, तो हम कैसे रुक सकते हैं। कर्ज मूवी का ये गाना आप ज़रूर सुनिएगा किशोरदा की आवाज़ में। और हम आपको इतना ही कहेंगे, इसके बाद विस्तार से समाचार होंगे और उसके बाद जुड़िएगा नई सोच के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत थोड़ी देर के लिए।
2: RM3 रेडियो

0: का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई तो गाओ ओ
1: Center 95.5 North South 95.6 95.6 East West 98.2
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: तारीख 6 बज रही है, समाचार सुनिए। नमस्कार, समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बजट 2026-2027 में सरकार ने आर्थिक विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। पेंशन व्यवस्था में बड़े बदलाव की घोषणा। पहली जनवरी 2027 से स्टेट एज पेंशन लागू होगी और नई प्रणाली के तहत आय संबंधी मापदंड भी लागू किए जाएंगे। महंगाई से राहत देने के लिए प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में अतिरिक्त 2 बिलियन रुपए का प्रावधान, साथ ही सैकड़ों नए खाद्य उत्पादों को सब्सिडी योजना में शामिल किया जाएगा। बिजनेस मोशस ने बजट में घोषित कई कदमों का स्वागत किया। संगठन का कहना है कि व्यापार, एआई प्रशिक्षण और विदेशी विशेषज्ञता से जुड़े कदम निजी सेक्टर की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। पेचिगाफे में 61 वर्षीय शुभावती ओनाचलम जागेसर की हत्या से इलाके में सनसनी। पुलिस हत्या के पीछे लूट की आशंका सहित विभिन्न पहलुओं की जाँच कर रही है। विदेशी स्तर पर इसराइल और हिजबुल्ला के बीच घोषित युद्ध विराम एक दिन भी नहीं टिका। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। बजट 2026-2027 के माध्यम से सरकार ने आने वाले वर्षों के लिए अपनी आर्थिक दिशा और प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया है। इस बजट में एक ओर सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने, कर्ज के बोझ को कम करने और कर व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया गया है, तो दूसरी ओर महिलाओं के सशक्तिकरण, रोजगार, कैपेसिटी बिल्डिंग और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई कदम भी प्रस्तावित किए गए हैं। शागोस के मुद्दे से लेकर देश के आर्थिक विकास तक, भविष्य तक भी सरकार ने विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। सुमेर अकबर अली।
5: We could have chosen the path of least resistance, but we did not.
6: Nous avons choisi la voie de la réforme la plus difficile pour reconstruire notre économie et société et assurer l'avenir de la prochaine génération. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre en ouverture de son discours du budget 2026-2027.

और कल पेश किए गए बजट 2026-2027 में पेंशन सुधार पर एक नए चरण में प्रवेश कर दिया है। जी हां, पहली जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह स्टेट एज पेंशन लागू की जाएगी। ये पेंशन 60 वर्ष की आयु से दी जाएगी, जबकि नई व्यवस्था में पेंशन के भुगतान के लिए आय संबंधी मापदंड भी लागू किए जाने वाले हैं। जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर दामगी के अनुसार इस नई प्रणाली का उद्देश्य लंबे समय तक पेंशन व्यवस्था की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। क्या ये इस नई व्यवस्था की प्राथमिकताएं ये क्या होंगी, हम कल के बुलेटिनों में आपको बताएंगे। महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में अतिरिक्त 2 बिलियन रुपये का प्रावधान किया है। पहली जुलाई 2026 से 485 नए खाद्य उत्पादों को सब्सिडी के दायरे में लाया जाएगा, जिनमें ट्यूना मछली, कैन ट्यूना, कोन बीफ, मैक्रोनी, दालें, लंचन मीट और बच्चे के लिए आहार शामिल है। ये सूची पहले से सब्सिडी प्राप्त 1930 सामानों के अतिरिक्त होगी।

रहेगी, जबकि ग्राहकों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए 1510 सामानों की कीमतों पर नियंत्रण और 700 उत्पादों पर VAT छूट भी जारी रखी जाएगी। राज्यसभा में घोषित कई कदमों का बिजनेस मोर्शस ने स्वागत किया। संगठन का कहना है कि व्यापार को आसान बनाने, AI से जुड़ी प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देने और विदेशी कौशल और विशेषज्ञता तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने जैसे कई कदम उसकी प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं। इन मुद्दों पर बिजनेस मोर्शस ने कल पोर्टली में एक प्रेस सम्मेलन दिया। हम आपको बता रहे थे सुर्खियों में कि बजट 2026-2027 में सांसदों और कुछ बड़े पदों से जुड़ी नई घोषणाएं हुई हैं, कई कदम प्रस्तावित किए गए हैं। अब सांसदों को 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तुरंत पेंशन नहीं मिलेगी, उन्हें 65 साल की उम्र तक इंतजार करना होगा जैसे दूसरे कर्मचारियों को करना पड़ता है।

0: बजट 2026-2027 पेश किए जाने के बाद संसद से बाहर निकलते समय कई मंत्रियों, जूनियर मिनिस्टर्स और सांसदों ने बजट की कई प्रमुख घोषणाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पेंशन व्यवस्था में सुधार, सार्वजनिक सेक्टर की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी के गठन की घोषणा की तथा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के कदम, इन प्रमुख विषयों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। हम आपको बता रहे थे बुलेटिन की शुरुआत में कि एक 61 वर्षीय महिला की अपने ही घर में हत्या से पिछले गाफरे में सनसनी फैल गई। शुक्रवार शाम सुभावती अरुणाचलम जागेसर मृत अवस्था में पाई गई। शुरुआती जांच के अनुसार एक नकाबपोश व्यक्ति घर में घुसा और उस पर जानलेवा हमला करने के बाद फरार हो गया। पुलिस हत्या के पीछे लूट की आशंका सहित विभिन्न पहलुओं की जाँच कर रही है। अफ्रीका के भविष्य के लिए तैयार की गई एजेंडा 2063 योजना को आगे बढ़ाने के प्रयास जारी है। इसी उद्देश्य से विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एपेन के हेनेसी पॉक्विटल में एक कार्यशाला आयोजित की थी। इसमें सरकारी और निजी सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ साथ नागरिक समाज के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यकुशलता में एजेंडा 2023 और 63 के दूसरे 10 वर्षीय कार्य योजना के तहत मॉरिशस के लिए उपलब्ध अवसरों और संभावनाओं पर चर्चा की। हम आपको बता रहे थे कुछ ही देर पहले कि बजट 2026-2027 में सांसदों और देश के कुछ बड़े पदों से जुड़ी कई घोषणाएं की गई हैं। इसके अलावा कई क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कई कदमों का ऐलान किया था, जैसे खाद्य सामानों के दाम, महिला सशक्तिकरण और पेंशन। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: वी कुड हैव चोजन द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस बट वी डिड नॉट।
2: वित्त मंत्री ने 7 स्तंभों पर केंद्रित सरकारी स्ट्रेटेजी पर जोर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन के प्रयोग के अंतर्गत सरकार 3 चरणों के तहत कार्य करेगी, जिनकी बदौलत मॉरिशस गूगल अमेरिका इंडिया कनेक्ट की पहल से लाभ उठा सकेगा और हमारे देश को दक्षिण अफ्रीका, भारत और सिंगापुर के साथ जोड़ने के लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर पाएगा। मॉरिशस एआई के लिए एक सुरक्षित आधार की तरह प्रस्तुत हो पाएगा। इसके अलावा सरकार जनता के लिए निवेश करेगी। कुल 50,000 मॉरिशनों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिनमें प्राथमिक एवं

माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक होंगे, साथ में ग्रेड 9 के छात्र भी और निजी सेक्टर तथा सरकारी विभाग के ऑपरेटर भी। सरकार एक नेशनल AI लर्निंग प्लेटफॉर्म कायम करने के लिए 25 मिलियन रुपए का बजट उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा एक साइबर फोरेंसिक लैबोरेटरी कायम करने के लिए 13 मिलियन रुपए का बजट उपलब्ध कराया जाएगा। मॉरिशस में स्टार्टअप के लिए

0: एक एक्सेलरेटर स्कीम की लॉन्चिंग की जाएगी। एक नया अहम कदम, 10 छात्रों के लिए 5 लाख रुपए तक का एक इनोवेशन स्कॉलरशिप दिया जाना। स्टार्टअप रिवॉल्यूशन की बदौलत हमारी अर्थव्यवस्था में एसएमई की अहम भूमिका को मजबूती दी जाएगी। एक एसएमई बिल तैयार किया जाएगा, साथ ही हमारे आर्थिक स्थल का विस्तार किया जाएगा और इसे आधुनिक बनाया जाएगा। कदमों में कुछ दो में एक उच्च टेक्नोलॉजी वाले एक नए इकोनॉमिक जोन कायम करने की बात भी है। बंदरगाह, हवाई अड्डे और हवाई अड्डे को फोबा के साथ जोड़ने के लिए M4 वाटरवे की एक परियोजना भी है। कचरों के राष्ट्रीय संचालन के लिए एक कार्यक्रम विकसित किया जाएगा जिसके लिए 150 मिलियन रुपये की जरूरत होगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कृषि, मवेशी पालन और बैंकिंग तथा फाइनेंस सेवा संबंधी सेक्टरों को भी मजबूती प्रदान की जाएगी। पर्यटन सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबिलिटी प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। 1 मिलियन रुपए के बजट की बदौलत पर्यटन गांव विकसित किए जा सकेंगे और सगाई तोंजीवाल होटल स्कूल को पुनः डिजाइन किया जाएगा।
1: तो बजट 2026-2027 के माध्यम से सरकार ने आने वाले वर्षों के लिए अपनी आर्थिक दिशा और प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। इस बजट में एक ओर सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने, कर्ज के बोझ को कम करने और टैक्स व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया गया है, तो दूसरी ओर महिलाओं के सशक्तिकरण, रोजगार, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई कदम भी प्रस्तावित किए गए हैं, जैसे कि अभी आपने इस रिपोर्ट में रजनी बिकर से सुना। महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में अतिरिक्त 2 बिलियन रुपए का प्रावधान किया। 1 जुलाई 2026 से 485 नए खाद्य सामानों को सब्सिडी के दायरे में लाया जाएगा, जबकि उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए 1510 सामानों के दामों पर नियंत्रण और 700 सामानों पर VAT पर छूट भी जारी रहेगी। सुनिए,
2: प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड के तहत सब्सिडी प्राप्त खाद्य उत्पादों की सूची को बढ़ाया गया है। इसके अंतर्गत 485 नए उत्पादों को शामिल किया गया है जिसके लिए 300 मिलियन रुपए निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 7 आवश्यक खाद्य पदार्थ शामिल हैं, कंड ट्यूना, कोंड मटन, कोंड बीफ, मैकरोनी, काली दाल, मसूर दाल, लंचन मीट, बेबी फूड। 58 रुपए का कैंड ट्यूना 1 जुलाई से 38 रुपए में बिकेगा। उपभोक्ताओं की राय इस उपाय को लेकर बंटी हुई है।
3: Mon tacos vino cardi bien rempli, malheureusement maintenant non. Ou gapé au vin supermarché parce que avec le coût de la vie. On a dû nous penser être content, on vit manger des affaires, faire des enfants plaisir, mais malheureusement pas capable, trop cher.
4: Le gouvernement il prend une bonne initiative concernant une alimentation pour bébés. Mais moi aussi content, ils mettent plus de subventions sur les couches et man les infantiles.
5: Bien positif en tant que consommateur, surtout si du bon avec subside le corn beef, thon, tout cela, il faut être bon du bon misère.
2: ये नई सूची पहले से सब्सिडी प्राप्त 1910 उत्पादों से जुड़ेगी जिन पर सरकार 1.7 बिलियन रुपए खर्च कर रही है। घरेलू खर्चों पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए 1510 उत्पादों की कीमतें पहले से ही मैक्सिमम मार्कअप के तहत नियंत्रित हैं, जबकि 700 अन्य उत्पादों को वाट से छूट दी जाती है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मूलभूत सामानों का आयात करके वो रिटेलर्स तक भेजेगा। हम कम दाम वाले उत्पाद प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, इससे मंडी में कंपटीशन बढ़ेगा। कल ऐलान किया गया कि खाद्य सामानों का पैरेलल इंपोर्ट भी किया जाएगा।
6: Donc nous travaillons là très rapidement et moi penser ça trois items là pour être pour combattre la vie chère.
2: सरकार ने इस योजना के लिए 2 बिलियन रुपए का प्रावधान किया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों की खरीद शक्ति को बरकरार रखना है। रिटेलर्स को नियंत्रित करने वाला एक नया कानूनी ढांचा भी कायम किया जाएगा।
1: कल पेश किए गए बजट 2026-2027 में पेंशन सुधार पर नए चरण में प्रवेश कर गया है। 1 जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह स्टेट एज पेंशन लागू की जाएगी। ये पेंशन 60 वर्ष की आयु से दी जाएगी, जबकि नई व्यवस्था में पेंशन के भुगतान के लिए आय संबंधी मापदंड भी लागू किए जाएंगे।
2: सांसदों के साथ अब सरकारी कर्मचारियों के समान व्यवहार किया जाएगा। वे नेशनल पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड में अपने व्यक्तिगत खाते में अंश

0: दान करेंगे। वर्तमान में दो कार्यकाल पूरा करने के बाद सांसद आयु की परवाह किए बिना पेंशन प्राप्त करने के हकदार थे। अब पेंशन प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 65 वर्ष होगी, जो अवकाश की वैध आयु है। एक अन्य कदम, पहली जुलाई से कार्यरत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की आय और पूर्व राष्ट्रपतियों और उपराष्ट्रपतियों की पेंशन पूरी तरह से कर योग्य यानी टैक्सेबल हो जाएगी। 65 साल की उम्र में सांसदों का पेंशन मॉरिशस लेबर कांग्रेस का सुझाव था। सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। नियुक्त सदस्यों को आम कर्मचारियों से ज्यादा लाभ नहीं मिल सकता है। प्रधानमंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को कई पेंशन मिलते थे जिनमें वे अंशदान भी नहीं करते थे। अब से उन्हें ऐसा कोई भी पेंशन नहीं मिलेगा। पहली जुलाई से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, चाहे वर्तमान हो या पूर्व, उनका पेंशन पूर्ण रूप से कर योग्य यानी टैक्सेबल
1: होगा।
0: मैं खुश हूँ कि उन्होंने सांसदों के पेंशन को लेकर 65 साल की उम्र के मेरे सुझाव का मान
2: रखा।
0: अब से एक सांसद को एक कार्यकाल के दौरान केवल एक बार ड्यूटी फ्री वाहन लेने का अधिकार है, जबकि पहले ये सुविधा हर 3 साल में दी जाती थी। हम उदाहरण दे रहे हैं, एक ही ड्यूटी फ्री मिलेगा, ये बड़ा कदम है। श्रमिक संघ के प्रतिनिधि आनिफ पिहन ने भविष्य में अन्य जरूरी कदमों की इच्छा जताई। पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को सरकारी गाड़ी दी जाती है 24 घंटे के लिए, एक पुलिस अफसर और ईंधन भी दी जाती है। उदाहरण दें और जनता को दिखाएं कि वे भी त्याग कर रहे
1: हैं।
0: नेशनल असेंबली रिटायरिंग अलाउंसेस एक्ट में सुधार लाया जाएगा ताकि राष्ट्रसभा के सदस्यों के लिए डिफाइंड कंट्रीब्यूशन आधारित अवकाश योजना लागू की जा सके। ये कदम नवंबर 2024 से प्रभावी होगी।
3: तो जैसे कि आपने सुना, याचना मिश्रा के साथ की बजट 2026-2027 में सांसदों और देश के कुछ बड़े पदों से जुड़ी कई घोषणाएं की गई हैं। अब सांसदों को दो कार्यकाल पूरी करने के बाद तुरंत पेंशन नहीं मिलेगा, उन्हें 65 साल की उम्र तक इंतजार करना होगा, जैसे दूसरे कर्मचारियों को करना पड़ता है। संगीत केवल सुरों का संगम नहीं बल्कि भावनाओं को जोड़ने का एक माध्यम भी। म्यूजिक डे के अवसर पर एमबीसी के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से अलग हटकर अपनी संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कलाकार हो या संगीत प्रेमी, सभी एक बड़े कराओके कार्यक्रम में उत्साह और उमंग के साथ शामिल हुए। प्रतिभा साझेदारी और संगीत के जश्न को समर्पित ये विशेष कार्यक्रम आज रात 8:30 MBC 2 पर प्रसारित किया जाएगा।
0: संगीत के तराने स्टूडियो में गूंज रहे हैं, स्पॉटलाइट्स जगमगा उठी हैं, टेक्नीशियन अंतिम तैयारियों में जुटे हैं और मंच पर कर्मचारी अपने गीतों का लगातार अभ्यास कर रहे हैं। इस साल भी MBC में उत्साह के साथ संगीत दिवस मनाया जा रहा है। एक खास कार्यक्रम के माध्यम से कर्मचारियों को अपनी प्रतिभाएं दर्शाने का मौका मिल रहा है।
4: Et si on laissait la technique, logistique, montage, reportage, réalisation d'émissions, préparation ainsi que présentation d'émissions radio et télé de côté pour prendre le micro?
0: जो कर्मचारी आमतौर पर अपने दफ्तर के पीछे स्टूडियो या कंट्रोल रूम में काम करते हैं, वे एक शाम के लिए कलाकार बने हैं।
5: Souvent, moi plus résister à un événement qu'autre chose. Moi plus un chanteur de salle de bain et de couloir. Avant tout, c'est vraiment partager sans jugement, avec beaucoup de bienveillance, l'amour des mots et de la musique.
6: Moi pas chanteuse professionnelle, alors là pas du tout. C'est juste pour le fun en fait, pour participer avec les employés et aussi pourquoi pas donner du bonheur et transmettre la bonne humeur aux téléspectateurs.
0: सप्ताह भर लगातार रिहर्सल्स का दौर रहा। फ्रेंच, अंग्रेजी, क्रियोल, हिंदुस्तानी गीतों के साथ हर प्रतिभागी अपनी संगीत शैली

0: les lekar manj par utra.
1: Moi, une chanteuse, moi, une artiste, mais moi aussi, je vais participer parce que c'est ça, le moment que tout réunir et propager l'amour à travers la musique.
2: Nous vivons dans une île côté de Toulon, donc je me dis, mais pourquoi pas nous essayer comme si tackle un petit peu les trois. C'est qui me connaît, bien sûr.
0: कला जुनून संगीत की शाम शनिवार रात 8:30 बजे MBC 2 पर देखना न भूलें।
3: विश्व कप 2026 में मेजबान यूएसए का विजय अभियान जारी है। घरेलू दर्शकों के जोरदार समर्थन के बीच अमेरिकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ यूएसए ने न केवल ग्रुप डी में अपनी स्थिति मजबूत की है बल्कि अंतिम 32 में पहुंचने की दिशा में भी बड़ा कदम बढ़ाया है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के लिए ये हार मुश्किलें बढ़ाने वाली साबित हुई है। प्रतियोगिता के आगे बढ़ने के साथ अब ग्रुप डी में क्वालिफिकेशन की जंग और भी दिलचस्प होती जा रही है। विश्व कप 2026 में आज का दिन बेहद अहम होने जा रहा है जहां कई टीमें अंतिम 32 में जगह मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। ग्रुप एफ में नेदरलैंड्स और स्वीडन के बीच होने वाला मुकाबला आकर्षण का केंद्र रहेगा। वहीं ग्रुप ई में जर्मनी का सामना आइवरी कोस्ट से होगा जो जीत के साथ अगले दौर की ओर और एक कदम बढ़ाना चाहेगी। दिन के तीसरे मुकाबले में इक्वाडोर और कुराकाओ अपने सामने आमने सामने होंगे जहां दोनों टीमों के लिए हार की गुंजाइश बेहद कम है। ऐसे में विश्व कप के नॉकआउट चरण की दौड़ अब और भी रोमांचक होती जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें जो आज सुर्खियों में हैं उनमें इसराइल और हिजबुल्ला के बीच शुक्रवार को घोषित युद्ध विराम ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सका। शनिवार को दक्षिणी लेबनान में इसराइली हवाई हमलों में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। लेबनान ने इन हमलों को शांति प्रयासों के लिए खतरा बताया जबकि इसराइल का कहना है कि उसने हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच 23 से 25 जून तक वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के बीच वार्ता का 5वां दौर प्रस्तावित है लेकिन ताज़ा घटनाक्रम के बाद युद्ध विराम का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। और अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। चले जानते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल कैसा रहेगा। मस्करिन के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले एक जोरदार एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर जारी रहेगा। आज रात को देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। देर रात और कल सुबह के दौरान देश के दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू पर कुछ कुछ वर्षा हो सकती है और धुंध भी छाई रहेगी। दिन के दौरान देश भर में धूप खिली रहेगी और दक्षिण पूर्व की दिशा से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। विशेषकर दक्षिण पश्चिम में ऊंची लहरें उठेंगी। 4 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान शहरी इलाकों पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम अन्य इलाकों पर 18 से 20 अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 5:38 पर हो गया है और सूर्योदय होगा कल सवेरे 6:44 पर।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे शिव को हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: NBC Radio.TV.
0: शोक समाचार सुनिए। टेम्पल रोड रिविया जुरान पॉमे 70 साल की 70 ईयर्स ओल्ड के कांता प्रसाद दुता की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह के 10:30 उनकी पत्नी मिसिज माला दुता के मकान रिविया जुरान पॉ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए उतरी रिविया जुरान पॉ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM।

0: Divyaji Sampia Boshirimi Boshirimi 77 साल की 77 years old की सीता देवी सीरोज की मृत्यु हो गई हैं. लोग उन्हें कमला के नाम से अधिक जानती थी. उनकी अर्थी कल दिन के 10:30 बजे उनके भाई चंद्र स्वराज सीरोज के मकान पृथ्वीजे सैम्पिया बोशेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सै कॉन्स्टांस की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो हॉफ पोस्टेन एएम शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: RM3 Radio.

0: Continuous music. Music. RM3.
1: नहीं सो.
2: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम, ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम MBC रेडियो।

0: नई सोच। 6:37 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम नई सोच के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। एक छोटा सा शब्द, कभी सोचा है उस शब्द में कितनी पावर है, कितना पावरफुल है? यस, वो शब्द है नो। जैसे कि होता है यस और नो, तो हम बात करने जा रहे हैं नो की, नॉट यस की। तो बताइए क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? दिल तो नो बोलने को करता है। कभी किसी ने आपको कोई काम बोला और आपको दिल तो कर रहा है कि नो बोल दूँ, पर ऐसे में आप यस भी नहीं बोल सकते और नो भी नहीं बोल सकते क्योंकि डर लगता है, दोस्त क्या सोचेंगे, रिश्ते ख़राब तो नहीं हो जाएंगे, या ये लोग मुझे कहीं इस ग्रुप से तो नहीं बाहर निकाल देंगे अगर मैंने नो बोल दिया तो। लेकिन कभी कभी एक छोटा सा नो आपको गलत चीज़ों से बचा सकता है। अगर नो बोलकर अगर आप सिक्योर हो सकते हैं, आपके परिवार में सुकून मिल सकता है, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ सकता है, तो शायद वही सबसे सही जवाब है कि आपको कहीं पे बोल देना चाहिए नो। क्योंकि हमें बहुत ही डर लगता है और शर्म आती है कि नो मैं तो नहीं बोलूँगा। नो भी एक ऐसा एहसास है जैसे दूसरे शब्द हैं। तो हमेशा याद रखिए, यस बोलने से ज़्यादा पावरफुल है नो। पर जहाँ पर आपको लगता है कि आपको यस कहना है तो आप यस कह सकते हैं, पर अगर आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी, मेरे परिवार की ज़िंदगी या मेरी आने वाले बहुत सारी चीज़ें खराब होने से बच सकती हैं, तो आपको कहना चाहिए नो।
1: RM3 Radio.

0: नई सोच। 6:43 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं नई सोच प्रोग्राम के साथ और मैं हूँ आपके साथ पूनम। तो हम बात कर रहे थे नो की। नो का मतलब नहीं, नहीं का मतलब बैड एटीट्यूड या घमंड नहीं होता है। कई बार इसका मतलब बस सिर्फ इतना सा होता है कि आप अपनी पेस, अपनी लिमिट्स और अपनी बाउंड्रीज को समझते हैं। हर चीज़ में खुद को फोकस करना ज़रूरी नहीं होता, हर जगह प्रेजेंट रहना भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो इट्स ओके, अगर नहीं बात कर रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर रिश्ते को अनकम्फर्टेबल बनाने से बेहतर है उसको ना कह देना चाहिए। और अगर वो ना करके और अगर उसके अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी है और उसे समझ आ जाए नो कितनी बड़ी पावरफुल जगह रखता है, तो उम्मीद है चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, बड़े हो, बुज़ुर्ग हो, आपको नो बोलना ज़रूर आना चाहिए। इसमें कोई शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, इसमें किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। और जिसने सुना नो शब्द उसको भी हम यही कहेंगे कि उसको ये नहीं लगना चाहिए कि उस इंसान ने नो क्यों कहा। कई बार होता है दूसरों की पर्सनैलिटी, दूसरों की ज़िंदगी, दूसरों का बिहेवियर, दूसरों की बात करने का तरीका अलग अलग होता है। हर कोई हर तरह के से खुला नहीं होता, हर कोई हर इंसान बहुत ओपन माइंडेड नहीं होता। कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कई लोग आराम से अपनी बात को समझाना चाहते हैं। तो हर चीज़ में अगर नो आ रहा है तो आप समझिए उसका मतलब नो है।
1: RM3 Radio.

0: नई सोच। 6:48 हो चुके हैं और हम हैं आपके साथ। चलिए नई सोच में बात कर रहे थे हम नो शब्द की। तो कहते हैं कि हर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, हर फेवर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, हर बात नहीं माननी चाहिए, ये मैच्योरिटी नहीं होती। कई बार सही समय पर नो बोला गया आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है, और अगर आप सच्चे इंसान हैं और आप बिल्कुल समझ सकते हैं इस बात को, और दूसरा इंसान आपके नो को नहीं समझ सकता, तो शायद वो पूरी ज़िंदगी आपको भी नहीं समझ सकता। क्योंकि सच्चे रिश्तों में रिस्पेक्ट सिर्फ यस की नहीं होती, नो की भी होती है। अगर जिसने नो को समझना सीख लिया, सच कहूँ तो ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। जहाँ भी आपको लगे कि आपको नो बोलना है, आपका दिल भी कह रहा है, दिमाग भी कह रहा है, और आपको लग रहा है कि ये जो करने जाऊँगा, जो मुझसे कहा जा रहा है, ये मैं कर दूँगा या कर दूँगी, तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आ जाएगी। अगर आपका दिल और दिमाग आपको कहता है कि गलत है, नो है, तो आप उसी वक्त उस चीज़ को कह दीजिए नो।
1: RM3 Radio.

0: छः बजकर 53 मिनट हो चुके हैं और हम जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम नई सोच के साथ और मैं हूँ आपके साथ पूनम। तो दोस्तों याद रखिए, हर बार यस कहना ज़रूरी नहीं। आज आपने ये छोटी सी बात सीखी है, यहाँ पर हमने किसी को सिखाना नहीं है, बट कई बार ऐसे हमारे लिसनर्स होते हैं जो छोटे होते हैं और उनको ये समझ ही नहीं आता कि कैसे करें, तो हम यही कहेंगे आपको, कभी कभी एक प्यार से कहा गया नो भी अपनी पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा लेता है। तो नई सोच में बस सिर्फ इतना ही, नो और यस करने में कोई भी झिझक और शर्म नहीं होनी चाहिए, कभी कभी थोड़ा सा बेशर्म हो जाना चाहिए, जैसी आपको लगे कि जिसमें आपके परिवार की और आपकी कहीं भी कोई परेशानी खड़ी हो सकती है तो आप इमीजिएटली बोलिए, आँखों में आँखें डाल के बोलिए नो। तो अब मिलते हैं दिलों की आवाज़ में, मेरे साथ ही बने रहिएगा, मैं भी आपके साथ पूनम, इन्जॉय करते हैं ये लास्ट ट्रैक आपका सिर्फ नई सोच का।
1: RM3 Radio.

में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखिए निगाह। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल।

0: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम MBC रेडियो।
1: टाइम चेक शाम के 7 बज रहे हैं।
2: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: दिलों की आवाज़।

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: की आवाज। नमस्ते आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। अभी ये टाइम जो है, कहते हैं ना कि सुकून भरा होना चाहिए, पर हम आज कहते हैं क्योंकि कल है म्यूजिक डे और आज हम नहीं चाहते कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें, क्योंकि यही तो टाइम होता है जिस टाइम आपको म्यूजिक, क्योंकि इतने सालों से आप म्यूजिक के साथ जुड़े हुए हैं, सुरों के साथ जुड़े हुए हैं।

कहते हैं धुनों के साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ पर भी रेस्ट हो गया तो क्या फ़ायदा। तो चलिए भाई आज थोड़ा सा मस्ती भरे गाने होंगे, कुछ थोड़ी सी यादें ऐसी भी होंगी जहाँ पर आपको लगेगा कि हाय किसी की याद आ गई, पर मैं ये सच में कहूँगी आपको याद

0: से बातें की है, किसी दोस्त को भी याद किया है, तो सबसे बढ़िया आपका दिन निकला होगा। और अगर आपको कोई भी टेंशन रही होगी पूरे दिन में, चाहे बिजनेस की, चाहे किसी काम की, चाहे बच्चों की, पर इस समय उस टेंशन को भुला दीजिए। थोड़ी देर अपने लिए सुकून का टाइम निकालिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिया तो शायद आपकी रात बहुत अच्छी हो जाएगी और फिर सुबह आप ऐसे एनर्जेटिक फील करेंगे कि आपको कोई मुश्किल लगेगी ही नहीं। तो चलिए भाई, हम आप सभी को विश करते हैं हैप्पी म्यूजिक डे, क्योंकि जब सुबह होगी तो आपके साथ में फिर से रेडियो जुड़ा होगा, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, किसी ना किसी रूप में हमारे साथ सुर और धुनें जुड़ी रहती हैं। तो ये आप ही का प्रोग्राम है, इंजॉय कीजिए दिलों की आवाज़। और यहाँ पर अगर आपको मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5250-6200 पे, और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो 4028070 पर। हम थोड़ी देर में लाइन ओपन करेंगे और फिर आपके मैसेजेस लेंगे। बट आप जो भी मैसेज करें, आज कुछ ऐसे तड़कते भड़कते गाने हो जाएं जिसमें मेरा भी दिल डांस करे और आप भी वहाँ जहाँ पे भी हैं वहाँ पे थिरकते रहें। तो चलिए इंजॉय करते हैं आपके ही गाने, हैप्पी म्यूजिक डे।
1: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ, संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम MBC रेडियो।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 7:30 हो चुके हैं दोस्तों, और प्यारा सा दिन है सैटरडे का, और 20 जून हो गई भाई। ऐसे पता नहीं चलता कि साल कैसे निकल जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा 2027, और फिर हम सोचेंगे अरे हमारा एक साल फिर से निकल गया। पर कहते हैं कि शाम जब आती है ना, तो अपने साथ बहुत प्यारे प्यारे कहते हैं रंग लेकर आती है। अगर किसी को रात पसंद है तो वो काली होती है, और किसी को सुबह पसंद है तो वो खिली हुई होती है।

है, पर जब खिली होती है तो हम बहुत सारे काम करते हैं, पर अगर अंधेरा होता है तो हमें एहसास होता है कि थोड़ा सा रुकना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे भी हैं थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा धीमे चलिए, कुछ आराम दीजिए अपने दिल को, थोड़ा सा सुकून लीजिए, थोड़ा सा दिमाग को भी, कहते हैं ना शांति मिलनी चाहिए, वरना भागता रहेगा और रात को नींद नहीं आएगी। तो यही टाइम है, अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5250-6200 पर। और इस समय हम हैं एक घंटे के लिए टिकटॉक पे, और साथ में उसके बाद जुड़ेंगे आपके फ़ोन कॉल्स के साथ में। इस समय हमारे साथ बात मैसेजेस आ रहे हैं और कॉल आया है फूलवंती जी का, और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं। अमरेश सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरुनू कहाँ से, बट उन्होंने बस एक प्यारा सा मैसेज किया। शिखा नरवी के लिए एक प्यारा सा गाना अभी हम चलाने वाले हैं। संजय यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं और एक प्यारा सा सुकून भरा गाना सुनना चाहते हैं। और एक साथ में शकुन जुलू, मायरा विजय लक्ष्मी एंड सुनील बुलाक एंड सोबी जी हमारे साथ हैं। और ललित जी जो एक प्यारा से गाने की फरमाइश कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई कल है म्यूज़िक डे तो क्यों ना एक प्यारा सा गाना हो जाए। उसके साथ साथ में हमारे पास स्विनिल का मैसेज आया है और बस कह रही हैं कि जल्दी से मैं रेडी होने वाली हूँ क्योंकि मेरी भी तो शादी है। और अंतिश इस समय हमें स्विट्जरलैंड से सुन रहे हैं, और स्पेशली मैसेज है भाई श्रवण, भाभी कीर्ति, अभिनव एन, कियान और नव्या के लिए। और बस यही कहा है कि मैं तो चली जाऊंगी पर मेरी यादें साथ रहेंगी, और यादें साथ हैं तो फिर कोई दूर नहीं होता। तो चलिए इंजॉय करते हैं आपका ये गाना। थैंक यू आप सभी को जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे टिकटॉक पे, चाहे यहाँ पे फ़ोन कॉल से, चाहे व्हाट्सअप के थ्रू। इंजॉय कीजिए अपना ये गाना। RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: दिल की आवाज तो सिर्फ यही होती है कि हमें गाने सुनने हैं और हमको आपको सुनाने हैं, तो हम भी आपको यही कहते हैं कि आप हमें मैसेजेस करते रहिए, अपने गानों का नाम और अपने मैसेज बताते रहिए कि किसके नाम पे कौन सा गाना चलाना चाहते हैं। तो चलिए भैया, हमारे साथ बहुत सारे लोग टिकटॉक पे जुड़े हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, तो हम भी चाहेंगे कि अगर आपकी भी कोई फरमाइश है तो आप हमें भेज सकते हैं। और जो लोग यहाँ पर हमारे को व्हाट्सअप मैसेज कर रहे हैं उनमें से तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रिया, प्रियांशी एन राज। स्पेशली राज कह रहे हैं कि गाना ज़रूर एक स्पेशल इंसान के लिए बजा दीजिए, पर वो थोड़ा सा सैड है, पर हम आज आपको यही कहेंगे, आज सैड रहने दो, थोड़े से मस्ती वाले गाने भेजो, क्योंकि भाई कल है म्यूज़िक डे और हमने तो आज से शुरुआत कर दी है, क्योंकि रात हुई तो बस शुरू हो गया हमारा दिन। तो साथ में हमारे जुड़ी हुई हैं इस समय रिहाना हमारे साथ, और एक प्यारे से गाने की फरमाइश करी और पूरे परिवार के लिए और अपने फ्रेंड सर्कल को एक गाना सुनाना चाहती है। और मैं रिहाना को इतना ही कहना चाहूँगी, रिहाना तुम दिल से बहुत ही प्यारी हो और बहुत ही अच्छा आपका मैसेज होता है, और हमेशा से। साथ में गुलशन जी जुड़े हुए हैं और वो भी एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं अपने पूरे परिवार को, और स्पेशली उनकी मामा के नाम, अपनी सिस्टर के नाम और अपनी प्यारी सी आयशा के लिए, जो कि कहते हैं कि दिल के अगर कोई करीब इतना हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, कहते मैंने एहसास नहीं किया था कि किसी के करीब इतनी जल्दी चला जाऊंगा और मेरे को लगेगा कि मेरी खुद की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। और ये ऐसे ही होता है जब किसी को प्यार होता है, तो ऐसे ही होता है। वो स्पेशली आरजे हंसनी के लिए भी एक प्यारे से मैसेज करना चाहते हैं और गाना सुनाना चाहते हैं। उसके साथ में हमारी एक बहुत ही प्यारी दोस्त हैं जिनका नाम है साक्षी। साक्षी सिर्फ इतना कह रही हैं कि प्यार जब होता है ना तो बहुत ही टूट के होता है, और मुझे भी हुआ है, पर मैं ये चाहती हूँ कि सब आज का मूड बहुत अच्छा है तो बस मूड अच्छे रहने दो, पर मैं इतना कहूँगी आज मैं थोड़ा सा ठीक नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, पर मैं आपको इतना ही कहूँगी। देखिए, सबकी ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते हैं, कुछ ना कुछ परेशानियाँ सबकी लाइफ में चलती हैं, ऐसा यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है जो हमेशा कंप्लीट हो, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गानों को इंजॉय करो। गाने कैसे हैं ना कि बस ऐसा मूड बदल देते हैं, पता भी नहीं चलता। और इस समय हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं कमलेश रानी जी, जो कि इंडिया से हैं, और वो उनको हम इतना ही बोलेंगे कि हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं, थैंक यू आपके मैसेज का, आपके कॉल का और आपके प्यार का। तो चलिए इंजॉय करते हैं आपका ही ये प्यारा सा गाना।

0: तो?
1: हाँ, कुछ कहा?
0: जितना मैं सुलझाऊं और उलझती जाए।
1: सच?

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: कभी कभी ऐसे गाने चल जाते हैं जैसे एहसास होता है कि किसी ने हमारे दिल की बात कह दी हो, और ऐसे लगते हैं कि वो सुर और वो आवाज़ और वो बातें ऐसे लगते हैं कि जैसे हमने बहुत साल पहले सुनी थी और उसके बाद क्यों नहीं सुनी। तो बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं कि हम बहुत बार रेगुलरली चलाते हैं और आपके मैसेजेस भी वही होते हैं कि ये गाना चला दो वो, पर कई बार ऐसे होते हैं गाने बहुत सालों साल हमने नहीं सुने होते। तो इस समय हमारे साथ हसमुख जी जुड़े हुए हैं, राधा जी जो कि ग्लेन पार्क से जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है, और विनीता जी भी जुड़ी हुई हैं ग्लेन पार्क से और वो भी इंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। साथ में हमारे साथ भाई आबू हैं और उन्होंने भी एक प्यारे से गाने की फरमाइश की है और कह रहे हैं कि पुराने गानों की बात ही कुछ और होती है, हमेशा दिल के करीब होते हैं। और अरविंद जी, कविता जी और अंजू मोहिसौ जी जो कि इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं टिकटॉक के थ्रू, वो भी यही कह रहे हैं कि उनको गाना एक बहुत ही पसंद आ रहा है, पर एक गाना उन्होंने स्पेशल फरमाइश की है तो हम उनके पर फरमाइश का गाना ज़रूर चलाएंगे। इंदिरा जी जो कि अपनी डॉटर प्रतिमा, चेष्टा, रिया, आदेश एंड हंसले, विनोद और विनोद जी को एक गाना सुनाना चाहती हैं और उन्हें बस इतना ही कहना चाहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि तुम मेरे बच्चे ज़रूर हो पर मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो। और ये सच बात है, हर इंसान को अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है और जब बच्चे भी आगे से रिप्लाई वही दें कि आई लव यू मामा या आई लव यू पापा तो बात ही कुछ अलग होती है, पर अगर कोई ना दे तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इंजॉय करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी को, गाने सुनने चाहिए, मस्ती करनी चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें हमेशा बस 100% दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो रात का टाइम है और इस समय होने वाले हैं 7:57 होने वाले हैं और 8:00 है, पर हम यही कहेंगे आपको कि अगर आपकी फरमाइश में भी कोई ऐसे गाने हैं जो आपको सुकून देंगे और रात आपकी अच्छी होगी तो ज़रूर आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5250-6200 पर, और अगर कॉल करना चाहते हैं तो 4028070 पर कर सकते हैं। उसके बाद हम आपकी फ़ोन कॉल्स लेनी शुरू कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे ले रहे हैं, साथ साथ टिकटॉक पर भी जा रहे हैं, पर आपको इतना ही कहेंगे चाहे किसी ने फरमाइश की है कि कोई पंजाबी गाना चला दो तो भाई बिल्कुल हम पंजाबी गाने भी चलाते हैं यहाँ पर, तो सारी चीज़ों की फरमाइश आपकी होती है तो इन्जॉय कीजिए आपका ये गाना जो कि बहुत ही प्यारा है उषा मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में, जब जब बाहर आई। एंजॉय कीजिए ये वाला गाना, उसके साथ में जुड़ते हैं दूसरे गानों के साथ भी।
0: RM3 रेडियो रेडियो, रेडियो।

0: Continuous music. RM3.
1: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम, ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम MBC रेडियो।

0: RM3 Radio. Radio. दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: जिंदगी हमेशा छोटी छोटी खुशियों से पूरी होती है। कभी कभी बड़ी बड़ी खुशियाँ, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पास बड़ी बड़ी खुशियाँ हों और ये हो वो हो, पर कभी कभी होता है कि हमें ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं मिल पाती। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती हैं तो बस वही सबसे बड़ी बात होती है। आपकी ज़िंदगी में आप हैं, उससे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं। तो इन्जॉय कीजिए अपने गाने। कई बार लोगों ने मैसेजेस किए हैं और वो थोड़े से सैड सॉन्ग्स की फरमाइश की है, तो हम आज चाह रहे हैं कि अगर आप फिर से थोड़े से हंसी मजाक वाले गाने भेजें जिससे कि सबका मूड अच्छा हो जाए, क्योंकि कल है म्यूजिक डे। और अब मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि कल सेंटर पॉइंट त्रियानो में अगर आपने कोई प्रोग्राम आज नहीं बनाया है तो कल मॉर्निंग के लिए 11 से लेके 2 बजे तक आप सेंटर पॉइंट जा सकते हैं, जहाँ पे सभी हमारे MBC के टीम होगी, वहाँ पर मैं भी होंगी। अगर आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए, आपका संडे बहुत अच्छा हो, तो बस आपको पहुँचना है, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन आज तो गिनीशा भार थे सैम्पियर में, और कल मेरा मैं जाऊँगी। तो आप अगर आना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा। वहाँ पे बहुत सारी गेम्स खेली जाएंगी, बहुत सी मस्ती होगी, गाने होंगे, तो और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। पर हम आपको इतना ही बोलते हैं कि

आपकी जो भी पसंद है वो हम सब चलाने वाले हैं एक एक करके। और अभी बहुत सारे लोगों के जिनके कॉल्स आ रहे थे, अब हम उनके कॉल्स लेने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आपको फिर से कॉल करना है तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ, इंजॉय कीजिए आपका ये गाना।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 8:24 हो चुके हैं दोस्तों, और ये समय है जिस समय हमें बहुत सुकून चाहिए होता है, पर कहते हैं कि अच्छे गीत, अच्छा साथ और अच्छी सोच शाम को और खूबसूरत बना देती है। और इस तरीके से, जिस तरीके से अभी महेंद्र कपूर की आवाज़ में आपने हेमंत दा की आवाज़ में ये जो पीछे से कहते हैं ना कि ये वाला जो टोन है, इसमें बहुत ही प्यार और कहते हैं ना सुकून मिला, मुझे एहसास हुआ, और एहसास है कि आपको भी ऐसा फीलिंग ज़रूर आई होगी। तो अगर आप भी उसी फील्ड में है तो आप हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, तो इन्जॉय कीजिए आप सबके गाने। इस समय हमारे साथ राधा जी जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने बहुत देर पहले इस गाने की फरमाइश की थी, रुत जवां जवां की, तो भूपिंदर सिंह की आवाज़ में। तो हम बिल्कुल चलाने जा रहे हैं आप ही के लिए, और उसके साथ में ही इब्राहिम जी जुड़े हुए हैं जो कि पोटली से हैं, और उन्होंने कहा कि एक मुकेश की आवाज़ में एक प्यारा सा गाना सुना दीजिए। थोड़ी सी उनकी तबीयत नासाज थी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, पर हम आपको ये इतना ही कहेंगे कि सर आप बिल्कुल ठीक हो जाएं और इंजॉय करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए हमें मैसेज कीजिए। तो यही टाइम होता है, एक दूसरे का साथ, अपने दोस्तों को फ़ोन कीजिए, मैसेजेस कीजिए, और बिल्कुल उदास होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी लिसनर्स इस समय में हमें सुन रहे हैं, अगर कहीं पे भी ज़रा सा भी आपको लगता है कि थोड़ा सा मूड ख़राब है, तो बस थोड़े से गाने हैं, हमारे को मैसेज कीजिए और हम आपके गाने चलाएंगे। उसके साथ में उमा जी जुड़ी हुई हैं, एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं, तो उनकी भी फरमाइश का गाना यह है हमराज मूवी का, तो हम वो भी चलाने वाले हैं। तो इतना ही बस आपसे कहना है कि आप प्यार से रहें, इंजॉय करें और हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, ये गाने सुने, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
2: RM3 रेडियो।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्कस की तारीख में आज की रात एक यादगार रात होगी, क्योंकि बरसों के बाद आज फिर आपके सामने आ रहा है आपका प्यारा हंसता गाता जोकर राजू। मैं नहीं जानता पिछले 20 वर्षों में वो कहां था, उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये तो बेचारा राजू जानता है या उसका दिल जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं वो जहां भी था, जिस हाल में भी था, सुखी था, दुखी था, खुशहाल था, मुफलिस था, बीमार था, वो लोगों में खुशी बांट रहा था। और ये वो दौलत है जो जितनी लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजू का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी तमाशा है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छूकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए

0: एक आदमी की जान लेंगे।
1: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

0: हैं अपने ही प्रोग्राम सुहानी के दिलों की आवाज़ के साथ, और इस समय मैं आपके साथ हूँ पूनम। तो घर में जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा फिक्र वही करता है दूसरों की जिसको अपनी फिक्र बिल्कुल नहीं होती, तो हम आपको यही कहते हैं कि हमें आपकी फिक्र है। अगर आपको भी गानों के साथ जुड़ना है तो आप हमेशा इन गानों के साथ जुड़िए। बहुत सारी टेंशनें और बहुत सारी परेशानियाँ ऐसे ही ये गाने ख़त्म कर देते हैं, और कल तो स्पेशली म्यूज़िक डे है तो आपको तो सुरों से इतना प्यार और लगाव है, तो हमेशा इन सुरों के साथ, इस रेडियो के साथ, यानी कि रेडियो मनोरंजन पूरा MBC के साथ जुड़े रहिए, एंजॉय कीजिए। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, थोड़ा सा हंसिए, मुस्कुराइए, थोड़ा सा शाउट कीजिए कि हाँ भैया ये हार रहा है, ये जीत रहा है, ये भी सारी चीज़ें जिंदगी में होनी चाहिए। बहुत ही प्यारी और छोटी सी जिंदगी है, जितना हंसेंगे मुस्कुराएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो चलिए, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं व्हाट्सअप के थ्रू। इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं देविका जी, और बहुत ही प्यारे से गाने की फरमाइश की है, तो हम बिल्कुल चलाएंगे आपका गाना। सूरज शर्मा साजदाबी जी भी जुड़े हुए हैं साथ में, और अपने बेटे निशाल को बस इतना ही कहना चाहते हैं, पढ़ाई पर ध्यान दो। और जो बच्चे इस समय पढ़ाई कर रहे हैं वो सबके लिए मैसेज कर रहे हैं, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कंसंट्रेट करना, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही थोड़ा सा हार्ड इसलिए है क्योंकि दुनिया बदल रही है। हम सब लोगों की तो जिस तरीके से चलनी थी चल गई, पर आने वाला टाइम थोड़ा सा सख्त होगा, तो हो सकता है कि आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लो तो ज़िंदगी बहुत ही प्यारी सी होने वाली है। देवयानी जी जुड़ी हुई हैं और अपनी नातिन दिव्या के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। रंभा जी भी साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि अमृता अमीशा एंड जॉन्टी के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाने वाली हैं। और अनीता जी हैं जो कि फ्लाक से हैं, अपने हस्बैंड राज और बेटे अंतिश, अंकुश, बहू मनीषा, आशिमा पोती हिमीशा, आध्यायन आंच के लिए प्यारा सा गाना सुनना चाहती हैं। तो बिल्कुल हम चलाने वाले हैं आप सभी की फरमाइश के जितने हो सकेंगे, पर आपको इतना ही कहेंगे ये जो गाने हैं आपके दिल के करीब है उतने ही हमारे दिल के करीब है, तो बस आप इंजॉय कीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए। और ये गाना आप सबके लिए महेंद्र कपूर की आवाज़ में, हमराज मूवी से।
1: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज।
1: 8:50 हो चुके हैं दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। कल म्यूजिक डे है तो दिल खोल कर गुनगुनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, डांस कीजिएगा। आप जहाँ पे भी मैसेजेस करते हैं वहाँ सबको मैसेजेस कीजिएगा और उनको बताइएगा कि आपकी पसंद के कौन से गाने हैं और वो कौन से गाने चलाएं, चाहे वो RM2 हो, RM3 हो, RM1 हो। पूरी MBC टीम आपके लिए हर समय हर टाइम आपके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए, सिर्फ हंसी मजाक करने के लिए, इंजॉय कराने के लिए, जिससे आपका दिल खुश रहे और आप घर के काम या ऑफिस के काम जो भी कर रहे हैं वो करते रहें। साथ में इस समय जो लास्ट गाना है अनीता जी की तरफ से है, उन्होंने कई बार पूछा कि लास्ट गाना, पहले गाना मेरा चला दीजिए। मैंने बोला नहीं, क्योंकि ये गाना भी मेरी बहुत ही दिल के करीब है। तो चलिए कभी अनीता जी आपकी तरफ से और मेरी तरफ से ये गाना आप सभी के लिए इंजॉय कीजिएगा। शुभरात्रि, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, इंजॉय कीजिएगा। फिर से मिलते हैं अगले हफ्ते इसी टाइम 7 से 9।
0: RM3 Radio.

0: continuous music. RM3.
1: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम, ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम MBC रेडियो।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: टाइम चेक, रात के 9 बज रहे हैं।
6: भोजपुरी तड़का
7: तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट, जलसा, हंगामा। भोजपुरी तड़का।

सब संगतियालो के अजय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो हर मनपसंद रेडियो चैनल, जी हाँ, रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन। सब संगतियालो के हमने स्वागत करा थे जा, और बेशक हमने के औरतलो के साथ रही अभी से लेके रात के 11 बजे ले। बहुत छोई तर का प्रोग्राम आज है सामदी के रात 20 जून 2026। बोला था संगतिया लोग कैसे हो जा, आज के दिन कैसे बीतर? हाँ, अच्छी तरह से ना। अभी रात भी अच्छी तरह से बीती, कहे कि भोजपुरी के तड़का लगाओ सा अभी से लेके रात के 11 बजे ले ना जब सा गाओ सा झुमा सा कत सौ दे विद विद सैंक पर फोन कॉल। और हमने की प्रोग्राम चला था दुगो चैनल पर, रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। तो संगतिया लोग भोजपुरी तड़का प्रोग्राम की शुरुआत करब जा एगो बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। बिजमावती संपत गे लगभग गीतवा बोता मांग के सिंदूरवा बढ़िए जोड़ीबा सोचे के जोड़ीबा चल एक साथ सुने मांग के सिंदूरवा।

मांग के सिंदूरवा बड़ी सुबेरा, खासकर जब एगो शादीशुदा महिला के मांग में सिंदूर रह रहा तो प्रतीक है कि ओकर पति जिंदा बा हो कि नहीं। और बेशक यहाँ पर यही सब नहीं तो लोग के साथ देखा तेर प्रोग्राम भोजपुरी तरका में और

आजकल दिक्कत है कि पानी उतना नहीं भर सकता और हमनी के जलाशय में पानी कमती हो ही जाता। खासकर मोहवाकवा जो हमनी के प्रमुख जलाशय है वहाँ पर में पानी कमती हो ही जाता, तो इंद्र भगवान से जहाँ पूजा करे के कि थोड़ा सुन पानी बरसी, कहे कि पानी की बहुत ज़रूरी है और सब काम पानी से हो रहा हो कि नहीं, तो भगवान से प्रार्थना करब सक कि पानी बरसी और हमने की जलाशय भर जाए। और नवम देमिल वेंसांग से लेके आज जून देमिल वेंसी से चला रही सब, पर उतना पानी नहीं बरसल बा जितना चारा बरसे के। और दिखाते सर ढेर मना नदी में पानी नहीं बा, तो अगर इसे ही चलते जाए पानी नहीं बरसी तो स्थिति चिंताजनक हो जाए, कहे कि सबको के पानी चाहे ना रोज के प्रयोग करे के हों कि नहीं। तब प्रार्थना करब से सबको मिल के इंद्र भगवान से कि हे प्रभु पानी बरसाओ ताकि हम के जलाशय में पानी भर जाए और सबको के पानी मिली पिए के, और पानी से बिजली भी बनेला, कुआँ बनेला जाने ला ना। तो एक खातिर चेहरा पानी भरिए जरूरी भाई। पहली बार होल बा मॉरिशस में कि कोई तूफान नहीं आल मॉरिशस में और पानी उतना नहीं बरसल, हर बरिस पानी बरसते रह, पर ये बरिस काज नहीं काहे ऐसे होल बा, बहुत अचरज के चीज है, सब भगवान के काम है के सकेला कुछ बोली। तो चला अब अगला गीत सुनब जा, जिले जिले जिले उमेश दोहू के आवाज़ में है गीत चलावत ऐसा हिरीश नारायण के नाम अपरहरण मोहताबा, बहुत बहुत प्यार के साथ है गीत और खतेर। होरीलाल दिनों कर पत्नी कर बेटा विवेक बहू और सब दिनों परिवार के नाम, वंदना गुमानी है गीत तोहर खतेर तोहर माँ और तोहर सब परिवार के नाम। और जितना रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के श्रोता लोग सुनता है गीत तो लोग के नाम भी जिले जिले।

हमके धर्म ग्रंथ में बोलल गलबा की सेवा में मेवा बा। चेहला सब कोई की सेवा करे की सेवा कर बत भगवान खुश होला। और अंग्रेजी में कहावत बा सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, यानी कि कोई के तू मदद करला तो औगे तू ने आतान करिया कि व्यक्ति तुम्हारी मदद करी। नेकी कर दरिया में डाल, कहे कि सकेला जो व्यक्ति के तू मदद कर ले हुआ वो सकेला औगे तू थोड़ा कुछ नहीं सकी दे, पर तू ओकर सेवा कर ला ओकर मदद कर ला यही काफ़ी बा। भगवान जो है ये खुश होला कि जब हमने कोई के मदद करे सा कोई की सहायता करी ला सा, तो जहाँ ले सकब सेवा करिया एक दूसरे के। और देखिए खास कर जो व्यक्ति गरीब बा निर्धन बा बीमार बा जेकर कोई नहीं बा सेवा करबा तो भगवान थोड़ा ढेर आशीर्वाद दे। और ऐसा में सुना अगला गीत मोरे फुलिया गिरेला है, गीत तो चलावत इस खासम खास देविका रामगतिया के नाम ई बड़ा बावर्ची वन जोड़ी से खाई के तैयार करेला। एक हाथ के पकावल खाना क्या बात है। देविका रामगतिया गीत तोहर खातिर तोहर घरोला तोहर बेटा पतो बेटी दामाद और सब रामगतिया परिवार के नाम है गीत। चली है गीत चंपा रामगतिया के रसोकर घरोला कर बेटा पतो बेटी दामाद और सब रामगतिया परिवार के नाम। राधा सिबाला की भी अच्छी तरह से खाना तैयार करे लन और रसोईया हवन इतना अच्छा से खाना बनावे लन कि का बोलबा। तो राधा सिबाला के गीत तोहर बेटा प्रशांत तोहर पतो बेटी शिल्पा तोहर दामाद और सब सिबालक परिवार के नाम। तो चल सुनब जा ये प्यारा सन गाना मोरे फुलिया गिरेला। आपके कर फुलिया कहाँ गिरा था और जहाँ से भी हमने सुना था हुआ था गीत लोग के नाम आज के रात तलो के नाम रात के 11 बजे गमाटा होती रही अभी फुलिया गिरा था। कैसे फुलिया गिरा था चल एक साथ सुने।

सामने की रात गमत की रात, रात भर अभी गमत करते रह सक मत। शुरू कर बात फिर कोई बोला था हरीश नारायण बड़ा जोर नाचा था निकी संगे संगे और बोला था आपका बेस्ट फ्रेंड खातिर अगला गीत चला द हरीश नारायण गीत तोहर बेस्ट फ्रेंड साइलेंट खातिर समझी समझी के लगल बड़ी हिचकी सौंदे मौसम में और रीत के पानी खोजेला। संगतिया लोग आजकल देखा थे दुनिया में ढेर मना हिंसा होता, चोर चपाटी लूट मार खून खराबा, आदमी लोग छोटा छोटा बात में गुस्सा हो जाता, उनसे खून कर दे तो उनसे काही से होता। तो हमने के शास्त्र में बोलक बात जब कलयुग के अंत आए के रही तो ये सब होए कि तू को निम्नो बात बोल तो आदमियों के खराब हो के खराब लगी। आजकल के कोई के नहीं सबक कौन चीज बोली भैया कोई की बोल बता उ सारी टुकड़ा तोरे मार दे तोरा सकी मुआ दे है कहती दुनिया चला बात। बच के रहिया कोई पर विश्वास नहीं करिया, खाली अपन पर अपन हाथ गोर पर विश्वास करिया, कहे कि आजकल ढेर मना ठगेरा और आजकल दिखाते ही सर कि सोशल मीडिया में खाली मॉरिशस में नहीं दुनिया भर में ढेर हिंसा हुआ था। वो के जान से मार दे होता, वो कर पैसा लूट ले होता, वो कर संगे भाग जाता, तो यही सब आज कलम की दिखा जाता। तो भगवान से प्रार्थना करब से कि हिंसा कम हो और दुनिया में प्यार मोहब्बत रही। ऐसे में सब जगह गीता का जाधर के गावल एगो जोली गीत समझी के लगल बड़ी हिचकी। अब समझी के सौंदे मौसम में हिचकी काहे लगता, चलो एक साथ सुने। गीता भाई हरीश जी के नाम रहे बोबा से और सब संगत्यालु के नाम

सेवन आशा जानू है गीत शुभम कर माँ कर दीदी आरती जीजाजी और सब जानू परिवार के नाम और है तो हमने चलावत ऐसा गिरीश हरलोल के नाम जो बहुत प्यार से हमने के साथ जुड़ल बा और जितना कोई की नींद नहीं लगता हालांकि ठंडा ठंडा कर लग बा कोई की नींद नहीं लगता गीत तो लोग के नाम चल एक साथ गीत सुने

हमने के देश में ढेर विदेशी लोग आवेदन से काम करे, जैसे कि नेपाली लोग, बांग्लादेशी लोग, मारागास्कर से भी मांगास लोग भी आवेला था। सब कोई के स्वागत करते जा हमने के रेडियो पर, एमबीसी रेडियो है। हमने के प्रसारण चला था 94.95 MHz यानी कि रेडियो मनोरंजन पर, और रेडियो मॉरिशस यानी कि 819 KHz पर। और खोजत हो कि ऑनलाइन सुने के रेडियो के तहत दबैया अपन पोताप में गूगल में जाइया दबैया www.mbcradio.tv, फिर क्लिक करिए लिसन रेडियो मनोरंजन या फिर रेडियो मॉरिशस, और हमने के चकाचक सक बजा सुने। देर कोई अपन मोबाइल फोन के जरिए सुनता, कोई देखो देते हैं इंटरनेट के जरिए, कोई अपन लैपटॉप पर, तो देखो रेडियो के जरिए, तो जहाँ से भी हमने के सुना तो सब कोई के स्वागत बा। अब जरा याद कर हमने के बचपन के दिन, आगे के लड़का लोग, अभी से 50 साल पहले के लड़का लोग लाकोत सोते होते लंसा, कि नहीं कानेत खेला तलंसा, बी खेला तलंसा, और लामागेल छोकरी लोग लामागेल खेले याद बा। और हमने गुड्डी उड़ावा तरीसा घर के छत पे चढ़ के गुड्डी उड़ाव सा जोड़ी जोड़ी, और लारू रूले कर तरीसा, और वो खेल कुकाशित, कुकाशित खेल यानी कि कुकाशित, और एक रहा मामा पापा, तो ये सब खेल जो रहा आगे के रहल है। अब ये सब खेल आजकल नहीं लग रहा, आजकल के लड़का लोग तो खेल भी नहीं करेला, आज के लड़का लोग खाली अपन पोता पर टक टक टिक टिक टिक टिक करते रहने से क्या कर बा भैया, नया जमाना बा, टेक्नोलॉजी के जमाना बा। पर आगे के जो खेल रहा जैसे कानित खेले के, लामा खेल खेले के, गुड्डी उड़ाए के, गुड्डी यानी कि पतंग है उड़ावत रिसर्च का, ये सब अब नहीं बा। ये सब जब दिनवा के सोची रह सर, तब अपनी दुनिया को अलग ही दुनिया में खो जाए रह सर, हम नहीं जाने सके। तो लोग में से जब ढेर कोई सुनाता था तो लोग अपन बचपन के याद कर ले, कैसे तू कानित खेला तला, कुकाशित करता, जो माये हयो भी रहा गालू पे नुमाये, यही सब खेल रहा, पर सब खेल लुप्त हो गल बा। आज कल लड़का लोग बोल बा कानित खेले के या गुड्डी उड़ा के, तो बोली कितने साकी पे जाडो। तो चल अब सुन जाएगा अगला गाना आज के गमटक को है गीत हमनी खासम खास चलाओ सर चाची ललिता खातिर, आप हवन त्रियोले से, और चाची ललिता कुशल गीत और खातिर चाचा आत्मा राम आफिस हवन सैम्पियर से, फातिमा हमन न्यू ग्रोव से, रोजिदा हाईलैंड से, हाई रोजिदा। अरे गीत मोतालबे के चित्रा की उस कर घरोला ज्ञान और सब विश्राम परिवार के नाम, मोताबा के कमला दिनों की ओर से आरोही के नाम। चले एक साथ सुने आज के कमटकों को।

0: Nach mami gol gol nach mami nach mamu gol.
1: कमर कमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर. कमर कमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर.
2: हमने जब आयला सदा गमटवा होते रहेला और गमटवा होइबे करी. हमने तो ढोलक बजाई लिया आयला सर, ढोलक बजाती रह सर रात के 11 बजे ले. अभी ढेर कोई हमने के साथ दे होता ब्लू बेस ही साइड पे ढेर संगत आलोक हवन सर सुरेश आकाश और देवन. एक दो गुड़की मार ले हवन सर. अकेले अकेले हम कि नहीं अतान कर ला सर. बाप रे बाप नहीं हो हमने सब गुड़की मारे हम काम करते भैया. अरे 11 बज जाए तो लेते हम तो आप ब्लूबे को लेते करे का बोले थो सर. तो गीत अगला गीत लोग खातिर बोल बोले. और अब बात करब सर जरा मेकअप के बारे में. तो जाने ना सर कि जो मेकअप है तो लड़की लोग के जो है ये लोग के श्रृंगार जो है लोग के गहना है. अब वो छोकरी जोली से एगो साड़ी डाले या चूड़ीदार डाले मांगटिका और जानो और फूली एगो टीका गले में हार हाथों में चूड़ी और झोली तैंचे ओय होय होय क्या बात है. एगो छोकरी के गहना है ओकर श्रृंगार. तो छोकरी लोग जाला ब्यूटी पार्लर जालन सर मैनिक्योर पेडिक्योर करे ताकि झोली दिखें सर. जालन सा कि नहीं जालन जा अच्छा अच्छा बात है. सब कोई अपन के सुंदर बनावेला. मिश्र लोग भी जाला काहे नहीं. और मिश्र लोग जाला जोली जोली खावात कीने जोली जोली जूता जोली मो जोली पौफे महंगा महंगा के पौफे हो कि नहीं ताकि पौफे दलबत छोकरियन तो पीछे आए. हाँ हो जब कोई पौफे डालेला कहूँ जेब कहूँ शादी में फ्योसाई में तो बोलन से जोली पौफे मौका था के दलग बाहू. तो इसे ही जोली करते रहिए छोकरा छोकरी अपन आपकी सुंदर बनाइए ताकि सब कोई तरह बोली उपागत जोलिया जो जी. क्या बात है क्या बात है. तो है अगला गीत बोल बोले सुना नयन के गावल है और गीतवा जो है अपनी चलावत इस खासम खास इस सब लोगन के नाम लिस्ट कार्य से अवन उमा जगन्नाइकलू उकर बेटी दिष्टि उकर दामाद और सब बहादुर परिवार के नाम. और है गीत चलाते इस मिस्टर एडू मिस्टर गंगू साजू वीरापेन अपाया ओसाई दीना प्रतिमा युश्री अनुवो ग्रीदारी हिरू और सी शंकर के नाम. और है गीत हमने चलाव जा सब स्टूडेंट्स और अध्यापक लोग के नाम जो नबी रात के हमने की सुना था बोल बोली सुना नयन की आवाज़ में.

अब हमने के पुरानिया लोग ढेर चीज में माना तलन से अब का जिन्हें कि तू सुपरस्टिशन बोल ब या कुछ बोल ब पर ये लोग माना तलन से ही सब बात पे कैसे कि हमने के आगे दादी नानी लोग बोलते कि रात के वक्त अगर कोनो बिसाइन के तकारी पकड़ ले और कोई के जाते हो देवे तो बर्तन में एगो पीमोसिक डाल दे के चेहरा या खैवा के तो असन छोटा छा कर दे के अभी काहे होता है ताकि भूत प्रेत खैवा के नहीं छुई ये हम नहीं बोलते हैं।

हमने की पुरानिया लोग बोला था और ये भी बोलते थे कि सांझ के 6 बजे के बाद घर नहीं बाहरी के कहीं घर बहर बहुत सोचते रहन से कि घर की लक्ष्मी सब बाहरा चल जाए। और ये भी बोला था कि रात के बखत लुगा भाड़ा नहीं दलिया सूखे के बर्तन से लुगा भाड़ा दलबा तक को ना मूवीज है छू दे तब बीमार पड़ जाइबा। और बोलते रहन से कि रात के अगर कहूँ सीमा में जाता हुआ कहूँ पर को ना मरनी में या कहूँ पर भी तपन साथ एगो ताइजोंग लेके जाएगी। अब ताइजोंग कहे लेके जाते रहन से तमी भूत प्रेत को ना मूवीज है नहीं छुई। और जब कोई मरनी से आवेला तो देखी ला सब की बारात में लोग बोला बा कि अपन पर पानी छिड़के के घर में हेली से आ गई। नहीं सब एगो मान्यता रहल एगो बिलीफ रहल। आजकल उतना कोई सब में नहीं मानेला पर अगर जे मानेला तो मानेला ढेर कोई की खातिर एगो खाजिशों है कि जब रात के कहूँ से आवत हुआ तो चहला पिट्ठी बगल से घर में हिले के हाँ। और रात के बोले रहन से कोई की नाम नहीं हला खरे के मतलब घर में हवा तो लड़का के नंबर राज तो नहीं हला के राज यहाँ आव नहीं नहीं हला करे के काहे कि जब हला कर बहुसी तो बर्तन से रात के लड़का बबाला और कोई की ऐसे हला करेला। तो ये सब आगे की बात है हमने की पुरानिया लोग जो ना ये सब बात में विश्वास करते रहन। अब आजकल का जो नहीं कोई विश्वास करेला कि नहीं पर हम देख लें कि अभी ले ढेर कोई जब कहूँ जहाँ रात के तो अपन संगी एगो ताइजोंग रख ले रहे लन सर सोचने वाली बात है। और बेशक भी रात के समय बा और हमने चलो के साथ देव थे जा रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। और आशा करते हैं कि तू भी हमने के साथ देवा रात के 11 बजे ले। ठंडा ठंडा हवा बहता ठंडा कर लगभग भैया अपन त्रिको जैकेट पोलो पासको सब डाल लिया है तब हमने की सुनिया तब के अपन पलंग पर लेप के उनकी सुनता कुवैत के नीचे हवन सर तो ढेर कोई अपन सालों में बैठल बा ढेर कोई अपन गाड़ी में बैठल बा और हमने की सुनत हवन सर जहाँ से भी हमने की सुनत सुनते रहिया गमटवा हो भी करी छोड़ के मोरी स्वा बाप रे बाप ऐसा जोरी गीत चली। अब है गीतवा जो हमने चलावत ऐसा खासम खास ई सब लोगन के नाम। और आप हवन जा गुरुदेव माना भाई माना कैसे बा गमट हुआ था कि नहीं भाई मना बड़ा जोर हंसत और बोला था प्रताप जी तू भी ना हाय हाय हाय सावन और जिमी दुखिया गीत तोहर खातिर तेलो के माँ तोर के सब परिवार खातिर सुरेश जसवा गीत तोहर खातिर तोहर माँ राजकुमारी और सब जसवा परिवार के नाम चिबुक लोंग राजा स्टीव नानो और प्रवीण भैरव साथ में श्याम मंगल भी हवन वो भी हमने के साथ देवत हवन बहुत बहुत धन्यवाद। गीत तुलो के नाम भी और जितना कोई अभी रात भर हमने के सुनी हमने के संगे कमरवा डोलाए तो गीत तुलो के नाम छोड़ के मोरिस्वा चल सुनम जाए गीतवा आतिश भगीरथी की आवाज़ में

0: आज है सामदी लुवें जून 20 जून और कल रही दिमास वैतियन जे तो कल हमने मनाओ अब से दूगो इवेंट एगो हो म्यूजिक डे और दूसरा योगा डे तो बनफेट दुला म्यूजिक हैप्पी म्यूजिक डे सबको के संगीत दिवस अभिनंदन हो और योगा डे अभिनंदन हो तो संगीत दिवस तो मैं रोज के मनाया ना एमबीसी में 2400 घंटे सातों दिन 365 दिन साल में म्यूजिक चलते रह रहा है नॉन स्टॉप तो हैप्पी म्यूजिक डे जितना कोई खुशी रह रहा हमने के सुने के हमने के गीत हमने के प्रोग्राम तो म्यूजिक डे जो है वो बहुत ही बड़ा इवेंट है और ढेर देश में जब म्यूजिक डे रहा तब बड़का बड़का म्यूजिकल कंसर्ट आयोजित होला और ढेर मना सिंगर लोग आवेला गीत गावे नाची ना सा गावी ना सा झूमी ना सा तो चलो अगला गीत में हमने गाओप सा झूमप सा काहे कि म्यूजिक डे कालबा और योगा डे भी तो हैप्पी म्यूजिक डे हैप्पी योगा डे टू ऑल ऑफ यू सबको के संगीत दिवस और योगा दिवस अभिनंदन हो
1: हर पल का साथी हर दिल की आवाज खुशियों का रंग और यादों का साज हंसी हो या गम ये रहता है साथ संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात हैप्पी

0: continuous music. RM3
1: 819 kilohertz. ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस.
2: कमर, धमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो. एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो.
3: भोजपुरी तड़का. भोजपुरी तड़का. भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच, जलसा, हंगामा.
4: स्टूडियो की घड़ी में हम देखा था अभी रात के 10 बज गए बा और एक घंटा बात के साथ देख खातिर बेशक नाचब सा गावब सा झूमब सा भोजपुरी तड़का प्रोग्राम जारी बा रात के 11 बजे ले. और अब अपनी बात कर अब सब पीमा के बारे में कहे कि अगला गीत था छोटका पीमा. सुखदेव राम खिलावन गीतवा गईले हवन अब पीमा बच्ची पीमा गोपी माँ पीमा कारी पीमा कॉफी. पीमा कॉफी दो प्रकार के एगो जन विनेग में दाइला सा एगो जन तेल में दाइला सा. और ढेर कोई पीमा कॉफी के पीमा के निकिया के धो के नमक में डाल के खूब मिलाजे करके को बूटे में डाल दिया पीमा कॉफी हो गल. ढेर कोई पीमा के नितवाई करके

एक में डालेला, देर कोई पीमा की निटवाई करके तेल में डालेला। अब पीमा के अचार, पीमा के गोल गोल काट के और में सरसों डाल के, वाह क्या बात है। अब पीमा के बात होला तो ढेर पीमा नहीं खाया वरना पेट खराब हो जाए। पर हमने के देश में ढेर कोई कुसिया पीमा खाई की, हम कुसिया तीता तीता पीमा, जुआल नहीं है जुन पीमा तान नहीं, जुआल पीमा है अगर जोड़ी से कर में शादी में जा रहा सा तो दिखे रहा से ना, जब सात को तकारी और पूरी से भी रहा तब पीमा के औचार आदमी बोले आबो ये दो आबो ये जासो पी मराई सी। और आज तो सामदी के रात है, ढेर कोई अभी शादी में नहीं, अभी अभी भोजन कर तो नहीं, भोजन कर ले ले हो, अभी तो रात के 10 बज गल बा, पर अगर भोजन करत हो कोनो शादी में गल हुआ तब बोलब सर शुभ आहार बोना पेची सुरुचि, तभी देखो गर्मा गर्म पूरी ग्रोपवा कच्चू सब खाता रोकर में पीमा के औचार, ओए होए क्या बात है। तगला की छोटका पीमा बहुत ही खूबसूरत गीत है, गीतवा हमने चलावत इस माधव की ओर से, ओकर चाचा जान साइलेन और माधव बन चाचा से बहुत प्यार के, इतना प्यार कर रहा कि रोज के सुने कर वीडियो कॉल में कि मानिए चाचा उबिये कौ भूमिन को तुम्हारा चाचा चाचा जान, तो माधव अपन चाचा जान साइलेंस से बहुत प्यार कर, ओकर चाची जान है रानी ओकरो संगे भी बहुत लगाव भाई लैका के, लैका जो है बहुत प्यार है, प्यार करेला अपन चाचा साइलेन और चाची रानी से, तो माधव है गीत चाचा की ओर से तौर खातिर, तो चाची रानी की ओर से माधव भैरव खातिर, हमने की छोटा बाबू है ए चाची बेबी। और ये गीत कवि की ओर से ओकर पत्नी टीना ओकर माँ माला बहन और सब भैरव परिवार के नाम, और ये गीत चलावत इस हमने सब संगतियारों के नाम जो ये बखत हमने की सुना था रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर, तो गमटवा भी फिनी नहीं हो बाए अभी अभी अभी अभी जो है गमटवा 11 बजे ले, और थोड़ी देर में हमने थोड़ा मौसम के हाल बता सक कि कौन सी गजे वगैरह मिट्टी हो आज रात के कल दिमाग के और लास्ट समय में लेता हूँ कैसी रही, थोड़ी समय में बताओ सर। अब इच्छा सुन छोटका पीमा सुने सर कैसे छोटका पीमा के औचार दलाता। छोटका पीमा

अब तान पीमा तो नहीं अच्छा है जन जुआर पीमा रह रहा पारे उगल बा तो कर बजा दूसर है जैसे पीमा के औचार बा भात बा और दाल बा तो काम से आलो याली कुल से आलो कॉलेज से आलो फाचिगे लगाता तो जैसे देखची खुला तो देख ला भात बा और एको देखची में दाल बा और पीमा के औचार तो जोड़ी से खा ली बा और अब हमने बात कर जैसे बोली थोड़ी घनी में मौसम के जानकारी दी उपसा था जी हाँ मॉरिशस विद्या के मॉरिशस ऋतु विज्ञान केंद्र की ओर से बोला जाता है कि आज सामदी के रात की ठंडा करी कल दिमाग की भी ठंडा करी और तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी आई तो चला जान जाए कि ठंडा और ठंडा करी खासकर रात के और फजीर के वक़्त तो चहला अपन प्रकोशों लेके अपन पोलो पास्को त्रिको अपन गोर में सुसित हाथ में लिगों को पहन लिया और कपार रात के बांध दिया कहे कि ठंडा जो ना ये बड़ी ठंडा करी आज सामदी आज लेवें है और कल दिमाग ले तेन के कल भी खूब ठंडा करी तो जगह घर में चिबीबी बा वृद्ध जन लोग बाग के छाया जैसे प्रिकॉशन लेके कहे चिबा बा लोग सेंसिटिव रहेलन सर फिर दुनिया में आला वन सर ठंडा लगे लड़का लोग के तो लड़का लोग के जोड़ी से एवलोपिंग करिया लोग के अच्छी तरह से देखिया जाए और बरात भी लोग बीचा प्रिकॉशन लेके अरे को हम तो भैया रात के वक्त एगो तैमूस में या एगो गोद में पानी गर्म करके रख दिया एगो वे और रख दिया और रात के जब थोड़ा प्यास सगीता सकबा वो गर्म पानी पिए कहे कि कबो रात के उठेला आंगन अंगनाई सब जाला तो आके तू ठंडा पानी पी रहे होला इसे खौकी होला तो ये सब खौकी सर्दी जुकाम से बच्चे खाती तैमूस में गर्म पानी डाल दिया या गोद में तो उपनिया बन खाते रहेला गर्म तैमूस में तो उपनिया पिया ठीक बा हाँ तो अगला गीत जो है जिंदगी गीतवा गेले उन गीता गजाधर और है गीतवा हमने चलावत इस रीता सीतालू के से ओकर ओकर जब वो रिसिन काम करते तो ओकर संगत आलू हमेशा ओकर साथ देवत हलन सर जैसे कि माया फिर देवी फिर गंगा रंभा और श्रीमती द्वारका जी तो रीता सीतालू के से ओकर संगत आलू के नाम है गीत और फिर वीना कुबुसामी माइबू से हवन सलमान दुखित मेबर्ग से और विश्वानी बाबूलाल हवन लाहौजा से तो ये सब संगत आलो खातिर अगला गीत हमें चलाओ अब सर गीत के बोल है जिंदगी और जिंदगी के बारे में क्या बोल अब सर जिंदगी के बारे में से कब से एगो पुस्तक भी लिख दी चला सुनब जा गीता गजाधर की

0: continuous music.
1: RM3 819 kilohertz. ये है रेडियो मॉरिशस.
2: तो सुनो अभी क्या बोला था लगी तो हमें जीले जीले अपन जिंदगी, प्यार से जीले जिंदगी, चोला के ठेका नहीं भैया, आज हिंस काल का नहीं रख सकी नहीं. ये गाती बोले से जीले जीले तू जीले अपन जिंदगी. और बेशक हमने अपन जिंदगी जी दी सब बहुत प्यार से, तू भी जी अपन तरीका से. और अब थोड़ा सुन हो जाए एगो बॉलीवुड न्यूज़, गर्मा गर्म न्यूज़. और आजकल हमने किस सिनेमा घर में एगो फिल्म चला था जिसका टाइटल है कॉकटेल 2. ये एगो रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है और हमने किस सिनेमा घर में दिखावल जाता. ये फिल्म में मुख्य कलाकार हवन शाहिद कपूर, कृति सनन, रश्मिका मंदाना, निर्देशक हवन होमी अंदाजानिया और संगीत तैयार कर हवन प्रीतम चक्रवर्ती. बहुत ही खूबसूरत फिल्म है ही. एक आधुनिक प्रेम त्रिकोण के इर्द गिर्द घूमेला. कहानी में पुराने रिश्ता, दोस्ती, गलतफहमी और भावनात्मक उलझन दिखावल गलबा. जब एगो पुराना संबंध दो लोगन की जिंदगी में फिर से आवेला, परिस्थिति कैसे बदलेला और कहानी कैसे भावनात्मक रूप धरेला, यही कहानी है इस फिल्म की. और फिल्म की खास बात यह है कि शहरी और आधुनिक रिलेशनशिप थीम बड़े पैमाने पर फिल्मांकन, जिनमें इटली के कुछ लोकेशन भी भा, यानी कि फिल्म की शूटिंग कर

गरबा इटली के एक सुंदर जगह में, इफी में रोमांस बा, संगीत बा, स्टाइलिश प्रस्तुति और साथ में कॉमेडी भी। इट्स ए ट्राइंगुलर लव स्टोरी और दर्शक लोग के फिल्म काफ़ी पसंद आवत आई तो समय ही बताई कि फिल्म कितना सक्सेस करी बॉक्स ऑफिस पर। अगर थोड़ा मौका मिली तो जाइए फिल्म देखे। फिल्म के टाइटल है कॉकटेल 2। शाहिद कपूरी फिल्म में नजर आल बा कृति सैनन। है है परी जोड़ी एक्ट्रेस बा कृति सैनन हमार तो फेवरेट है। और तो और में से ढेर कोई कृति सैनन की पसंद करते या ढेर कोई ये शाहिद कपूर के, तो बेशक ये फिल्म जरूर देखिए। फिल्मों के नाम है कॉकटेल 2। पहला कॉकटेल देखे रहा ना ओकर में रहल कौन अमृता सिंह के ओकर पहला पति को नाम रहा सैफ अली खान। हाँ वो रहा देखी में सैफ अली खान ने भाई फिल्म में बात शाहिद कपूर और कृति सैनन। तो अगला गीत आप सुन जाए गाँव के लाफों तेनवा और है गीत चलावत ऐसा Emmanuel Longchi SSS Maybach के सब स्टाफ के नाम, MG SSS Nouvelle France के सब स्टाफ के नाम, MJ मोका के सब अध्यापक स्टूडेंट्स डायरेक्टर के नाम, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के फैकल्टी ऑफ सोशल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज के बीए फ्रेंच, एमए फ्रेंच, पीएनडी पीएचडी फ्रेंच के सब स्टूडेंट्स और लेक्चरर प्रोफेसर के नाम, और हिंदी विभाग जो स्मास डिपार्टमेंट में बा वो लोग खातिर भी बहुत प्यार से। अभी बकर जितना कोई लोपताल में काम करे था बंकुआ जितना दुखते हैं लोग FM ये लोग नर्स लोग बा काम करे थे वन सा हमने के साथ देवता वन सा पुलिस स्टेशन में ढेर कोई काम करता मिथ्यू स्टेशन में भी और दमकल विभाग फायर सर्विसेज में भी जितना कोई कॉल सेंटर में काम करे था जितना सुफिया लोग अभी रात के हमने की सुनो तक सुफिया लोग पास आज लेके घर ही जाते वन सर या घर से लेके काम पर जाते वन सर जितना कोई नाइट शिफ्ट में काम करे था सिक्योरिटी गार्ड्स लोग गीत लोग के नाम गाँव के लाफों तेनुआ।

तभी सुना गांव के लाफोंटेन की कहानी। अब अभी के लड़का लोग नहीं जानी लाफोंटेन कौन सी बोला ला, वो लोग सोचा था फाब दे लाफोंटेन। फाब दे लाफोंटेन कहानी है, छोटा छोटा कहानी बकर में ला सिगारे ला फूमी, ले कोबो ले रेनॉ, ले लू ले सेट काब्री। और ये सब कहानी में ढेर मना ज्ञान रह, आगे के लड़का लोग सब सीखते हैं ला सिगारे ला फूमी कर ले हुआ ना। तो ये लाफोंटेन की जो बात हुआ था तो आगे के ज़माना में बहुत साल पहले, 50-60 साल पहले की बात बोला था। गांव में रोबिने सब नहीं रहा, लेकिन प्लास साल जो कि लाफोंटेन बोला था लिशा तो बड़का रोबिने रहा, सबको अपन कपार में कोनो ना कोनो बर्तन के जाता लन सर, गमेल से या मटका से पानी भर के लाफोंटेन से वो लोग आते लन सर, हाँ कि नहीं। और बेशक अभी रात के समय बा और हमने तो लोग के साथ देवा थे ईसा, और आज है सामदी की रात 20 जून 2026 लिए वैच रे ईसा है। देखते देखते हर महीना वो समाप्त हो जाए, अभी जुएत के महीना में चल जाप सा। समय बड़ा जल भागा था भैया, समय के साथ चले के। और अपनी बात करब सर तकदीर के बारे में, तकदीर सबको अपन अपन तकदीर लेके आ रहे दुनिया में। और ढेर कोई धनी घर में जन्म लेवेला, कोनो आदमी गरीब घर में, कोनो आदमी गरीब घर में जन्म लेवेला, कोनो धनी घर में। अब जो धनवान के घर में बात है सब कुछ ऐशो आराम, अब जो गरीब बातों के परी कोशिश करके मेहनत करके, पर सब तकदीर की बात है, तकदीर के खेल है। जैसे कि अगर तुहर तकदीर में थोड़ा कोनो चीज बा मिले के तो वो आज न कल थोड़ा ज़रूर मिल जाए, पर अगर तकदीर में नहीं बा तो कहते हम कितना कोशिश करे वो चीज़ वह थोड़ा नहीं मिली। ये हम नहीं बोला था, ये हमने के बड़ा आदमी लोग बोल लगबा। तो तकदीर में छहला माने के, पर तकदीर में मनिया हाँ, पर मेहनत भी करिया। अब नहीं बोलिया सब कुछ तकदीर में बा, छहला तोरो काम करे के, थोड़ा मेहनत करे के, तर काम मेहनत करबा तो तुहर तकदीर भी रंग आवेला, हाँ कि नहीं। तो चल अभी गुच्छ नब्जा काम करे नहीं खोजता कि बारे बाप काम, अभी की महंगाई की दुनिया में काम करे नहीं खोजता, अभी के सब के अभी सब कोई के छा काम करे के, इतना महंगाई के ज़माना में भैया दुनिया भर में सत्यजीत रघु गीतवा तो गेलेवन काम करे नहीं खोजता, अब के नहीं खोजता काम करे। एक साथ सुनब जा है गीतवा हमने चलावत सर संजय हरिचंद की ओर से, कर पत्नी संध्या, बेटी हुविष्का और सब परिवार के नाम, कुणाल हिरीलाल है गीत और खातिर तो सब परिवार के नाम, और जितना भी हमने की भोजपुरी आर्टिस्ट अखबार रंभा राम तोहल, किशोर खीमिया, रोशन सदा सिंह और पूर्णिमा फकीरा, अगर हम कोई के नाम भुला गई तो माफ़ करिए जाता, सब भोजपुरी जो गायक गायिका बा हमने की देश में। और काल तो लोग म्यूजिक देख कर बस है बहुत प्यार के साथ गीत तो लोग के नाम, और जितना कोई भोजपुरी गीत गावे लन सर, भोजपुरी गीत लिखे लन सर, भोजपुरी संगीत तैयार करे लन सर, गीत तो लोग के नाम काम करे नहीं खोज रहा, अभी क्या है काम नहीं खोता करे कि भैया चल एक साथ सुनम जा। और थोड़ा याद दिला दे जा कि बखत तू सुना तो MBC रेडियो दुगो चैनल पर चल रहता प्रोग्राम, एगो है रेडियो मनोरंजन जो नागी ताल FM रहल, अब वो रेडियो मनोरंजन हो गल बा, और एगो है रेडियो मॉरिशस, वो आज भी रेडियो मॉरिशस बा। तो दुगो चैनल पर चल रहता प्रोग्राम भोजपुरी तड़का अजय प्रताप सिंह के साथ रात के 11 बजे ले। और अभी खड़ी की ओर इशारा करत थे सर, देखा थे स्टूडियो के त अभी 1 घंटा 30 ले हो गल बा, और आधा घंटा बाकी बा 11 बजे के, तो 11 बजे ले हमने चल के साथ दे जा, हमने के साथ देते रहिए। और सुना गीत काम करे नहीं खोजेला, और है गीत खासम खास दीपा तिवारी दुखित के नाम, आप हवन कनाडा में, और पति केविन, और बेटा खत

तेर और हे गीत ती ना बुदना के से उकर घर वाला उकर दुगो बेटी और सब बुदना परिवार के नाम और हे गीत हमें चलावा तेई स जितना जितना आदमी लोग कभी रात के वक्त जो ना कोशिश करता लाइन ना मिलता तो फिकर ना कर सब गीत तो लोग के खातिर चलावा तेई स काम नहीं खोजरा करे कि अब के है पारिस भाई कोरिया राजा के हर जनी खोदा काम करके चला सुनब जा ये प्रोग्राम में भोजपुरी तड़का रात के 9 बजे से शुरू हो गल बा और अभी रात के 11 रात के 10 बज के आधा होई के बा ये प्रोग्राम चली रात के 11 बजे ले।

काम करे नहीं खोजेरा लीजिन के छोकरी खोजेरा शादी करे काम नहीं करब तक के थोड़ा अपन छोकरी दे शादी करे के बोला भैया कोई दे कोई नहीं दे तो शादी करे के वो उम्र रहेला हाँ कि नहीं जब थोड़ा जिजीता हो जाए तो यानी कि अब तू आजुल्त हो गल आजुल के मतलब जाने ला ना कि आजुल्त हो गल जिजीत हो जब 18 साल के एगो छोकरा या छोकरी हो जला तो ऊ जो है यानी कि वो अब सकी ढेर मना काम करे जैसे कि 18 साल तो होला तो आजुल्त हो गल सकब अपन कहते तो छीते जाके निकाले सकब शादी करे अपन गाड़ी के लाइसेंस पे मेरे कौजिया निकाले यू भी और इलेक्शन में भी सकब वोटे करे और सकब अपन खातिर एगो घर बनाए अपन गाड़ी खरीदे।

0: ता इंडिपेंडेंट हो जाए जैसे 18 ऑफ मॉरिशस में है मॉरिशस के बाद बोला था जैसे 18 साल के हो जाए तू अर्जुल हो जाए तकबा अपन डिसीजन अपने आप से ले जब डिसीजन नहीं हो रही तब नहीं माँ बाप के जो है उन लोग के इर्द गिर्द रही सब लोग के सुपरविजन में पर जब डिसीजन हो चला तो ऐसे माचू हो गल हुआ तो अब सकबा अपन गोर पर खड़ा हुई पर अपन तो हर माँ बाप के नजरिया में तो लोग हमेशा लड़का रबजा हमेशा याद रखिया तो अब सुनब जा अगला गाना गीत है बाबू खूबे जोरीबा अविनाश रामनायन गीत गैले वन और है गीतवा हमने चलावब जा ये सब लोगन के नाम शास्त्री बनुमाली हवन मोहताबा से गीत कर बेटी दामाद और सब बनुमाली परिवार के नाम और भाई काशी हवन मोहताबा से वो बड़ी जोली गीत गावेला भजन फिल्म के गीत भी उगर पत्नी माया कर बेटा बहू और सब काशी परिवार के नाम आप मोहताबा से हवन बहुत प्यार से उनकी सुनतवन गिव्य जिपो से हवन अश्विन बच्चन गीत तोहर खातिर तोहर भाई तोहर पत्नी तोहर सब परिवार के नाम उदय दनी राम है गीत तोहर खातिर तोहर पत्नी तोहर बेटा पतु बेटी दामाद खातिर किशन गुड़िया है गीत तोहर खातिर प्रीतम राज जिमिला है गीत तोहरों नाम और उदय दनी राम तो बड़ा जोर नाचता हमने के संगे संगे बड़ी खुशी रहेला भोजपुरी गीत उदय दनी राम है गीत तोहरों नाम खूबे बाबू खूबे जोली बाप कितना जोली बाप चला सुनाम जा
1: बाबू के जन्म होल बाहो थारिया बजावा

खूबे जरीबा हमने के बाबू खूबे जरीबा, और जब बाबू आवेला घर में तो ललना गवाला और सतवा बनेला और हलवा बनेला, दादी लोग नाचेला गावेला झूमेला। आजकल ये सब नहीं दिखल जाला, कहे कि अब तब मॉडर्न हो गल बा भैया, एआई की जमाना बा, यूट्यूब में डाल दी बा ललना तो ललना चलता और लड़ना हुआ था। आगे जब लड़का हुए ची बाबा घर में आए, जब जोरी बाबा जब आवा था ची बाबा घर में, तब वाजे लोग पड़ोसी लोग दादी नानी लोग सबको आके लड़का के देखियन सर, लड़का के माँ के पैसा दियन सर तोहफा, लड़का के बाप के भी। और एगो जो है एगो बहुत ही बड़ा इवेंटमो रहा जब आके घर में लड़का आवा था परिवार में, तो अभी बड़ा इवेंटमो बा, पर ललना ललना उतना भी हमने की दादी नानी लोग जो रहा तो सब अभी धीरे धीरे भगवान के प्यारा हो गए से आगे के जितना बड़ा आदमी जिन रहा तो ढेर कोई नहीं बा आज दुनिया में, का कर भैया अब हम ये बड़ा आदमी सर हाँ कि नहीं। और अब हमने की संगतिया हिरीश हमने के संगे नाचता, हिरीश नारायण बोलता प्रताप जी गीता डाल देता, जोली छोकरी से प्यार करीला जिकर खातिर हम रोज जीला कैसे बतलाबो के। अब भाई हिरीश नारायण हमने के संगे नाची, तू भी नचा हमने के संगे संगे आली संगे संगे गीता गावब सा और नाचब सा। भाई हिरीश तैयार हवा भाई हिरीश, हिरीश नारायण ऑन द मिक्स और जी प्रताप सिंह के साथ। हिरीश नाचा भैया गावा अम्मी के संगे संगे, जोली छोकरी से प्यार करीला जेकर खातिर हम रोज जीला, अब बोके कैसे समझा बोके कोई सताई दे हमको, से प्यार करीला हम रोज जीला कैसे मतलब कैसे सब। भाई हिरीश भी जोरी छोकरी से प्यार करेला, फोन लगावा भाई हिरीश, एसएमएस कर दो कि हिरीश हिरीश नारायण द मिक्स प्रताप सिंह के संगे।

रोज जीरा हाँ बुके कैसे समझा बुके है गाना हिरीश खतीर हिरीश बड़ा जो नाचे था बड़ा जो नाचा भैया हमने के संगे संगे और जे हिरीश और जे प्रताप ऑन द मिक्स एमबीसी रेडियो वर्ष और एमबीसी रेडियो मंदर

रंजन पर और संग जाए लोग हमने के संगे नाचता उदय दधी राम वो भी कमरवा डुलावता डॉक्टर अंजू वो भी नाचता हमने के संगे संगे फजिर फजिर जब मुकराज दिखेला कैसे बतावा आगे का होला तू ही सुना जा।

0: सुनेंगे एमपीसी रेडियो पर। कमर धमाल और मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमपीसी रेडियो पर।
1: संगता लोग, आज के हमने के नौजवान, कल के हमने के भविष्य हवन जा। ये गातिर बढ़िया सा की लादरोग सैंते चिक सिमिक में सब नहीं पड़िया। तू अपन रिजकाशों में ध्यान दिया, पढ़ाई लिखाई करिया, जैया योगा करे, जैया जिम धोगे, एक्सरसाइज करिया, कसरत करिया, अपन बॉडी बनाइया, पर लादरोग उद्रोग में नहीं पड़िया भैया। लादरोग सिमिक सैंते चिक बिल्कुल अच्छा नहीं बा, इकर से हमने की ढेर नौजवान की जान चल जाता। ये सब बुरा काम नहीं करिए, तोरा मन बकरो चीज करे कि जैया जिम बॉडी बिल्डिंग करिए, टैबलेट बनाइए, जैया धोगे जॉगिंग करे, साइकिलिंग करिए, नाताशन करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, ठीक बा। कहे कि हमने के जो तू लोग नौजवान हो सर, तो लोग ये है देश के भविष्य हो बजा। अगर तो लोग ऐसे कर बस बुरा काम कर बा, तो कैसे हमने के देश के तो लोग संभल बा, हमने के देश के बागडोर तो लोग के हाथ में बा। तो सब जिनिस तो के सब नौजवानों से मांग कर अब सब कि है लादरोग सैंथेटिक सिमिक में नहीं पड़िया भैया, ये जानलेवा है, ये सब में नहीं पड़िया। तू अपन पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया और एक्सरसाइज कसरत करिया, जिम जाइए और अच्छा नागरिक बनिया। बी बेटर सिटीजन ऑफ टुमोरो, दिस कंट्री इज योर्स, आई देश तो लोग के है। हमने के चल गर भैया, हमने के जमाना हमने बड़ा हो गई, शादी करी से हमने के लड़का बड़ा हुआ था, हमने के लड़का शादी करी, हमने के चल गल, हमने के जमाना जमाना अब तो लोग के हाथ में भाई, दुनिया तो लोग के हाथ भाई, बागडोर तो लोग के हाथ में बा। तो लोग काल के भविष्य हुआ जा, तो अपन देश के बागडोर संभल जा, लादरोग सैंथेटिक सिमिक में नहीं रहिए जा। मार ताली मार, ताली मार, हमर संगी कुनार हिरीलाल गीत गावत है। गीत सब नौजवान दोस्तों के नाम जो सोशल वर्क करे रहन सर, हवाई सोशल करे रहन सर, तो अच्छा बात है कि सोशल वर्क करे रहा, एक दूसरे की सहायता करते रहिए। और अभी हमके संगे जुड़ल बा रोशन, अविनाश और केशव, साथ में केशव अभिलाक भैया जी पोस्ते अवन, बहुत प्यार से उनके सुनत हवन। हेलो केशव अभिलाक, और ये गीत हमने चलावते ईसा डॉक्टर विपन के नाम। हाय डॉक्टर विपन,

डॉक्टर रोशनी हवन, इस समय आप हवन इन द नॉर्थ, ऑलराइट, और एक प्रोग्राम चल रहा था तो संगत यारों संगे अच्छी बात बा। और जितना कोई अभी रात की हमने की सुना था, और बेशक रात के 9 बजे से अभी दे हमने के साथ दे तो बहुत बहुत धन्यवाद। और देर कोई रात की देरी लिए काफ़ी अच्छा पिए रनसत, अच्छा बात बा, गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी के साथ हो जाएगा ना। मार ताली मार, ताली मार हमर संग, मार ताली मार, ताली मार हमर संग।

मार ताली मार हमर संगे। और बेशक दुनिया भर के सब डॉक्टर लोग बोले रहन सर कि अच्छा स्वास्थ्य में रहे खातिर चेहरा रोज के हंसे के

पर आजकल लोग उतना नहीं हंस रहे, लोग खाली नाराज है, इनसे लोग के मुंह में खाली गुस्सा रह रहा। काहे इतना गुस्सा हो जो तक नहीं एक बस्ता करेला खा ले हुआ। तो थोड़ा सुन हंस दिया, मुस्कुरा दिया, अभी मुंह में जुड़ी दांत बा काजनी ससन ससन सैकल मुंह में दांत रही कि नहीं। खातिर हंसते मुस्कुराते रहिए और हमी के साथ देते रहिए रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। और दुनिया भर के डॉक्टर बोले रहा है चाइना हंसे के ताकि तोहर दिल की हालत ठीक रही और तोहर लंबी आयु हो। हम नहीं बोलते, ये डॉक्टर लोग बोले रहा, ये गो साइंटिफिक प्रूफ है। और चला बेगो हंसी मजाक से भरपूर गीत सुनब जा। बोले हम सांवर, हमर बुढ़िया सांवर, तो लेकवा कैसे उजर निकल गल हो। हम ने जा लेकवा कैसे उजर निकल गल सुनब सही कहानी नीरज गुप मधु की सुनाई है। और रह गीत चलावत इस मिसेस शिवसागर मिस्टर लक्ष्मण और मेविशा रानी खातिर। मेविशा गीतवा खासम खास और खातिर, हाँ कि नहीं बेटा उजरवा, चल एक साथ सुने।

हाय गीत के संगे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम यहीं पर ही समाप्त हुआ था। कुछ ही सेकंड्स में रात के 11 बज जाए, 11 बजे सुन बजा सुनहरे पल और रात के 12 बजे से काल फजर के 6 बजे ले नॉनस्टॉप फिल्मी तराने। हमने के तलों के मुलाकात हुई कल दिमास के सांझ के दिमास वैते के हमने के तलों के मुलाकात हुई कल सांझ के 3 से 4 बजे ले और फ्री रेडियो मनोरंजन पर और रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पर हमने के दिख बजा और रेडियो पर सुन बजा। प्रोग्राम ऐसा भी होता है स्पेशल एडिशन ऑफ म्यूजिक डे, तत्काल म्यूजिक डे पर विशेष प्रोग्राम चली ऐसा भी होता है प्रोग्राम में कल शाम के 3 से 4 बजे ले। फिर कोई प्रोग्राम के बाद थोड़ा से कल रात की फिर से मिल जा रात के 9 से 11 बजे ले रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम रही भोजपुरी तड़का। अभी के लिए हमने के इजाजत दा रात के 9 बजे से अभी हम के साथ रजतों के फोन कॉल्स एसएमएस के साथ खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम सुन ला तो लोग के गीत हमने चलाए दी सा और हमने में बातचीत और बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते तो लोग के विश करते सा हैप्पी म्यूजिक डे फॉर टुमारो एंड हैप्पी योगा डे। तक कल तक हम की इजाजत और जय प्रताप सिंह की ओर से सबको के प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल गुड बाय नमस्ते।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ। समस्त श्रोताओं को नीत उषा का करजोर प्रणाम। जी हाँ श्रोताओं, इस समय आप रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं और रात्रि के 12 बजे तक एक बार फिर सुनहरे पल कार्यक्रम में आपका अभिवादन। आइए देर न करते हुए खूबसूरत गानों का सिलसिला

जब भी बॉलीवुड की सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी अभिनेत्रियों का जिक्र होता है, तब एक नाम बड़े सम्मान अदब के साथ लिया जाता है और वो है अरुणा ईरानी। हिंदी सिनेमा के इस अद्भुत कलाकार ने अपनी मेहनत, लगन और अनोखी प्रतिभा के बल पर फिल्म जगत में एक ऐसी पहचान बनाई जो आज भी लाखों दिलों में बसी हुई है। अरुणा ईरानी ने अपने करीब 5 दशकों से भी ज्यादा लंबे करियर में 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और हर तरह के किरदारों को यादगार बना दिया। तो सुनहरे पल कार्यक्रम में इनका हम शानदार स्वागत करते हैं।

0: मुंबई में जन्मी अरुणा ईरानी का बचपन आर्थिक संघर्षों से भरा रहा। परिवार की जिम्मेदारियों के कारण उनके बहुत छोटी उम्र में ही फिल्मों में काम करना पड़ा। उन्होंने बाल कलाकार माने कि चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपने सफर की शुरुआत की और धीरे धीरे बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय कैरेक्टर एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई। उनकी जिंदगी ये सिखाती है कि कठिन परिस्थितियाँ कभी भी सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती अगर हौसला मजबूत हो।
1: चढ़ती

मैरू नायडानी सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक शानदार डांसर भी रही है। 1960 और 70 के दशकों में उनके डांस नंबर्स दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुए। फिल्म कारवान में उनका अंदाज, उनकी इनर्जी और उनकी स्टेज प्रेजेंस ने सबको दीवाना बना दिया था। उनके नृत्य में नजाकत भी थी और जबरदस्त जोश भी। उन्होंने क्लासिकल और फिल्मी डांस दोनों को अपनी अनोखी अदाओं से यादगार बना दिया।

0: रहा हूँ।
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ूं?
1: नहीं, समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: जो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।

वैसे अपनी करियर के दौरान अरुणा ईरानी ने अनेक यादगार फिल्मों में काम किया, कारावान के अलावा बॉम्बे टू गोवा, बॉबी, फकीरा, रॉकी, लव स्टोरी, बेटा, सुहाग, राजा बाबू, गुलामी मुस्तफा जैसे कई फिल्मों में उनके किरदार आज भी याद किए जाते हैं। कभी वो कॉमेडियन के साथ हंसाती नजर आई तो कभी वैम्प के रूप में दर्शकों को प्रभावित किया और कभी माँ के रूप में भावनाओं से भर दिया। हर किरदार में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: अरुणा ईरानी की सबसे बड़ी खूबी उनकी वर्सटैलिटी थी। बहुत कम कलाकार होते हैं जो हीरोइन, सपोर्टिंग एक्ट्रेस, वैम्प, कॉमेडियन और माँ के किरदारों में एक समान सफलता पाते हैं। अरुणा जी ने हर युग के कलाकारों के साथ काम किया और हर जेनरेशन के दर्शकों का प्यार जीता। उनकी एक्टिंग में नेचुरल एक्सप्रेशन, जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन पर मजबूत उपस्थिति देखने को मिलती थी।

उनकी कला और योगदान को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड दो बार मिले, एक बार पेट प्यार और पाप के लिए और दूसरी बार फिल्म बेटा के लिए। इसके अलावा उनके नाम सबसे अधिक फिल्मफेयर सपोर्टिंग एक्ट्रेस नॉमिनेशंस का रिकॉर्ड भी रहा। साल 2012 में उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो उनके असाधारण योगदान का प्रमाण है।

फिल्मों के बाद अरुणा ईरानी ने टेलीविजन की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कई लोकप्रिय सीरियल्स में अभिनय किया और निर्देशन तथा निर्माण के क्षेत्र में भी सफलता हासिल की। देश में निकला होगा चांद, वैदेही और अन्य टीवी सीरियल्स के माध्यम से उन्होंने छोटे पर्दे पर भी अपनी कला का जलवा दिखाया। आज अरुणा ईरानी भारतीय सिनेमा की एक जीवित दंड कथा के रूप में देखी जाती है। उनका सफर संघर्ष, मेहनत, प्रतिभा और सफलता की एक प्रेरणादायक कहानी रही है। उन्होंने साबित किया कि असली कलाकार वही होता है जो हर परिस्थिति में खुद को नए रूप में ढलकर दर्शकों के दिलों पर राज करे। अरुणा ईरानी का नाम हमेशा हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास में बड़े गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। प्रणाम, शुभ रात्रि।

बाय।